प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे विधिमान। नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG लिमिटेड को पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिन को आज FCC में पेश होना है। मॉरिशस के तटीय क्षेत्र बढ़ते दबाव में है क्योंकि 2010 की तटीय प्रबंधन रणनीति कभी लागू नहीं हुई। पर्यावरण विशेषज्ञ फ्रिसिला इराना के अनुसार तटों की सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मछुआरों को नाव का नया इंजन खरीदने में मदद के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। वैध फिशरमैन कार्ड धारक अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, नाव की डिटेल्स, कोटेशन और पुराने इंजन के अप्रयोज्य होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना और विश्वविद्यालयों को नई चुनौतियों के अनुकूल बनाना है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकों के अनुसार इसके लिए पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की जरूरतों

0: के अनुसार ढालने और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और विदेश में फ्रांस के बोर्डो शहर के समीप भड़की जंगल की आग बुझाने में दमकल विभाग लगातार जुटा हुआ है। इस आपदा के कारण फ्रांस और स्पेन में अब तक 3,30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, फिर भी दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे और देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कभी कभार वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हल्की हवा बहेगी, प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:42 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
3: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: सुबह के 6:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओ, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। और आज सोमवार 27 जुलाई 2026 और ये कार्यक्रम खासकर आप लोगों के नाम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए इस सप्ताह का पहला दिन है। और ये पहला दिन हम आप लोगों के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं जागृति, आइए साथ मिलकर सुनते हैं।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समुहुढमस्य पां सुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवम वयम कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। जागृति कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आगामी बुधवार 29 जुलाई को हम सभी लोग गुरु पूर्णिमा पर्व मना रहे हैं। पंचांग अनुसार यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। यह दिन हमारे गुरुजनों के लिए समर्पित हैं। वैदिक संस्कृति में गुरु व आचार्य को उच्च स्थान दिया गया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार गुरु शब्द ग्री शब्द धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है यो धर्मात् शब्दान गुणात्युपदिश्यति स गुरु, जो सत्य धर्म के अनुसार सभी विद्या के साथ वेदों का उपदेश करता है वह गुरु होता है। गुरु शब्द दो अक्षरों से बना है, ग में उ की मात्रा एवं र में उ की मात्रा से गुरु शब्द बना है। गुरु कारस्त्वं धकारस्त्वः रुकारः स्तेन उच्यते अंधकार।

0: अर्ह निरोधत्वाद् गुरु रित्य विधीयते। गुकार अर्थात अंधकार एवं रुकार का तात्पर्य होता है तेज व प्रकाश। अविद्या रूपी अंधकार से निकल करके जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है वही गुरु कहलाता है। अन्यत्र कहा गया है, धर्मज्जो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायणः तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देशो को गुरु उच्यते। धर्म को जानने वाला, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला, धर्मपरायण एवं सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाला जो होता है वह गुरु कहलाता है। मनुस्मृति में मनु महाराज लिखते हैं, अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तमीपः गुरुं विद्याचोतोप क्रियया यत्तया। जो विद्या पढ़ने में थोड़ी अथवा बहुत सहायता करता है उसको गुरु मानना चाहिए। अतः हम मनुष्य प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन विद्यार्थी के रूप में व्यतीत होता है। जो घमंड के साथ कहे कि वह सब कुछ जानता है वह बहुत विद्वान है तो वह निश्चित रूप से महामूर्ख होता है, क्योंकि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। हम एक नादान बालक से भी कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति से भी हमें अनेक शिक्षाएं की प्राप्ति होती हैं तथा पशु पक्षियों से भी हम बहुत कुछ सीखने को प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे अनेक गुरु होते हैं, परंतु शास्त्रों में मुख्य रूप से मनुष्य के तीन गुरु का उल्लेख मिलता है। त्रयः पुरुषस्याति गुरुवो भवन्ति माता पिता आचार्यश्च। मनुष्य के माता पिता और आचार्य ये तीन मुख्य गुरु हैं। मनुष्य का सबसे पहला गुरु उसकी माता है। माता निर्माण करने वाली होती हैं। माता अपने संतान का निर्माण गर्भ से ही प्रारंभ कर लेती हैं। संतान अपने माँ के गर्भ से ही शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर लेता है। गर्भवती माता को चाहिए कि वह हमेशा अच्छे पुस्तकों को पढ़ें, सदैव सत्संग करें तथा कुछ भी गलत कभी न सोचें। जन्म के बाद भी माता अपने बच्चों को सुसंस्कार एवं सुशिक्षा प्रदान करें। इस प्रकार बच्चों का सही रूप से निर्माण होता है। इस कारण माता को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना गया है। इसी प्रकार पिता भी बच्चों को सुशिक्षा प्रदान करें। इसके बाद गुरुकुल व विद्यालय में आचार्य व अध्यापक सभी प्रकार के विद्या का अध्ययन कराएं। इन तीन मुख्य गुरुओं में आचार्य का स्थान सबसे बड़ा होता है। जन्मदाता माता पिता से बढ़कर ज्ञानदाता आचार्य होता है, जो हमें अज्ञानता से ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। मनु महाराज का प्रमाण है, उदपादकः ब्रह्म त्रोर्गर्याम ब्रह्मवः पिता। पिता से वेद ज्ञानदाता आचार्य बड़ा होता है। शुक्र नीति में भी आया है, हितोपदेष्टा शिष्यस्य सुविद्याध्यापको गुरुः। मुख्य गुरु वह हैं कि जो विद्याभ्यास आदि सत उपदेशों से शिष्य का यह लोक और परलोक सुधारें। इस प्रकार हमारे वैदिक संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु पर श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यस्य देवे पराशक्तिः यथा देवो यथा गुरौ तस्यैन कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार मनुष्य परमात्मा पर श्रद्धा रखता है उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह गुरुजनों पर श्रद्धा रखें। जिस प्रकार श्रद्धालु होकर उनके सामने सभी शिष्य विषयों को स्वयं जान लेते हैं, कहने का भाव यही है कि जिस प्रकार ईश्वर पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं उसी प्रकार हमें अपने पूज्य गुरु जनों पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु पर श्रद्धा रखने वाला मनुष्य सभी विद्या के रहस्य को समझने में सामर्थ हो पाता है। गुरु पर अश्रद्धा रखने वाले शिष्य को कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। महाभारत में कहा गया है, गुरुभ्यः त्वासनम देयमभि वाद्याभिर् पूज्य च गुरु मभ्यश्च वर्धन्ते आयुषा यशसा श्रिया। शिष्य का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने गुरु को बैठने के लिए आसन देवें, अर्थात हमेशा गुरु का सम्मान करें, कोई भी उसका तिरस्कार न करें। ऐसा करने से आयु, यश और ऐश्वर्य हमेशा बढ़ती ही रहती हैं। आयु, यश और धन चाहने वाले मनुष्य को चाहिए कि वे अपने सद्गुरुजनों का हमेशा सम्मान करें, परंतु साथ ही साथ गुरु को भी सत्पुरुष होना चाहिए। छल कपट से रहित विद्वान बिना किसी प्रकार के पक्षपात करके जो विद्या पढ़ाने वाले होते हैं वही सच्चे गुरु कहलाते हैं। गुरु का जीवन एक पवित्र जीवन होना चाहिए ताकि उससे शिष्य प्रेरणा ले सके। गलत स्वभाव वाले पुरुष को कभी भी गुरु नहीं मानना चाहिए। गुरु कभी भी अपने शिष्य को गलत शिक्षा नहीं देता, वह कभी भी अंधविश्वास में नहीं फंसाता। शास्त्र का प्रमाण है, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेयः उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्योपाशामशयम्। जो जिज्ञासु हों तथा जो श्रेय चाहने वाले हों, जो जितेंद्रिय होकर ईश्वर पर विश्वास करता है और व्याकरण शास्त्र पर अधिकार रखने वाले विद्वान को मनुष्य अपना गुरु बनावे, क्योंकि गुरु के बिना मनुष्य किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा गुरु परमात्मा है, वह गुरुओं का भी गुरु है। स पूर्वेशाम अपि गुरुः काले ना व छेदात्, अर्थात वह परमात्मा हमारे पुराने गुरुओं का भी गुरु हैं तथा वह परम गुरु ईश्वर काल के बंधन में नहीं फंसता। सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए हमें वेद का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार परमात्मा सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़ा गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम विशेष यज्ञ करें तथा अपने गुरु जनों को स्मरण करते हुए उनके उपकारों को याद करें। अतः हम सभी अपने गुरु को हमेशा याद करें और उनको सम्मान दें। गुरु के बिना हमारा जीवन निरर्थक होता है, इसलिए हम गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु जनों के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प करें। परंतु हम हमेशा यह ध्यान रखें कि गलत, मूर्ख, लालची गुरुओं के साथ कभी भी न फंसें। नीतिकार कहता है, विद्या हीनम गुरु त्यजेत, विद्या से हीन गुरु को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत शुभकामनाएं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

सुबह के 6:21 हुए हैं श्रोताओ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। याद दिला दें, 6:30 समाचार, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद, और तब तक खूबसूरत गानों का मजा लीजिए।

0: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, सोमवार 27 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG लिमिटेड को पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के आवंटन की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद को आज FCC में पेश होना है। मॉरिशस के तटीय क्षेत्र बढ़ते दबाव में है क्योंकि 2010 की तटीय प्रबंधन रणनीति कभी लागू नहीं हुई। पर्यावरण विशेषज्ञ फ्रिसिला इराना के अनुसार तटों की सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मछुआरों को नाव का नया इंजन खरीदने में मदद के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। वैध फिशरमैन कार्ड धारक अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना है और विश्वविद्यालयों को नई चुनौती के अनुकूल बनाना है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकों के अनुसार इसके लिए पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ढालने और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और विदेश में फ्रांस के बोर्डो शहर के समीप भड़की जंगल की आग बुझाने में दमकल विभाग लगातार जुटा हुआ है। इस आपदा के कारण फ्रांस और स्पेन में अब तक 3,30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद को आज फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन FCC में पेश होना है। उन्हें मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG लिमिटेड को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति का ठेका दिए जाने की जांच के सिलसिले में बुलाया गया है। लुविना सूफी, गीता सुनारान।
1: ये जांच करीब 30 बिलियन रुपए के एक पेट्रोलियम अनुबंध से जुड़ी है जो 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG को दिया गया था। FCC ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन परिस्थितियों में ये अहम अनुबंध पाकिस्तानी कनाडाई बिजनेसमैन मुर्तजा अली लखानी द्वारा स्थापित मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिया गया। इस मामले में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेसियस और पूर्व मंत्री रंगनाथन पदयाची तथा सुदेश कालीचरण को गिरफ्तार किया गया था। दोनों पूर्व मंत्रियों पर पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन यानी पद का दुरुपयोग कर अनुचित लाभ लेने का संदेह है। FCC के अनुसार करीना नेसियस और पूर्व मंत्रियों रंगनाथन पदयाची और सुदेश कालीचरण के बीच फोन पर बातचीत के सबूत मिले हैं। आरोप है कि इन संपर्कों के जरिए लगभग 30 बिलियन रुपए का ईंधन खरीद अनुबंध मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिलाने में मदद दी गई जबकि इस कंपनी ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था।
0: इरोजन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण मॉरिशस के तटीय क्षेत्र लगातार बढ़ते दबाव में हैं। फिर भी लगभग 2010 के आसपास तैयार की गई एक एकीकृत तटीय प्रबंधन रणनीति पहले से मौजूद है। समस्या ये है कि इसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही वास्तव में लागू किया गया। ये बात पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञ फ्रिसिला इराना ने कही है। उनके अनुसार तटों की सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें अधिकारियों से लेकर आम जनता तक सभी संबंधित साझेदार शामिल हों और साथ ही पर्यावरणीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक आयामों को भी ध्यान में रखा जाए। फ्रिसिला इराना को सुनते हैं जिनसे बात की शैली नर्बन ने।
1: जब तटों के संचालन की बात करते हैं तब हम उसकी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। तट पर सिर्फ रेत का बहाव नहीं होता, सिर्फ SDI का विकास नहीं होता बल्कि एक पहचान का मामला भी है, संस्कृति पारंपरिक आदतों का मामला भी है। सिर्फ एक समस्या की बात नहीं कर सकते, इस एक समस्या को दूर करने से अपने आप अन्य समस्याएं नहीं मिट सकती।
0: गौरतलब है कि 2026-2027 के बजट में अगले 5 वर्षों में 17 प्राथमिकता वाले स्थलों पर 11.5 किलोमीटर से अधिक तटों के पुनर्वास के लिए कोस्टल इरोजन एडेप्टेशन प्रोग्राम के वास्ते पहले ही 4 बिलियन रुपए दिए गए हैं। राफेल मर्विन को सुनती हैं।
2: La question qui nous est là, c'est qui s'en a décidé? Comment nous réussir à mettre en place un système, un mécanisme pour décider ensemble?
1: हमारा सवाल है कि कौन फैसला लेता है, कैसे प्रक्रियाएं कायम की जाए ताकि सभी लोग मिलकर एक साथ फैसला ले सकें और उन लोगों की बातों पर ध्यान दें जिन्हें अनसुनी कर दी गई है। हम आज रिव्यनवा जिले में एक कार्य योजना कायम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसका समर्थन किया जाएगा, इसे अंतिम रूप दिया जाएगा और इन बदलावों को लागू करने में सभी स्टेक होल्डरों का सहयोग मिलेगा।
2: Amen saban changement là ensemble, amen saban prise de conscience là ensemble et qui au fait nous tout mettre la main à la pâte.
0: मछुआरों को उनकी नाव का इंजन बदलने में मदद करने के लिए एक नया बजटीय कदम लागू किया गया है। इस योजना के तहत 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ साथ डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा 1,00,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। एक नए इंजन की लागत आमतौर पर 1,00,000 से 1,50,000 रुपए के बीच या उससे अधिक होती है। ये कदम उन मछुआरों के लिए है जिनके पास फिशरमैन कार्ड है और जिनकी नाव उनके अपने नाम पर पंजीकृत। लाभार्थियों को एक फॉर्म भरने के लिए अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग कार्यालय में जाना होगा। उन्हें विशेष रूप से अपना फिशरमैन कार्ड नंबर, बैंक डिटेल्स, नाव का विवरण और एक नए इंजन की खरीद के लिए कोटेशन प्रदान करना होगा। साथ ही किसी आपूर्तिकर्ता या पेशेवर गैरेज से एक प्रमाण पत्र भी देना होगा जो इस बात की पुष्टि करे कि पुराना इंजन उचित लागत पर मरम्मत योग्य नहीं बचा है। जूनियर मिनिस्टर फापस दाविद को सुनते हैं जिनसे बात की एड्रियन वालियानी।
3: कार्ड आइडेंटिटी, कार्ड पेशेर, फोटोकॉपी एक्सट्रे डे नेसेंस एंड टूट ला लिस्ट की क्लेयरमेंट एक्रिया डॉ ले एप्लीकेशन फॉर्म।
1: एप्लीकेशन फॉर्म में मांगी गई सभी दस्तावेजें जैसे आइडेंटिटी कार्ड, फिशरमैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी अपने अपने इलाके के फिशरीज पोस्ट में सुपुर्द करनी होगी। मंत्रालय मामलों का अध्ययन करेगा, योग्यता के सभी मापदंड पूरा करने पर उस पर स्वीकृति दी जाएगी, डीबीएम को भेजा जाएगा। डीबीएम 50,000 रुपए की रकम प्रदान करेगा और 1,00,000 रुपए तक के लोन की सुविधा मिलेगी। अगर एक खराब इंजन बदलना है और नया खरीदने के लिए 1,20,000 रुपए की जरूरत है तो मंत्रालय 50,000 रुपए देगा। मछेरे को 70,000 रुपए में से 10% चुकाना होगा यानी 7,000 रुपए और बाकी 63,000 रुपए में डीबीएम कर्ज की सुविधा देगा जिसे एक निश्चित अवधि में चुकाना पड़ेगा।
3: La DBM pour facilite l'accès à un prêt, un loan, qu'ils ont pour bien rembourser sur une durée déterminée.
0: छात्रों को श्रम बाजार की वास्तविकताओं के लिए बेहतर ढंग से कैसे तैयार किया जाए और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वविद्यालयों को कैसे विकसित किया जाए, ये उस मुख्य प्रश्न का हिस्सा है जो आज मॉरिशस में शुरू होने वाले इंटरनेशनल सिम्पोजियम और लीडरशिप एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन के केंद्र में है। 3 दिनों तक दुनिया के कई क्षेत्रों के विश्वविद्यालय प्रमुख, नीति निर्माता और शोधकर्ता इस बात पर विचार करेंगे कि अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को कैसे ढाला जाए, अनुसंधान को कैसे मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां कैसे विकसित की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकों के अनुसार एक मुख्य चुनौती छात्रों को श्रम बाजार के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के वास्ते विश्वविद्यालयों और उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करना भी है। शैक्षणिक आदान प्रदान से परे उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी मॉरिशस की एकेडेमिक्स को यूरोप, चीन और अफ्रीका से आए शोधकर्ताओं के साथ साझेदारी करने का अवसर प्रदान करती है। कविराज सुकों के अनुसार इन सहयोगात्मक प्रयासों से संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण तक पहुंच आसान हो सकती है जो अक्सर कई विश्वविद्यालयों को मिलाने वाले संघों के लिए आरक्षित होता है। दीर्घकालिक रूप से इन साझेदारियों से छात्र और शिक्षक आदान प्रदान कार्यक्रम भी शुरू हो सकते हैं। घरेलू छत पर हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक स्कीम की शुरुआत के अगले ही दिन सीबी ने सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध पोस्ट प्रसारित होने के बाद जनता को आगाह किया है। संस्थान ने बिना विस्तार से बताए इसे भ्रामक व्यावसायिक प्रथा करार दिया है। सीबी ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट पर किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है और उसने ग्राहकों से अत्यधिक सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें। कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए ग्राहकों को सीधे कार्यालय जाना होगा। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना और इससे युवाओं के लिए अधिक सुलभ बनाना, ये संस्कृत स्पीकिंग यूनियन के नए अध्यक्ष गिरीश प्रसाद का मुख्य उद्देश्य है। उनकी नियुक्ति को शुक्रवार 24 जुलाई को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दे दी गई। गिरीश प्रसाद के अनुसार संस्कृत केवल आध्यात्मिक प्रथाओं तक सीमित नहीं है, उनके अनुसार इस भाषा में एक सांस्कृतिक और शैक्षणिक समृद्धि है जिसे और अधिक उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उनको सुनते हैं, उनसे बात की राजमिला सीतामुनि ने।
4: मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं उत्तरदायित्व का विषय है। मैं इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि एक तो भगवान की कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद है, फिर समाज के विश्वास का परिणाम मानता हूँ। मैं कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय का हृदय से आभारी हूँ जिसने मुझ पर यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है। मेरा प्रयास रहेगा कि संस्कृत भाषा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया और एक उसकी जो गौरवशाली परंपरा है उसको नई पीढ़ी के साथ जोड़ते हुए इसे और अधिक सरल और लोकप्रिय हम लोग बना सकते हैं। वास्तव में संस्कृत कठिन नहीं है बल्कि उसे कठिन मान लिया गया है। जब किसी भाषा का नियमित अभ्यास नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से वो कठिन लगते हैं। संस्कृत का व्याकरण जो है वो अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। यदि इसे सरल रूप से पढ़ाया जाए तथा बोलचाल में उसका प्रयोग किया जाए तो कोई भी व्यक्ति इसे सहजता से सीख सकता है। और साथ ही मैंने यह अनुभव भी किया कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं बल्कि

0: हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता, ज्ञान विज्ञान के मूल आधारशिला है।
1: और विदेश की खबरों में, बोडो शहर के पास लगी भीषण जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी संघर्ष कर रहे

हैं, चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, फिर भी दोपहर बाद को देश के दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर कभी कभार बादल घिरे रहेंगे। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 13 से 15, अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस। हल्की हवा बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:42 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा।

मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम यूसुफ को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय सुबह के 6:43 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। लीजिए शोक समाचार सुनिए। हैमलेट रोड मोसेलमों सेतोंद्रे में 78 साल की 78 years old की श्रीमती चुरामणि दिगम, पैदायशी नाम लक्ष्मण और जो चुरामणि नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे राकेश दिगम के घर हैमलेट रोड मोसेलमों सेतोंद्रे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। ला शापेल और दौंते लियन सन्सरा रोड बबासे में 92 साल की 92 years old की श्रीमती ज्ञानमती घोड़ा, पैदायशी नाम कालीचरण और जो ज्ञान नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे ला शापेल और दौंते लियन सन्सरा रोड बबासे से उठाकर री पाई सैं पिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11:30। रा रोड शामुनी में 55 साल के 55 years old के श्री जितेंद्र भिका, जो राजेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे भिका कौशिक के घर रा रोड शामुनी से उठाकर कौगोपाल शामुनी की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। क्लेमेंसिया रोड बेलेरिवेसेश में 83 साल की 83 years old की श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस, पैदायशी नाम हरकू और जुसुना महाजिन नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके बेटे कैलाश रामनोरिस के घर क्लेमेंसिया रोड बेलेरिवेसेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। विदेशी लेन मोंटाई ब्लांश में 52 साल के 52 years old के श्री सूरज गुलाम, जो सूरज नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले पुलिस सर्जेंट थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रेशमा गुलाम के घर विदेशी लेन मोंटाई ब्लांश से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। एवेन्यू तियावेंगादम स्थानीय रोसिल में 80 साल के 80 years old के श्री दीना दयाबहन रामसामी, जो गालेन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1:30 बजे उनके घर एवेन्यू तियावेंगादम स्थानीय रोसिल से उठाकर कॉलोव्यू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30। रिवरसाइड स्ट्रीट बेलव्यू मोहल में 49 साल की 49 years old की श्रीमती मिनिता रापेरे दी रातालू, पैदायशी नाम जगाना और जो मिनिता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके पति श्री धर्मेन रातालू के घर रिवरसाइड स्ट्रीट बेलव्यू मोहल से उठाकर लावंचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:00। पिचिपा के मोंटाई ब्लांश में 82 साल के 82 years old के श्री जनाब आमीन बहादुर, जो आमीन नाम से भी जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 10 बजे उनके बेटे फेरोज बहादुर के घर पिचिपा के मोंटाई ब्लांश से उठाकर मोंटाई ब्लांश का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10 AM। पिचिपा के मोंटाई ब्लांश में 48 साल की 48 years old की बीबी सलमा रामजानी,

पैदायशी नाम जहांगीर और जो साइमा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11:30 बजे उनके शोहर रेजा रामजानी के मकान पिचिपा के मोताब्लॉश से उठाकर मोताब्लॉश का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11:30। मोसलमा ओटेल में फॉरेस्ट साइड में 72 साल की 72 ईयर्स ओल्ड की कुमारी परमावती गोपाल जो मती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। कोऑपरेटिव रोड बाशेरी में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड की श्री दी कुमार जना जो जांगो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की 1:30 बजे उनके बेटे यदेश जना के घर कोऑपरेटिव रोड बाशेरी से उठाकर गांव बाके शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।

Sports News. नमस्कार, स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 में शोए गैब्रियल बॉक्सिंग में अपना पहला मैच जीत पाई सामोआ के डैनियल ओलांद के खिलाफ। फैब्रिस वालेरी बेस्ट ऑफ 16 में हार गया। इससे पहले वो दो मैच जीत पाया था। जिगी आगा क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुआ दो मैच जीत कर। नए सीजन की तैयारी में क्लब फ्रेंडली जारी है। न्यूजीलैंड में टोटनहम हॉटस्पर ने 2-0 से ओकलैंड को हराया। स्कारलेट और रिचार्लिसन का 1-1 गोल। कुछ अन्य नतीजे, आयाक्स ने बर्नले को 2-1 से हराया। एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट 3 थ्राब्जोनस्पोर 0 कार्लसरू 1 इंटर मिलान 2 कान 3 एएस रोमा 3 रेक्साम ने लीड्स को 3-2 से हराया। वेस्ट हैम रेंजर्स के बीच मैच ड्रॉ 0-0। लिवरपूल के मैनेजर एंटोनी इराओला के लिए जीत से श्री गणेश। विनिंग स्टार्ट रहा

0: पर जो गोमेज मैच की शुरुआत में ही घायल हो गया। इंजूरी कितनी गंभीर है अभी तक पता नहीं, पर सेंटर बैक में द रेड्स के लिए चिंता का विषय है। ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल और लिवरपूल के टारगेट बारकोला के लिए पेरिस सेंट जर्मेन 145 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग मांग रहा है। रियल मैड्रिड विनिशियस जूनियर को बेचने के लिए तैयार है, दाम 137 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। आर्सेनल विनिशियस जूनियर को साइन करना चाहता है पर बातचीत शुरू नहीं हुई है। पेरिस सेंट जर्मेन अब आइवरी कोस्ट के यान डियोमांडे को उसके रेस से निकल गया। रियल मैड्रिड उसके क्लब आरबी लाइप्ज़िग से बात कर रहा है। जापानीज लीग का लेजेंडरी खिलाड़ी 59 साल का 59 ईयर ओल्ड काजुयोशी मियुरा दुनिया का सबसे वृद्ध ओल्डेस्ट प्रोफेशनल फुटबॉलर है। उसने कल 4 साल बाद एक गोल स्कोर किया। किंग काजु ने फुटबॉल खेलना शुरू किया था ब्राजील की सांतोस टीम में 1986-1986 में, फिर इटली, क्रोएशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी खेल पाया। अभी वो योकोहामा एफसी के लिए खेलता है। क्रिकेट टीम इंडिया की ओर से क्लीन स्वीप पर तीसरे T20 मैच में भी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराया। सीरीज में वैभव सूर्यवंशी का दूसरा अर्धशतक इस बार 81 रन पर आउट हुआ। इंग्लैंड और आयरलैंड T20 सीरीज हारने के बाद इस जीत से टीम इंडिया फिर से वर्ल्ड नंबर 1 T20 टीम बन गई है। साइकिलिंग टूर डे फ्रांस का 5-स्टार चैंपियन बना तादेज पोगाचार। रिकॉर्ड की बराबरी की पोगाचार ने। इससे पहले जैक एंकेटी, एडी मर्क्स, बर्नार्ड इनोल्ट और मिगुएल एंजुरेन 5 बार चैंपियन बने थे। फाइनल स्टेज में माथ्यू वान डे पोएल की जीत हुई। ओवरऑल रैंकिंग में पोगाचार के पीछे आए एव निपोएल और तीसरा स्थान पोगाचार की टीम से इसाक डेल टोरो ले पाया। और फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के हंगेरियन ग्रांड प्री में लैंडो नोरिस की जीत हुई। 11 रेसेस के बाद चैंपियनशिप में एंटोनेली हैमिल्टन से 50 अंक आगे हैं। और मॉरिशस में क्षेत्रीय स्तर पर रोशनोय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट कल से शुरू हुई। पहले मैच में पेनाल्टी पर बेजितोवो एफसी ने अस्टन विला पे चिराफ्रे को हराया। 0-0 के ड्रॉ पर पेनाल्टी पर 8-7 की जीत। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार। आप सभी लोग अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। सोलफेरिनो नंबर 5 के आसपास के इलाके CWAIBL पंपिंग स्टेशन एक्स पोल्ट्री वुडन के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 29 जुलाई 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: मिनट हुए हैं श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ AM2 जहां और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। आज सोमवार 27 जुलाई 2026, जी हाँ, इस सप्ताह का पहला दिन है और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए और इस कार्यक्रम को और रंगीन बनाने के लिए हमें पता है कि आप लोग साथ देंगे पुराने गानों के साथ। बस हम शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले बस इतना जान लीजिए कि सुबह की पहली किरण सिर्फ रोशनी ही नहीं लाती बल्कि हर दिल को एक नई उम्मीद और नई शुरुआत का पैगाम देती है। और आज का दिन आप लोग खास बनाइएगा। सबसे पहले चलिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी जुम्मन जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: बहुत से प्राणियों का समूह शत्रु को जीत लेता है। तृणों के समूह से छाए हुए छप्पर से मूसलाधार वर्षा का निवारण हो ही जाता है।

7:12 हुए हैं। श्रोताओं, कहते हैं ना, इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और एक दिन अकेला ही चला जाता है। बीच का जो सफ़र है ना, उसकी असली पहचान बनाता है। इसलिए दौलत से ज़्यादा रिश्ते कमाइए, शिकायतों से ज़्यादा दुआएं बांटिए और अहंकार से ज़्यादा प्रेम को अपनाइए, क्योंकि आखिर में साथ ना धन जाता है ना शान, सिर्फ अपने कर्म और लोगों के दिलों में चोरी हुई यादें ही अमर रहती है। और यहाँ पर सुनते हैं अगला गाना मुकेश साहब की आवाज़ में।

श्रोताओं, जिंदगी एक गीत की तरह है। इसमें कभी सुर मिलते हैं, कभी ताल बिछड़ जाती है, लेकिन याद रखिए, एक बेसुरा पर पूरी जिंदगी को बेसुरा नहीं बना देता। और हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है दोस्तों, कल की गलतियों से सीखने का, आज को बेहतर बनाने का और कल के सपनों को सच करने का। चलिए साथ मिलकर गाते हैं किशोरदा की आवाज़ में

चले थे साथ मिलकर, और हम कहते हैं हमेशा हम साथ मिलकर आगे चलते रहेंगे जब तक आप साथ देंगे हमें, और खुशी होगी। जय श्रोताओ, 7:30 बज चुके हैं, और वैसे ये फरमाइशों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज 27 जुलाई 2026 है, उन सभी लोगों के लिए अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं, और आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमेशा जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। पूरे एमबीसी टीम की ओर से हम आपको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे। और जो गाना है रफ़ी साहब की आवाज़ में, और साथ में है लता जी, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म से लिया गया। चाहे आप दूर हो चाहे पास हो, लेकिन दिल के बिल्कुल करीब हो।

लाखों हैं यहाँ दिल वाले लेकिन प्यार नहीं मिलता, क्या करें। श्रोता और चलिए आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी। एक बार एक बुजुर्ग ने अपने पोते से पूछा, बेटा जिंदगी जीना किसे कहते हैं? बच्चा चुप हो गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और उसे एक दिया जला कर दे दिया। फिर बोले, इस दिए को हवा से बचाते हुए पूरे आंगन का चक्कर लगाओ। बच्चा ध्यान से दिया संभलते हुए वापस आ गया। बुजुर्ग ने पूछा, रास्ते में खिले फूल दिखे, चिड़ियों की आवाज सुनी या ठंडी हवा का एहसास किया? बच्चे ने कहा, नहीं दादाजी, मेरा ध्यान तो सिर्फ दिए की लौ को बचाने में था। तब बुजुर्ग बोला, बस बेटा जिंदगी भी इसी दिए की तरह है, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ लेकिन इतना भी मत उलट जाओ कि जीवन की खुशियां, अपनों का प्यार और प्रकृति की सुंदरता देखना ही भूल जाओ। ये जिंदगी उन्हीं की है जो जिम्मेदारी और मुस्कान के साथ जीना जानते हैं।

7:50 हुए हैं दोस्तों। कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों, पैसों या शोहरत से नहीं, बल्कि उसके दिल की नेक नीयत से होती है। और उस नेक नीयत का सबसे खूबसूरत रूप है किसी की मदद करना। मदद हमेशा पैसों से ही नहीं होती, बल्कि कभी किसी की उदास चेहरे पर मुस्कान ला देना, किसी थके हुए इंसान को दो प्यार भरे शब्द कह देना, किसी ज़रूरतमंद का हाथ थाम लेना या बस किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी एक बड़ी मदद होती है। तो चलिए, अगर आज का दिन जो है कोई आपको मदद मांग रहे हैं तो बेझिझक उनका मदद कीजिए, उनकी मदद कीजिए और आगे बढ़े जीवन में आप और दुआएं कमाएंगे।

तुझे देखा, तुझे चाहा और उम्र भर के लिए चाहते ही रहेंगे। सुनते हैं रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये खूबसूरत गाना और यही गीत के साथ हम भरेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की। और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

तुझे फजर के आठ बजल बा नमस्ते अवजा भोजपुरी में समाचार सुने जा में कंटाल एंड मैरीटाइम ग्रुप लिमिटेड के पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट के देवल जाय होला के जांच के सिलसिला में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटोर्नी जनरल मनीष गोबिन के आज एफसीसी में पेश हुए की बाटी। मॉरिशस के तटीय क्षेत्र बढ़ल दबाव में बाटे कहे कि 2010 के तटीय प्रबंधन रणनीति कबो लागू नहीं होल। पर्यावरण विशेषज्ञ फ्रिसिला इहाना के अनुसार तट के सुरक्षा खातिर सब साझेदार के शामिल करते हुए एगो समग्र दृष्टिकोण के आवश्यकता बाटी। वैध फिशरमैन का डिधारक मछुआरा नाव के एगो नवा इंजन खरीदे खातिर 50,000 रुपया के वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपया ले के ऋण हेतु अपन क्षेत्र के मत्स्य विभाग में आवश्यक दस्तावेज संगे आवेदन कर सकें जा। मॉरिशस में आज शुरू होला उच्च शिक्षा संगोष्ठी के मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम के अर्थव्यवस्था के जरूरत के अनुसार ढाले के और विश्वविद्यालय आर उद्योग के बीच संबंध के मजबूत करे के छात्र लोग के श्रम बाजार खातिर तैयार करे के है। घरेलू छत सुलह योजना की शुरुआत के बाद सीबी जनता के सतर्क करता कि इंटरनेट पर चलल होला कुछ पूर्व पंजीकरण और विज्ञापन भ्रामक बाटे। सीबी ई मांग करता कि कोनो भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर ही अपन व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करे के और ना ही कोनो ऑनलाइन फॉर्म भरे के कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंतिम रूप दे के और हस्ताक्षर करे खातिर खाली सीबी कार्यालय जाए के पड़ी। और दूसर देश के खबर में सीटल सेंटर के पास होल गोलीबारी में एक गोलैका सहित दो जना के मवत हो गलबा और 5 अन्य घायल हो गलबा। घटना के बखत ई प्रतिष्ठित स्थल पर एगो बड़का खाद्य उत्सव के आयोजन करल गल रहल। देश विदेश के खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।

Evienson sur la route Bobasemé, Charcori Barabariske, 92 en quiche, nous mettons Gian Metikura, Pedashi nam Kalichen, Archigian nam Sigestigian et Jatralenja ou Zergal Hawan, ou Karmati Achdinke Garabachke Adha, La Chapelle Odont, Evienson sur la route Bobasemé, ou Takiri Pai Saint-Pierre Kishamshan, Pumili Javajai. La route Chamunime, Dukori Pandrabariske, 55 en quiche, Rigitindra Bika, Jirajesh naam se jasti janat jatra lanjao guzar gal hawan ukar maati aaj din ke 1 baje ukar beta Bhika Kaushik ke ghare Roa Road Shamuni se utha ke Kongopal Shamuni ke shmshan bhumi le jaava jaye Clemencia Road Bele Rivière Sèche mein 4 kori 3 baris ke 83 ans ke Shrimati Krishna Kumari Ramnuris Pedashi naam Harku RJ Suna Mahazin naam se jasti janat jatra lanjao guzar gal hawan unkar maati लेंदी 3 अगस्त के उनकर माटी लेंदी 3 अगस्त के दिन के 11 बज के आधा उनकर बेटा कैलाश रामनुरिस के घरे क्लेमेंसिया रोड बेला रिवियर सेश से उठा के बुशों के शमशान भूमि ले जावल जाए विदेशी लेन मोंटाइन ब्लांश में दुकोरी 12 बरिस के 52 ओं के श्री सूरज गुलाम जे सूरज नाम से जस्ती जानते जात्र लंजा आर जे आगे पुलिस सर्जन तरह लंजा उगुजर कल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती रेशमा गुलाम के घरे विदेशी लेन मोंटाइन ब्लांश से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले जावल जाए Avenue Tevengadam, Stanley Rose Hill, Mechar Kori Bariske, 80 ans, ke Shri Dina Daya Bahen Ramsami, Jigalen Nam Se Jasti Janet Chatralan, Jauguzar Kalhaman, Ukarmati, Ajidinke Igbachke Adha, Ukar Kari, Avenue Tevengadam, Stanley Rose Hill Se Utake, Kon le Vieux Kesham Shan Bhumi de Javajai. Bellevue Morel Riverside Street में दुकोरी नौबरिस के 49 ओं के श्रीमती मिनिता अरापिरेडी रातालू पैदाइशी नाम जगन्ना आरजे मिनिता नाम से जस्ते जानते जात्रा लंच आओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 12 बजे उकर पति श्री धर्मेन रातालू के घरे रिवरसाइड स्ट्रीट बेलव्यू मोरेल से उठा के लावंचुआ के शमशान भूमि ले चावल जाए Petit paquet Montagne Blanche, mais Charcori Dubariske, 82 ans, qui Janab Amin Bohadur, J. Amin Nam Sejesti Janet Jatrlan, J. Intekal Kerkal Hawan, Unka Janazaj Pajirki Despaje, Okarbeta, Feroz Bohadur Ke Gare, Petit paquet Montagne Blanche, Se Utake, Montagne Blanche, Kakabrastani, Javal Jai. Petit paquet Montagne Blanche, mais Dukori Arthabariske, 48 ans, qui Bibi Salma Ramjani, पैदाइशी नाम जांगीर आज साइमा नाम से जस्ते जानते जात्र लंच इंतकाल कर गल हवन उकर माटी आज दिन के 11 बज के उनकर जनाजा आज दिन के 11 बज के आधा उकर शोहर रेजा रामजानी के घरे पिचिपा के मोताय ब्लांश से उठा के मोताय ब्लांश के कब्रस्तान ले जावा जाए मौसलमा अंतेलम फॉरेस्ट साइड में तीन कोरी 12 बरिस के 72 ओं के कुमारी परमावती गोपाल जिमती नाम से जस्ती जानते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उनकर माटी बाद में उठावल जाए कोऑपरेटिव रोड बुआशेरी में दुकोरी बार बरिस के 52 ओं के श्री दी कुमार जाना जे जांगो नाम से जस्ती जानते जात्रलन जाओ गुजर कल हवन उकर माटी आज दिन के 1 बज के आधा उकर बेटा यदेश जाना के घरे कोऑपरेटिव रोड बुआशेरी से उठा के ग्रां बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए Zibalek Lane Glen Park Vakwame, Charkori Sola Bariske 96 ans ke, Shri Goinsami Nanken, Jainadesh Plombier Nam se Jasti Janate Chatralanja, Uguzar Galhawan, Okarmati Aj Pajir ke 10 baje, Okar Ghare, Zibalek Lane Glen Park Vakwa se Uthake, 3 mamel ke Shamshan Bhumi le Javal Jai. Shok mein dubal is sab parivar log ke prati hum nisamvedna prakat karte hain jahan.

0: 8:22 हुए हैं। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और इस कार्यक्रम के दूसरे भाग में हम आ गए हैं यहाँ पर सुबह का नजराना प्रोग्राम, खासकर आप लोगों के नाम। और मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए, जी हाँ, अब समय आ गया है सुनने के लिए आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मॉरिशस पर। एरीज, मेष राशि।
0: मेष राशि के जातकों के लिए ये

0: सप्ताह उत्साह और नए अवसरों से भरा रहेगा। जो कार्य पिछले कुछ समय से रुक गए थे उनमें गति आएगी। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। किसी अपने के साथ पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है। मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन प्रार्थना या ध्यान का सहारा ले। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस वृषभ राशि,
0: ये सप्ताह धन और सुख की दृष्टि से शुभ रहेगा। पुरानी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। घर में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद आपके लिए उन्नति का मार्ग खोलेगा। किसी पर अंधविश्वास करने से बचना उचित रहेगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी मिथुन राशि,
0: मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह रचनात्मक और नए विचारों से भरा रहेगा। कला, संगीत, लेखन और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। परिवार के साथ मधुर समय व्यतीत होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर कर्क राशि,
0: कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह भाग्य का साथ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा। किसी पवित्र स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। परिवार के साथ प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें। लकी नंबर है सफेद रंग। लकी नंबर है 2 और लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेओ सिंह राशि,
0: ये सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके निर्णय सराहनीय रहेंगे। नए अवसर मिल सकते हैं और परिवार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि एक कठोर शब्द भी रिश्ते कमजोर कर सकता है। लकी नंबर है 1, लकी कलर है केसरिया।
1: वर्गो कन्या राशि,
0: कन्या राशि के जातकों को परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। अधूरे कार्य पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय शुभ रहेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और नियमित दिनचर्या अपनाएं। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा तुला राशि,
0: तुला राशि वालों के लिए संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा मंत्र होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से ये सप्ताह शुभ रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: ये सप्ताह धैर्य और साहस की परीक्षा लेगा। परिश्रम से सफलता अवश्य मिलेगी। रहस्य की बातों को अपने तक सीमित रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है लेकिन समय पर ध्यान देने से सब कुछ ठीक रहेगा। लकी नंबर है 3, लकी कलर है गहरा रंग।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह ज्ञान और प्रगति का रहेगा। गुरुजनों का मार्गदर्शन सफलता दिलाएगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। धन की स्थिति मजबूत होगी। भक्ति और प्रार्थना से मन को शांति मिलेगी। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉन, मकर

0: राशि।
1: मकर राशि अनुशासन और परिश्रम की इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे। नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं। परिवार का सहयोग हर कदम पर मिलेगा। पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रगति सतर्क रहें और पर्याप्त विश्राम करें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है नीला रंग।
0: Aquarius, कुंभ राशि।
1: ये सप्ताह नए संबंध और नए अवसर लेकर आएगा। मन में सकारात्मक विचार बने रहेंगे। किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। आर्थिक स्थिति संतोष रहेगी। लकी नंबर है 4, लकी कलर है बैगनी।
0: Pisces, मीन राशि।
1: मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति का रहेगा। भक्ति और ध्यान से मन को शांति मिलेगी। कला और संगीत से जुड़े लोगों को विशेष सफलता और सम्मान मिल सकता है। परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत होगा। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास रखें। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
0: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन। रेडियो मशीन पर
1: सारे 8 बज चुके हैं दोस्तों, और आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। बस हम आशा करते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो। और चलिए इमलता की आवाज़ में ये गाना सुनते हैं, अखियों के झरोकों से।

चलिए ऐसे ही साथ दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, यहाँ पर हम आप लोगों का साथ दे रहे हैं, हमेशा साथ देंगे, और ज़िंदगी के सफ़र में हमेशा हाथों में हाथ थाम कर हम साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना एक जंग है, और कदम से कदम मिलाकर चलना हमारा काम है।

पहले श्रोताओं साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। रंग तूने ओ रंगीले क्या जादू किया है, और कुदरत फिल्म का ये खूबसूरत गाना हम सुनते हैं, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे और सुनेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपकी स्वागत बा। हमने गल सप्ताह जैसे दिखला अपन देश में जो एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बा, जोन एगो विश्व विरासत स्थल बा, जोन की मॉरिशस में पहला हला एगर लिस्टिंग होल आप्रवासी घाट, ओकर पर ध्यान देते आ रही जा और फिर ये भी देखत है जा कि हमने के देश में शर्तबंद मजदूरी कैसे शुरू होल, कैसे उ लोग के काम चलत रहल और आज देखब जा कि हमने के देश में जोन कहाँ रहल ढाका जेके बोलीला सा ओकर व्यवस्था कैसन रहल। ऐसन ढेर केरियोली फ्रेंच या अंग्रेजी शब्द बा जेके हमने के बुजुर्ग लोग ओकर उच्चारण भोजपुरी में करे रंजा। अब जैसे अग्रीमेट बनर घिरमिटिया, शिमिस दोम बनल सिमिदोम, घोंद और पिचित बौंद बनल घों और चिबान, और ऐसा ढेर शब्द बा जोन अलग अलग रूप में प्रयोग होवेला। और ऐसने ही बनल कौं से ढाका दौकों, और आबितास्यों बनल बितासो बनल ताबिस्मों। हमने के देश में जितना शुगर एस्टेट रहल, शक्कर प्रतिष्ठान रहल, ओकर संगे गिरमिटिया मजदूर लोग के रहे खातिर एगो काम भी रहल ढाका। और यहाँ पर जे लोग रहे उ लोग अपन ताबिस्मों के भीर ही रहते रहन सा ताकि उ लोग के काम करे में आसानी हुई। जानेला कि काम अलग अलग रहल, कहूँ छोटा छोटा झोंपड़े रहे जहाँ पर लापाई लालवा से उ कॉमनल बा और गोबर से लिपल बा, तो कहूँ कौं तुल रहे, कहूँ कौं पत्थर के बनल कौं होस रहे। अलग अलग व्यवस्था रहल हमने के देश में आवे होला गिरमिटिया लोग के शरण देवे खातिर। और इस जोन कौं रहल एकर अंदर बहुत कमती सामान रहल, सकबा गिने कोची कोची रहल, सखी एगो पिरहा रहे, खटिया रहे, कपड़ा रखे के एगो संदूक रही, और सबसे ज़रूरी उही घर में एगो रसोई रहल और रसोई के ऊपरे एगो मचान रहल। कौ में गा

गाय बकरी पोसे खातिर छोटा जगह के प्रबंध करल जात रहल एगो दूर कोना में। और ई असर जब एगो गाय एगो बकरी एगो काँव में रहे ओकर अस्तबल जब दूर रहे त एकर असर भी काफ़ी बुरा रहल। बोलेलन जा कि जब बाढ़ आए तूफान आए त गाय बकरी बह जाए, गाय बकरी चोरी हो जाए, ऐसा ढेर खतरा बनल रहे। अब एगो उदाहरण ले जा थियानो के जोन शुगर एस्टेट बा थियानो बाराक्स 1803 में ईता बिस्मो मौ तैमो कौ स्थापित कर ले रहल और 200 बरिस तक साल 2003 तक यहाँ एक के आखिरी फसल होल। 19वीं सदी के ई शुगर एस्टेट में 1469 औरत मरद और लड़का रहत रहल। उ लोग के कौ के अलग अलग नाम रहल जैसे कौला पाए, कौ मुर्गी, कौ दुख, कौ लाओ, कौतुल। 1974 में यहाँ के गाँव में लौंगा जोन रहल ओके नेशनल मॉन्यूमेंट के लिस्ट में शामिल करा गए और आप्रवासी घाट एकर संरक्षण एकर रेस्टोरेशन पूरा कर लग कितने समय लेके। तो ये रहल गाँव के बाद। अब चले देखे कि एगो मजदूर के दिनचर्या कैसन रहल, फजीर से सांझ ले उ का करी। 19वीं सदी में जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है एगो मजदूर के चाहे सप्ताह में 6 या 7 दिन काम करे के 13 से 15 घंटा एक दिन, आज निखर 8 घंटा नहीं। लेकिन यहाँ पर मजदूर लोग बहुत जस्ती मेहनत कर रहे जा ओकर से जस्ती। फजीर के लापेल जब हो तो लोग उठियन से एगो बड़ा लाखलोस रहल काम है ऊ बजावल जात रहल बुनेरे 4 बजे से आगे अपन भात तकारी पका चुका के चाऊ ले के ऊ लोग जयन से मौके उ लोग के अटेंडेंस ले और सदार उ लोग के काम बांटी। बोले लंजा के गिरमिटिया लोग के ज़माना में फजीर के घामा उगे से आगे उ लोग खेत में काम शुरू कर देवत रहा लंसा और घामा डूबला के बाद घरे जातरा लंसा। जब काम करियन सा तो उ लोग पर कड़ा नज़र रखे खातिर प्लौते या सियादा रहे, थोड़ा आराम खातिर जे रुकला और उ लोग थोड़ा देख लियन जा तो आपके अपमानित करियन सा, साथ ही काम के और बढ़ा देवल जात रहल। तो कहाँ 4 बजे या 6 बजे आप घरे जेबा तो वो 1-2 घंटा से और बढ़ा देवल जाए। गासियों भी कटात रहल है और पगार भी बात बात में तोहर पगार कटात रहल। जे एक दिन के काम आपके जुनबा वो साहेब ओकर से खुश नहीं रही तो वो पूरा दिन के पगार आपके नहीं मिली। एक दिन आप जे बीमार होइला काम करे नहीं अइला तो 2 दिन के पगार कटात रहल। तो ऐसन ऐसन परिस्थिति में हमने के पूर्वज लोग जीलन जा, हमने के बाप दादा पर दादा पर नाना लोग काम करलन जा और आज हमने जैसन लड़का लोग के छोड़ के गल हवन जा और हमने के फर्ज बनेला कि उ लोग के जोन मेहनत करे के संस्कृति रहल ओके हमने अपन जीवन में उतारब जा। और आज भी भले ही परिप्रेक्ष्य बदल गल बा लेकिन जीवन में उतने ही मेहनत सहनशीलता और दृढ़ता से काम करब जा जितना कि हमने के पूर्वज लोग कर ले आल हवन जा। धन्यवाद, नमस्ते।

आज बजकर 27 मिनट हुए हैं श्रोताओ, चलिए ये भोजपुरी गीत आप लोगों के नाम हम करते हैं और इसी के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। भूलिएगा नहीं 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद नीतूषा के साथ आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम। और अभी के लिए उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं देश विदेश की खबरें आपसे विधिमान। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार नीतुषा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप लिमिटेड को पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट को दिए जाने की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद को आज FCC में पेश होना है। मॉरिशस के तटीय क्षेत्र बढ़ते दबाव में है क्योंकि 2010 की तटीय प्रबंधन रणनीति कभी लागू नहीं हुई। पर्यावरण विशेषज्ञ प्रिसिला इहाना के अनुसार तटों की सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वैध फिशरमैन कार्ड धारक मछुआरे नाव का नया इंजन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक के ऋण हेतु अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकती हैं। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ढालकर और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करके छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना है। घरेलू छत सुलह योजना की शुरुआत के बाद CB ने जनता को सतर्क किया है कि इंटरनेट पर चल रहे कुछ पूर्व पंजीकरण और विज्ञापन भ्रामक हैं। CB ये मांग करता है कि किसी भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें। कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए केवल CB कार्यालय जाएं। और विदेश में सीटल सेंटर के पास हुई गोलीबारी में एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। घटना के समय इस प्रतिष्ठित स्थल पर एक बड़े खाद्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सबको के प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में सबके स्वागत, अभिवादन हमने कर रहे जा, और हमेशा नियन हमने बात करी ला जा, चाहे वो लाइफ स्टॉक के बारे में हो, चाहे वो खेती बाड़ी के बारे में हो। तो आज हमने के दुगो मेहमान आल हवन जा फागेदाने से, दुगो एक्सटेंशन ऑफिसर्स। आप हव श्रीमान रेखानंद विदेशी और श्रीमती गायत्री देवी जालिम बिसेसा। और हमने जब भी बात करी ला जा, जब उत्पादन की बात करी ला जा, प्रोजेक्शन की बात करी ला जा, हाँ दूध बाटे, दूध कहाँ से आवेला? गाय से आवेला। गाय के पालन पोषण ओकर उत्पादन होला, मुर्गी बकरी ई सब। पर आज जो थीम, जो टॉपिक पर हमने जस्ती बतियाब जा, वो है बटक और बटेर, माने कि डक एंड क्वेल प्रोडक्शन। चले एकर पर जस्ती जानकारी पाए खातिर हमने के दोनों मेहमान के स्वागत बाटे। आप दोनों के

0: प्रणाम
1: नमस्ते
0: श्रीमती गायत्री जी। तनी सुन हमनी के जब बात करे थे जब बतक और बटेर क्वेल और डक एकर जुन मात्रा बा जुन कुन स्केल में ई ज्यादा जुन बातें जस्ती प्रचलित बातें मॉरिशस में
1: तो डक और क्वेल प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर पशुपालक पालते हैं। इस उत्पाद इस क्वेल उत्पादन में लगभग 20 पशुपालक है और इसमें 2 कमर्शियल फार्म्स सहित है जहाँ पर लगभग 600 क्वेल्स के फार्मिंग होती है। अब डक को लेंगे तो बतख 341 ब्रीडर्स है और लगभग 7600 बर्ड्स पालते हैं।
0: अच्छा आप बोल रहे थे जो मुर्गी न तो जुन गाय ओकर से तनी सुन न कमती हुए बा पर हाँ बातें जितना जुन हबी शिफ सब बतावत हुआ हाँ। काफ़ी बड़ी मात्रा में बातें
1: हाँ तो अब देखेंगे कि क्यों क्वेल के प्रोडक्शन करते हैं
0: जी।
1: इसमें बहुत से लाभ है जैसे ये छोटे होने से आसानी से संभाल सकते हैं, ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। यहाँ चिड़िया दोनों मांस के लिए भी और अंडे के लिए भी पाला जाता है। इनके अंडे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत से लाभ होती है यानी कि बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स। अब मैं क्वेल के अंडे पर बात करूँगी तो इसमें ज़्यादा विटामिन B1, B2, विटामिन ए है और मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन और पोटाशियम भी है।
0: अच्छा जब आप क्वेल की बात कर रही है श्रीमती गायत्री जी तो हमने जानी ला जाए क्वेल जो बातें वो मुर्गी से तनी सुन छोटा बातें
1: बहुत
0: साइज में
1: है,
0: साइज में
1: है।
0: और हमने हयो सुननी जा कि उकर जो अंडा बातें उकर जो नाशिया वो बातें वो मुर्गी से जस्ती अच्छा बातें स्वादिष्ट बातें
1: हाँ। तो क्वेल के मांस भी खाते हैं और अंडे भी, और अंडे जैसे मैंने कहा बहुत से लोग जो बीमार है जो जिसको आस्थमा के प्रॉब्लम्स होती है वे ज़्यादातर क्वेल के अंडे खाते हैं।
0: अच्छा हाँ। आप हमें बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बात मात्रा में तो नहीं लेकिन हाँ मॉरिशस में कहाँ कहाँ पर हमने जब क्वेल के प्रोडक्शन हुआ था उत्पादन हुआ था कहाँ कहाँ पर ही होला?
1: जैसे मैंने बताया 2 कमर्शियल फार्म्स है, एक खुशबुआ में और एक सालासी में, नहीं तो हर जगह थोड़े मात्रा में उसका उत्पादन होती है।
0: अच्छा अरे अभी तुहर से हमने बत्याब जा अब क्या है कि क्वेल के संगे संगे हमने बटक पर भी बत्याब जा और हमने संगे हवन श्रीमान रेखानंद विदेशी जी तो हमने के बता हुआ जो डक रेयरिंग बातें हमने के बतक सबसे पहले मॉरिशस में कौन कौन वायति के जो न डक बतक के प्रोडक्शन होला उत्पादन होला?
2: अच्छा तो अगर मॉरिशस में देखे तो दो तरह की ब्रीड होते हैं
0: जी।
2: पहला होते हैं पीके और दूसरा मानी जो हम मस्कोवी डक कहते हैं। तो बतख बहुत लोग उसे रेयरिंग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत हार्डी होती है यानी उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है।
0: अच्छा
2: इनके लिए कोई कॉम्प्लेक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती जिससे आपका पैसा और मेहनत दोनों बचती हैं। इनकी मोर्टालिटी रेट कम होती है, ये हमारे ट्रॉपिकल वेदर के बिल्कुल अनुकूल हैं और ये खुद अपना खाना ढूंढने में बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको बाहर खुले एरिया में छोड़ेंगे तो ये आसानी से घास फूस और कीड़े मकोड़े खा लेती हैं। ये दोनों ब्रीड अच्छी तरह से अडॉप्ट करती हैं
0: यानी कि अपने आप ये लोग अपना खाना ढूंढते रहते हैं। हमने देख लीजा मॉरिशस में जस्टी हमने देख लीजा जो बटक सब बातें नदी में कभी कभी बाहर जब हमने देखा सा टीवी पर फिल्मों में हमने देखा सा पर मॉरिशस में हमने देख लीजा जो बटक के जन काफ़ी जन हवन जा वो लोग काफ़ी लोग बोले लन जा गंदा पानी में रहे लन सा मठ मिलाएगी लाभू में रहे लन सा ये कितना सच बा कितना छोटा?
2: अगर देखें तो ये तो वाटरफॉल्स कहते हैं
0: जी
2: यानी वो वाटर को बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
2: अगर आप इन्हें रेयरिंग करना चाहिए तो पंड वाटर पंड का इस्तेमाल ज़रूरी है।
0: अच्छा
2: क्योंकि वो पानी पीना बहुत अवश्य है और ये उनके सेल

0: उसे डूबना चाहिए, उनकी आंख को वॉश करना चाहिए।
1: माने कि पानी जो है बहुत ही जरूरी है बटक के लिए।
0: जी हाँ।
1: अच्छा, तो इनके एडवांटेजेस क्या है?
0: अच्छा, तो अगर हम देखें तो ये इनके एडवांटेज तो ये बहुत रैपिड ग्रोथ रेट का होता है। अच्छा, और वो देखें तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि उनका कोई कॉम्प्लेक्स वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी नहीं है। अगर आप ब्रॉयलर यानी मुर्गी को देखते हैं तो उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डक को लेंगे तो कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी मोर्टालिटी भी रेट कम होती है, और ये हमारे ट्रॉपिकल वेदर के बिल्कुल अडाप्ट कर लेते हैं, तो आप उसे आसानी से बाहर भी रह कर सकते हैं। एक कशत ज़रूरी है, लेकिन बाहर भी वो घूमना पसंद करते हैं।
1: अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा श्रीमान बिदेसी जी कि उलोक के चाहेला एगो पानी, पानी बहुत ही ज़रूरी बात है उलोक खातिर, तो उलोक के घर बनाए खातिर जैसे पुलाइए बातें, जैसे गौशाला वो सब बातें उलोक खातिर कैसन लोग जिन हाउसिंग बातें उलोक के कैसे चाहेला हो के।
0: अच्छा, तो अगर हम अगर हाउसिंग देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्हें आवारा कुत्तों, चूहों और पशियों जैसे शिकारियों से बचाने हैं, और साथ ही तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी। बतख का शेड कम से कम वो तो 3 मीटर ऊंचा और छायादार होना चाहिए। आपको मांस वाली बतखों और ब्रीडिंग स्टॉक यानी अंडों को देने वाले को अलग अलग रखना होगा। शेड के अंदर डेंसिटी 3 बतखों पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए, साथ ही अंदर की ज़मीन पर लगभग 10 सेंटीमीटर्स गहरी वुड शेविंग की बेडिंग बिछानी चाहिए ताकि उन्हें आराम मिले और अंडे टूटने से बचे। आपको एक आउटडोर रन, जैसे मैंने कहा, और खुला एरिया चाहिए जो वायामेश लोहे की जाली से घिरा हो, जहां डेंसिटी 1 डक पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। इस रन के अंदर आपको एक पानी का चैनल, जैसे मैंने कहा एक वाटर पॉन्ड बनाना होगा जो 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर गहरा हो। पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि बतख अपना पूरा सैर उसमें डुबो सके। सैर डुबाने से उनकी आँखों के पास परी नहीं जमती और उनके नाक का रास्ता साफ रहता है। और एक सबसे ज़रूरी टिप, हमेशा उनका खाना यानी फीड शेड के अंदर रखें और पानी हमेशा बाहर रन में रखें। इसे बतख अंदर की बेडिंग को गीला और गंदा न कर पाएंगे।
1: यानी कि जो बतख होते हैं, जो डक्स होते हैं, वो काफ़ी वल्नरेबल हैं और उनकी जो संरचना है सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है, जो बाकी बाहर की जो जानवर वगैरह हैं।
0: एग्जैक्टली
1: जी। तो गायत्री जी, आप हमने के बताओ, हमने बात हाउसिंग के करत है, जहाँ भी क्वेल के बारे में, क्वेल उन लोग कहाँ रहे लंज, खुला मैदान कैसे?
2: क्वेल को भी हाउसिंग चाहिए
1: जी।
2: उनको हम 2 तरीके से पाल सकते हैं। एक डीप लीटर सिस्टम, जहाँ पर ज़मीन पर ज़मीन के ऊपर वुड शेविंग्स यानी कि लकड़ी के छिलके उस पर बिछाते हैं और उसी पर रियरिंग करते हैं। सेकंड है बैटरी केज सिस्टम, जो वायर मेश से बनती है और ज़मीन से 1 मीटर ऊपर होती है, और अगर हम 25 क्वेल्स को रखना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसा बैटरी केज चाहिए जो 1.5 मीटर लॉन्ग हो, 60 सेंटीमीटर वाइड और 45 सेंटीमीटर हाइट हो, और ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेती, और ये एक बैकयार्ड फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है,
1: सूटेबल है,
2: सूटेबल है।
1: तो जैसे पुराई होला आजकल हमने देखी लाजा सब निमन से ढाकल गल बाती, निमन से एगो हाउसिंग उलोक के बाती, तो क्वेल के भी ऐसे बाटे।
2: हाँ, तो बैटरी केज हम एक जो नफ मियर है।

0: दिहाई, उसके दीवार, इसके इसको उसके
1: सामने
0: सामने जी. हम रख सकते हैं, लेकिन बैटरी केज को हवा से, रेन से, उससे बचाना चाहिए
1: जी. हाँ चला, हमने संगे जुड़ल हवा एगो छोटा सा मिस कर ब्रेक के बाद वापस आ जा.

0: आज की चर्चा।
1: सच्ची बात है जी, पर्यावरण के हमनी स्वच्छ रखब जा त हमनी हमनी आदमी और हमनी संगे जितना पेड़ पौधा जीव जंतु जनावर सब होवन जा उ लोगो स्वच्छ रहियन जा और स्वस्थ रहियन जा। त हमनी संगे जुड़ल हवा आज की चर्चा कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमनी संगे होवन जा दू गो एक्सटेंशन ऑफिसर्स फागेदाने से, श्रीमती गायत्री देवी जानिम बिसे सर और श्रीमान रेखानंद बिदेसी। और आज हमनी बात कर रहे थे जा बटक और बटेर मानी कि डक एंड क्वेल प्रोडक्शन पर। तो अभी हमने देख लीजिए लोग के कौन कौन लाभ होता है बातें दोनों के, बटेर और बटक के भी। तो हमने के बता हुआ था नि सुन विदेशी जी कि जो हमने

0: बटक के बात कर रहा था जा कहाँ कहाँ पर ही मान कि अवेलेबल बातें जे को अचानक किने के मन बातें वो लोग के वो लोग कहाँ चाहिए अंजा।
1: अच्छा तो अगर हम देखें तो लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा पेके ब्रीड चलती है।
0: अच्छा
1: इसका मांस बहुत टेंडर होता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ती है। पेकेडक्स लगभग 5 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं और साल में 150 से 200 अंडे देती हैं और इनके अंडों को हाच में 28 डेज लगते हैं। दूसरे ब्रीड मस्कोवी ब्रीड यानी कालामानी भी लोग पसंद करते हैं जो 7 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू करती हैं। एक बार मैं 12-15 अंडों का ग्रुप देती है। मस्कोवी डॉग्स खुद अंडे के लिए आसानी से तैयार हो जाती हैं जो इसे बाकी रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही बनता है। अंडों के सीने में 35 डेज का समय लगता है। अब देखें तो कहाँ पर ये डक्स प्राप्त कर सकते हैं तो स्मॉल स्केल रजिस्टर्ड फार्मर्स को सबसे पहले गवर्नमेंट हैचरी देखनी चाहिए। रेजवी में पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर PBC है, पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर की डक यूनिट सीधे फार्मर्स को एक दिन के पेके डकलिंग सप्लाई करती है। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है इसलिए ये सिर्फ 32 रुपीज पर यूनिट में मिल जाते हैं। किसान PBC से एक दिन के बतख के बच्चे खरीदने के लिए ऑफिस जाकर या फोन कॉल द्वारा या ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हैचरीज में स्टॉक खत्म हो जाए तो आप प्राइवेट कमर्शियल ब्रीडर्स जैसे आवरीपो कंपनी लिमिटेड या इनिशा फार्मिंग से खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज एक दिन के डकलिंग के लिए 50 रुपीज से 70 रुपीज चार्ज करते हैं लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए लोकल मार्केट में एक एडल्ट पेकेडक लगभग 2 महीने 2 मंथ की करीब 1,000 रुपया में बिकती है और अगर आप इसे लाइव वेट पर बेच रहे हैं तो ये मार्केट में 150 से 250 पर किलोग्राम्स के बिक सकती हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होती है।
0: ये तो हम भी सुन रहे हैं पता चल रहा है हमको कि कितना फ़ायदा है इसमें। अच्छा तो हर्ष एक वो सवाल पूछती है अभी जितना जना खाए के मन बा लोग के किने के मन बा को लोग के पालन पोषण करे के मन बा वो लोग जस्ती कौन सी पसंद कर ले जाए डक के डकलिंग।
1: तो शुरू करने के लिए वो तो डकलिंग परचेस बहुत पसंद करते हैं जैसे मैंने कहा कि PBC पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर वो तो सब्सिडाइज प्राइस में बेचते हैं तो अगर हम कोई एडवाइस देते हैं तो हम उसे PBC से रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ कॉन्टैक्ट करें और डकलिंग पेके ब्रीड को बाय कर सकते हैं।
0: जी गायत्री जी हमने बात कर रहे थे जा जो डक डकलिंग क्वेल के बारे में भी हमें बताएगा कि जो क्वेल के जो अंडा बा वो कितना महत्वपूर्ण बाते जितना जना वो लोग के अस्थमा सब होला प्रॉब्लम होला हेल्थ स्वास्थ्य के वो लोग ओकर अंडा जो बाटे खा लंजा पिए लंजा तो ये जो एग प्रोडक्शन वो कैसे होला।
2: हाँ तो अंडे के उत्पादन कैसे होती है 7 हफ्ते होने पर एज 7 वीक्स एज का एक फीमेल क्वेल अंडे देना शुरू करती है और एक साल में साल भर अंडे देती है और एक साल में 300 अंडे से ज़्यादा दे सकती है। तो अंडे को दो या तीन दिन में उठाना चाहिए ताकि अंडे साफ रहे।
0: यानी कि जैसे बोला था वह साल भरती बरिस में लगभग 300 से जस्ती हुए अंडा उस अंडे
2: होते हैं।
0: हाँ। अच्छा
2: तो उसके बेनिफिट्स तो होती है
0: जी।
2: और इसका प्राइस भी जो लेयर एग है वो ज़्यादा होती है जहाँ यहाँ 10 रुपये में मिलती है क्वेल एग 15 रुपीज से ज़्यादा बेचते हैं।
0: तो जे दुकान जब बुटीक जब जस्ती तो मुर्गी के अंडा मिलेला क्वेल के अंडा तो नहीं दिखा सब जस्ती कहाँ होकर बिक्री हुईला
2: सुपरमार्केट में मिलती है। हाँ तो जैसे मैंने कहा उसका प्राइस ज़्यादा होती है, और लोग कैसे खाते हैं।

0: उसको बॉयल करके खाते हैं या ऑमलेट बना के ये भी खाते हैं। हाँ, तो अब मैं बात करूँगी रिप्रोडक्शन पर
1: जी।
0: ये अगर एक फार्मर खुद के दे ओल्ड क्वेल प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए 1 मेल और 5 फीमेल चाहिए जो 7 हफ्ते के एज का हो, 7 वीक्स ओल्ड। जो अंडे मिलती है उनसे तो वो फर्टाइल होती है और उसको इंक्यूबेटर में डालना चाहिए 19 डेज तक। उसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन दोनों का रेगुलेट करना चाहिए। और 19 डेज के बाद क्वेल अंडे के बाहर निकलते हैं और उनके वज़न 8 ग्राम होती है, 8 ग्राम्स। हाँ, तो जब वो इंक्यूबेटर से निकलती है तो उसके बाद क्वेल को ब्रूडिंग बॉक्स में डालना चाहिए।
1: ब्रूडिंग माने कि शुफाश।
0: शुफाश
1: जी,
0: क्योंकि उनके जो फेदर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ तो उनको हीट की आवश्यकता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्रीज पर सेट करते हैं, उनको पानी और खाने के लिए भी देना चाहिए। और ब्रूडिंग पीरियड 3 हफ्ते तक चलती है और हर हफ्ते टेम्परेचर को घटाते हैं और 3 हफ्ते पर वो 25 डिग्रीज हो जाती है, तो फिर हीटिंग निकालते देते हैं।
1: अच्छा, आप हमने के बताओ जो कोयल सब बातें वो लोग कौन सी खालन सर?
0: हाँ, तो देखेंगे कि फीडिंग में जो मीट प्रोडक्शन करते हैं जैसे मैंने कहा तो 1 डे से 30 डेज तक ब्रॉयलर स्टार्टर देते हैं और 31 to 56 डेज तक ब्रॉयलर फिनिशर, और 56 डेज पर वह स्लोटर वेट हो जाती है उसका स्लोटर वेट, तो उसको अब खा सकते हैं
1: जी।
0: हाँ, तो इस मांस जो है ज़्यादातर लोग कैसे खाना पसंद करते हैं, ग्रियाद करते हैं या उसको मैरिनेट करके कुक करते हैं, ऐसे खाते हैं।
1: हमने तो और भी सुना है कि और भी डिशेस बनाए जाते हैं,
0: बहुत से डिशेस बनती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हाँ, अब जो एग प्रोडक्शन करते हैं उस वो फीडिंग डिफरेंट होता है। 1 to 30 डेज तक चिक फीड देते हैं, 31 to 53 डेज तक पुलेट ग्रोअर, और जब वो क्वेल अंडा देना शुरू करती है तो 54 डेज तो एंड ऑफ लेइंग साइकिल तक उसे लेइंग मास देते हैं। हाँ,
1: अच्छा रेखानन जी, तू हमने के बताओ जो शुफाज होला बटक के वो कैसे होला?
2: अच्छा, तो नए पैदे हुए बतख के बच्चे को अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा गर्मी की ज़रूरत होती है जब तक कि उनके पंख अच्छे से डिवलप न हो जाएं। डकलिंग्स को एक कन्फाइंड एरिया में साफ और सूखे लिटर के साथ रखा जाता है और हीट देने के लिए उनके ऊपर एक लैंप लटकाया जाता है। 100 वाट का बल्ब 50-50 डकलिंग्स के लिए काफ़ी हीट देता है। पहले वीक के दौरान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और बल्ब की हाइट को एडजस्ट करके हर वीक टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस कम करना चाहिए। थर्ड वीक, तीसरे हफ्ते तक आप हीट सोर्स बल्ब को हटका सकते हैं क्योंकि वो तो मजबूत बन जाती हैं।
1: अच्छा, हमने के बताओ वो लोग कौन सी खालन सर जो बटक और डकलिंग्स कौन सी खालन सर वो लोग?
2: अच्छा, तो मीट प्रोडक्शन के लिए हम ब्रॉयलर डक्स पर फोकस करते हैं। अगर आप उन्हें सही से फीड देंगे तो वो सिर्फ 8 सप्ताह यानी 8 वीक्स में लगभग 4 किलोग्राम्स का स्लोटर वेट पूरा कर लेगी। हम कमर्शियल पेलेट्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनके फीड एफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं। ये आसानी से

0: डाइजेस्ट होते हैं और उस इसे फीड वेस्ट नहीं होता। आपको उन्हें एडलिब फीड देना चाहिए, यानी उनका फीडर हमेशा भरा होना चाहिए। 0 से 3 सप्ताह के लिए डक स्टार्टर छोटे दाने उसे करें, यानी डकलिंग्स को डक स्टार्टर से फीड करें, और 4 से 8 सप्ताह 4 to 8 weeks के लिए डक फिनिशर का यूज़ करें। अगर आप फीमेल लेयर डक्स रख रहे हैं तो जब वो 5 से 7 महीने की उम्र में, क्योंकि 5 महीने तो पेका ब्रीड और 7 महीने तो मस्कुमानी का ब्रीड, अंडे देने वाली उन्हें ब्रीडर डक ब्रीडर मिक्स देना शुरू कर दे। आप ये सारे फीड लाइफ स्टॉक फीड लिमिटेड या मीडर्स फीड लिमिटेड से आसानी से खरीद सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने वापस आए ला जाए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आज की चर्चा।
1: तहां आज हमनी बटक और बटेर पर चर्चा कर रहे थे जा विदेशी जी, एगो सवाल आल हमर दिमाग में जब हमनी बटक के बात कर रहे थे जा, ओकर जुन अंडा बा क्वेल के बारे में तो हमनी जानी ला जा, जुन बटक बा ओकर अंडा कुंसुमा भा कैसे कितना प्रतिशत?
2: जी हाँ, डक के अंडा लोग भी कंज्यूम करते हैं। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर वो डकलिंग्स को परचेस करते हैं और मांस के लिए उसे रेयर करते हैं, क्योंकि दो मंथ के बाद ये एडल्ट बन जाते हैं और जैसे मैंने कहा 1000 रुपीस में बिकते हैं। अगर आप अंडे को प्रोडक्शन के लिए उसे रेयर करते हैं तो वो किसान पीके ब्रीड 5 मंथ को वेट करना चाहिए, क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन साइकिल वो अंडे को प्रोड्यूस वन जब वो 5 मंथ होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये पीके ब्रीड जब अंडे देती हैं तो वो फीमेल उसे जैसे मुर्गी जैसे कहते हैं कि ब्रूडिंग हाँ, तो वो नहीं कहते, हम उन अंडे को इंक्यूबेटर में रखना चाहिए। इंक्यूबेटर एक जैसे ओवन है, 37.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंटेंट 70-80% 4 वीक्स पर रोज कंट्रोल करते हैं और उनमें बच्चे यानी डकलिंग्स हैच होते हैं। अब देखते हैं मानी ब्रीड, वो तो बहुत अंडे देते हैं और वो गुड ब्रूडर्स होती हैं, यानी वो अंडों पर बैठती हैं और देखते हैं कि 6 मंथ के यानी 6 वीक्स के बाद वो डकलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मानी के ब्रीड से हमें इंक्यूबेटर का ज़रूरत नहीं है।
1: ये तो बहुत ही अच्छा बार बात है। तो अभी जैसे बोला थ्रल कि ओकर मांग बाटी इतना जस्सी नहीं बाटी, पर कल कल लोग जानत होवन जा एक जो लावता जैसे बोला हो, अभी लोकल मार्केट में एक मांग काहे बाटी?
2: जी हाँ, अगर हम देखें तो बहुत बतख की डिमांड तो ज़्यादा है, खासकर ईस्टर और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल सीजन्स में। लोकल होटल्स और रेस्टोरेंट में भी इसकी हाई एंड डिमांड है, खासकर स्पेशलिटी आइटम्स जैसे फैटी लिवर यानी फ्वाग्रा के लिए, यहाँ तक कि इसके बाय प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू है। आप इसके पंखों यानी फेदर्स को तकिए और कुशन बनाने वाली कंपनीज को बेच सकते हैं। इसी वजह से लोकल लाइफ स्टॉक मार्केट प्लेसेस में डक मीट की बहुत अच्छी कीमत मिलती है।
1: अच्छा, ये भी होता है?
2: जी हाँ,
1: ये तो बहुत ही ठीक बात है। और हमने बात करा था जब बटक और बटेर, गायत्री जी हमने जब बात करी ला जब मुर्गी के हमने जाना फीमेल सब होला, तो कोयल के भी होला? हाँ। फीमेल को जो वेस्ट बाटे कैसे इस्तेमाल होला?
3: तो कोयल के जो सॉलिड वेस्ट होती है उसको समेटते हैं और उसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, और उसके बिकॉज एनिमल सोर्स के ओरिजिन है वो कंपोस्ट, तो एनपीके बहुत हाई होती है,
1: एनपीके मतलब
3: कंटेंट नाइट्रोजन पोटाशियम और कैल्शियम जो प्लांट्स के लिए आवश्यक है, उस

0: वो काफ़ी हाई होती है तो वो कंटेंट, तो उस कंपोस्ट को हम अपने गार्डन में या फ्लावर पॉट में इस्तेमाल करते हैं।
1: माने कि जब घर बनावत हो, क्वेर के होए न तो बटक के होए, चाहे ला निमन से ढांचा सब बनाए के जब नीचे सब फर्श सब डालत हुआ, चाहे माने कि

0: एक जो भी डाल सकते हैं, एक वुडन प्लेटफॉर्म, तो वो मानियो उस
1: कि
0: में
1: छेद
0: पर
1: होने चाहिए, तनी सुन,
0: वो
1: छेद उस सब जमीन नीचे उस सब जाए।
0: तो वो आई मेश पर है, तो वो नीचे ही जाएगी और उसको कलेक्ट करते हैं। और वैसे ऐसे ही जो फर्श होती है वो साफ रहती है।
1: तो एक मांग बाते जैसे मुर्गी के जन फिमिया बाते
0: हाँ, जैसे
1: कॉम्पोस्ट
0: मुर्गी
1: खातिर।
0: के है वैसे ही क्वेल के कंपोस्ट भी, उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ऐसे ही
1: और वो
0: होता
1: कितना
0: है।
1: दिन पर काय कि हमने जाने ला जा जन मुर्गी के जन वेस्ट बाटे सॉलिड वेस्ट फिमिया बनाए खातिर
0: हाँ
1: ओकरा चाहेला निमन से रखे के सूखे में
0: हाँ
1: धूप घामा
0: तो
1: सब चाहेला।
0: जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको ढकते हैं ताकि रेन वाटर उसमें ना आए, और रेगुलर टर्निंग करते हैं। वो अगर समर के पीरियड होती है तो 2 महीने में तैयार हो जाती है, और 2 महीने के बाद आप उस कंपोस्ट को लेकर अपने प्लांटेशन में, गार्डन में या फ्लावर पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और विदेशी जी जो बटक बाते वो लोग के जो सॉलिड वेस्ट बा ओकर इस्तेमाल कैसे होला, कैसे मैनेजमेंट होला।
2: हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब बतख पाती हैं, अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो बदबू, मक्खियों, चूहे और पानी का पोल्यूशन बढ़ेगा। फार्मर्स को अपना यार्ड बिल्कुल साफ रखना चाहिए, एंश्योर करे कि शेड प्रूफ, फ्लाई प्रूफ हो, वहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो और बेडिंग हमेशा सूखी रहे। अपना फीड हमेशा एयर टाइट बिन्स में बंद करके रखें ताकि चूहे अट्रैक्ट न हो, और ड्रेन्स के रेगुलर सफाई करें। सबसे ज़रूरी बात, सॉलिड वेस्ट और पुरानी बेडिंग से कंपोस्ट बनाएं, और सारा गंदा पानी एक सही सेप्टिक टैंक में ही बनाएं।
1: अच्छा, एक प्रश्न तो आप दोनों से हमने पूछ अब जा कि अभी हमने हमेशा क्लाइमेट चेंज है, अभी जैसे जलता लेता कभी खामा कभी मोटका पानी सब आवेला, तो क्लाइमेट चेंज के चलते जो क्वेल और वो बतख प्रोडक्शन बाते वो अफेक्टे हो सके ना।
0: हाँ, तो क्लाइमेट चेंज लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करती है, टेम्परेचर। इसीलिए जब हाउसिंग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा ओपनिंग्स होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। और फ्लडिंग से बचाने के लिए आप हाउसिंग को रेज्ड कर सकते हैं, ड्रेन इसके चारों ओर ड्रेन्स बना सकते हैं। और क्वेल तो बैटरी केज में है और वो 1 मीटर हाई हाइट पर है, तो ये सब अडेप्टेशन है क्लाइमेट चेंज से।
1: अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न हमारे दिमाग में चला। हमने जब खेती बाड़ी के बात करी ला जा, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी ला जा, तो लाइफ स्टॉक में भी कुछ हो रहेला ऑर्गेनिक फार्म, ऑर्गेनिक लाइफ
0: अगर
1: स्टॉक कैसे।
0: कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम कंसंट्रेट फीड इस्तेमाल करते हैं, और कंसंट्रेट फीड पता नहीं कि ऑर्गेनिक है या नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफ़िकल्ट है। लेकिन मस्कोवी को लेकर, पैकिंग डक को लेकर, वो तो कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन पैकिंग डक जो मस्कोवी है वो हम मेज़ दे सकते हैं, कुछ राइस दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, इसके मांस को भी और उसके एग को भी।
1: अच्छा, हबी ढेर जाना सकेला तोलो के सुन के ऐतिहासिक से हवन जा क्वेल और जो बटेर के प्रोडक्शन उकर उत्पादन करे खातिर, तो उन लोग के फायदे से कौन कौन फैसिलिटी मिलेला विदेशी जी।
2: जी हाँ, मैं तो सभी से इनविटेशन करना चाहता हूँ कि वो फूड एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारे के ऑफिसर्स हैं को विजिट करें। हम डक प्रोडक्शन और फॉर्म मैनेजमेंट में बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं।
1: जैसे कि
2: ये डक प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, क्वेल प्रोडक्शन, तो इस ट्रेनिंग कोर्स जैसे कि मैंने बताया, हम 1, 2, 3, 4 दिन हाफ डेज ट्रेनिंग कोर्स देते हैं। और डिफरेंट टॉपिक से, यानी हाउसिंग, फीडिंग, बायोसिक्योरिटी,

0: की मेजर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम उस चार दिन में कवर करती हैं,
1: माने कि थ्योरी और प्रैक्टिस भी,
0: तीन दिन, तीन हाफ हाफ डेज थ्योरी और फोर्थ डेज में हम एक कंडक्टर टूर करती हैं। तो हम एक डक फॉर्म को जब मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ तो हम सारे पार्टिसिपेंट को एल्बियन ले जाते हैं, वहाँ पर जैसे मैंने कहा रेजी पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर, तो वहाँ पर वो डकलिंग बेचते हैं, पर उसके पेरेंट्स को वो एल्बियन फॉर्म में रेयर करते हैं। वहाँ पर ढेर ढेर पेरेंट हैं और वहाँ पर मेल और फीमेल को रेयर करते हैं, और वो अंडे जब फीमेल देती हैं तो हम उनको कलेक्ट करके इंक्यूबेटर में डालकर वो डकलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हम इन सब पार्टिसिपेंट्स को वहाँ को लेकर ये सब दिखाते हैं कैसे वहाँ पर ये पेके डक का ब्रीड वो रेस करती है।
1: मान कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज सिखावल जाला कि कैसे लोग के रेयरिंग होला, कैसे ब्रूडिंग होला, कैसे इंक्यूबेटर में डालल जाला, कैसे अंडा के जो प्रोडक्शन बाते, जो वेस्टेज बाते, वेस्ट मैनेज सब दिखावल जाला, सिखावल जाला।
0: एग्जैक्टली, ताकि जब ये किसान वो शुरू करते हैं तो वो जानते हैं कि कौन से स्टेप करना चाहिए ताकि उनकी बिजनेस प्रॉफिट में रहे, कोई नुकसान न रहे। खासकर जब वो डकलिंग को परचेस करते हैं तो ये ब्रूडिंग जैसे मैंने कहा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको हीट, उनको बल्ब से हीट देना दो हफ्ते में 24 आवर्स एवरी डे है, उन पर लीटर पर रेयर करना, क्योंकि ये तो कंक्रीट फो कोल्ड उसे देखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं ना, तो उनके फेजर्स नहीं होते, तो अगर हम उन पर डायरेक्टली फोर पर डालते हैं तो वो तो मर जाएंगे। तो इसीलिए वो सारा चीज़ हम ट्रेनिंग कोर्स में सब कुछ बतलाते हैं।
1: तो ये जो ट्रेनिंग हुआ बात है, ये भर्ती बारिश से चलेगा कैसे?
0: जी हाँ, हम फ्लक में के ऑफिस में काम करता हूँ, तो हर साल एक बार करता हूँ। मेरे कॉलेज तो सेंट पियर में, वहाँ पर भी नॉर्थ में, मापू में, रिविया दे जाऊँगी में, तो सारे दफ्तर मॉडल फॉर्म जो फागे का ऑपरेशन करते हैं वहाँ पर हम ये ट्रेनिंग कोर्स देते हैं।
1: और कौन कौन स्कीम्स बातें?
2: हाँ, तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे फ्लैक मॉडल फार्म में डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर जो है वहाँ पर एक डक यूनिट है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो देखना चाहते हैं कि कैसे उसका हाउसिंग होना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर हम उसे एक विज़िट करा सकते हैं और वो देख सकता है कि हाउसिंग कैसा है और वो रन कैसा है, कैसे पानी देना चाहिए, कैसे रेयर करते हैं।
1: और खाली हौजा पहुंच के वो लोग सखियंजा करे कि चाहे फ़ोन करे कि अगाड़ी हाँ एक हाँ, वो
2: एक,
1: पर कैसे?
2: हाँ, एक अपॉइंटमेंट लेना लेते हैं तो रेखानंद जी वहाँ पर है, तो उनको लेकर एक विजिट और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं।
1: तो क्वेल के बारे में कैसे ट्रेनिंग होला?
2: क्वेल में हम ट्रेनिंग देते हैं, इट्स अ टू डे सेशन, वन थ्योरी और एक विजिट। विजिट में हम एक क्वेल फार्म पर जाते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्वेल को पालते हैं। अब देखेंगे कि कैसे और सुविधा होती है, तो ग्रांट स्कीम्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स है क्वेल फार्मर्स के या डक फार्मर्स के, जैसे अगर उनके हाउसिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसका स्कीम है। दूसरा स्कीम है इक्विपमेंट पर, जैसे मैंने कहा बैटरी केज होती है, तरह तरह के इक्विपमेंट चाहिए उनके पालन पोषण में, तो वो इक्विपमेंट के खरीदारी के लिए मिलती है। सीसीटीवी कैमरा है, इंस्टॉलेशन और फेंसिंग इक्विपमेंट भी है, तो ये सब सुविधाएं मिलती है क्वेल और डक फार्मर्स को।
1: अच्छा, जितना जना अभी क्वेल के हो कि बटक के हो, उन लोग के कौन डॉक्यूमेंट चाहिए ले जाए के?
2: हाँ, तो बेसिकली जैसे कि उनके लीज एग्रीमेंट या उनके टाइटल डीड जहाँ पर वे अपना पालन पोषण कर रही है।

0: एगो गार्ड प्लांट है जैसे होला एगो गार्ड चाहिए ला
1: हाँ, वो ब्रीडर्स गार्ड होना ब्रीडर्स चाहिए गार्ड, हाँ स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड पर जाके एप्लीकेशन करते हैं और कोटेशन चाहिए जो भी इक्विपमेंट हो या अपग्रेडिंग हो उनका कोटेशन होना चाहिए और अन्य छोटा सा डॉक्यूमेंट जो अकंपनी करेंगे उनके एप्लीकेशन को और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है हर एक्सटेंशन सब ऑफिस में तो वे हमारे यहाँ आ सकते हैं जानकारी के लिए क्वेल पर बतख पर या अन्य जानकारी जैसे जो भी ग्रांट स्कीम है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उनको चाहिए हम मदद करेंगे और चेकलिस्ट है उनको सब बताएंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए
0: और हमेशा नियन फागे जन बातें सरकार बातें हमेशा जितना जन ब्रीडर्स हवन जा जितना प्लांटे वो सब हवन जा उन लोग के मदद पहुँचावे लन जा कितना स्कीम्स बातें ग्रांट्स बातें हमने के कार्यक्रम लगभग समाप्त हुआ था रेखानंद विदेशी जी जैसे आके तो हर मोडल ऑफ जैसे हमने बोली राजा
2: okay, तो मैं किसान से मांग करता हूँ कि डक रेयरिंग बहुत आसान होती है स्पेशली वीमेन जो घर पर रहते हैं तो ये पार्ट टाइम जॉब इसलिए आसानी से कर सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा डक पालने में बहुत बहुत आसान है नो वैक्सीनेशन नो डक्स सब खा सकते हैं यानी कंसेंट्रेट यो तो किचन वेस्ट ग्रीन्स तो इसमें सिर्फ एक अच्छी जगह होना चाहिए है एक पेन एक शेड जैसे कहते हैं और वो रन और एक पंड वाटर पंड तो आप आसानी से उसे पाल सकते हैं और हर दो मंथ के बाद आप उसे बेचकर प्रॉफिट
0: आमदनी पा सकते हैं जी,
2: जी हाँ
0: गायत्री जी
1: और क्वेल का भी जो भी छोटा सा स्पेस हो जैसे रेखानंद जी ने कहा पार्ट टाइम रेवेन्यू मिलना मिल सकती है और 25 क्वेल्स अगर आप रियर करेंगे तो रोज़ अंडे मिलेंगे और कुछ आप कंज्यूम करें जो भी ज़्यादा हो वो बेच सकते हैं और इससे ज़्यादा मैंने कहा इसका जो प्राइस है वो हाई है अब अगर जानकारी चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा किसी भी सब ऑफिस में आइए हमारे सैंपियर के ऑफिस का नंबर है 4339350 और हमसे मिलिए और हम आपको गाइड करेंगे एनी डक या क्वेल प्रोजेक्ट में
0: तो जे बटक के जे क्वेल मान कि बटेर के जो उत्पादन करे के मन बातें पालन पोषण करे के मन बातें ये बहुत ही आसान बातें बस तनी सुन जगह चाहेला तनी सुन वनों तो भी चाहेला हाँ मेहनत करब तो मेहनत के फल मिली तोहरा खाए के और उजे बेचब तो तोहर पैसा मिली तोहरा आमदनी मिली तो आप दोनों मेहमान के श्रीमती गायत्री देवी जान एमबीसी सर और श्रीमान रेखानंद विदेशी आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद और हमने के सब जना संगे हमने तोहर से बोलब जा धन्यवाद और प्रणाम नमस्ते
1: नमस्ते।

0: श्री सुंदर संक्षिप्त समाचार, आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। वैद फिशरमैन कार्ड धारक मछुआरे नाव का नया इंजन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक के ऋण हेतु अपने इलाके के मत्स्य विभाग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की ज़रूरतों के अनुसार ढालकर और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करके छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना है। घरेलू छत सुलह योजना की शुरुआत के बाद सीबी ने जनता को सतर्क किया है कि इंटरनेट पर चल रहे कुछ पूर्व पंजीकरण और विज्ञापन भ्रामक हैं। सीबी ये मांग करता है कि किसी भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें। कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए केवल सीबी कार्यालय जाएं। और विदेश में अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले फिलहाल रोक रखे हैं, जिसके चलते तेहरान ने लगभग 2 सप्ताह की बमबारी के बाद क्षेत्र में अपनी जवाबी कार्रवाई बंद कर दी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा जा रहा था कि सेना के पास गोला बारूद की कमी हो रही है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारोद प्लेंडेगोश में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेवंती बालकारन, पैदाइशी नाम सीताराम और जो चाची नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर रारोद प्लेंडेगोश से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
3: घड़ी मिलाते चले श्रोताओं, सुबह के 10:02 हो रहे हैं। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और बस एक घंटे का कार्यक्रम है, भक्ति धारा कार्यक्रम। आइए श्री गणेश करते हैं।

0: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनू अरुण।
1: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोतो, रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 256 यानी 256 दोहे के नीचे की चौपाइयाँ मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग है धनुर्भंग का। मिथिला में राजा जनक ने सीता जी के विवाह के लिए धनुर्यज्ञ का आयोजन किया है। अनेक राजा आए लेकिन कोई भी धनुष को उठा पाने में समर्थ नहीं हो सका। गुरु विश्वामित्र के आदेश का पालन करते हुए राजकुमार राम उठे

आगे बढ़े और उन्हें आगे बढ़ते हुए देख करके रानी सुनैना बहुत चिंतित हो जाती हैं, बहुत विचलित हो जाती हैं, घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि इतनी कम आयु के इतने कोमल शरीर वाले श्री राम भला इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे जिसे बड़े से बड़े राजा भी स्पर्श तक नहीं जिसका कर पाए। और तब उनकी सखी उन्हें तसल्ली देती है, धैर्य बधाती है और अनेक उदाहरण देकर के ये समझाती है कि केवल किसी के शरीर को देख करके हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि वो कितना योग्य है। देखने में अवश्य श्री राम कम आयु के हैं लेकिन उनका सामर्थ्य बेजोड़ है, अनुपम है, अद्वितीय है। और अब हम आगे की चौपाइयों पर ध्यान देते हैं कि तुलसीदास जी इन आगे की चौपाइयों के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बै देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। अब जब सखी ने ये सारे उदाहरण दे करके रानी सुनैना को ये समझाना चाहा कि आप श्री राम की आयु पर ध्यान मत दीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि वे धनुष उठा लेंगे, तो उनके मन में विश्वास पैदा हो गया। राम जी के सामर्थ्य के संबंध में रानी सुनैना को विश्वास हो गया और ऐसा विश्वास जब मन में आया तो क्या हुआ, निराशा दूर हो गई। जैसे ही आशा मन में आती है निराशा दूर हो जाती है, और जैसे ही आशा मन में आती है दुख दूर हो जाता है, विषाद दूर हो जाता है। तो मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, अब रानी सुनैना का सारा विषाद दूर हो जाता है और उनके मन में श्री राम के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है यही राम मेरे जामाता बनेंगे, इन्हीं राम से मेरी पुत्री का विवाह होगा। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवत जहिते ही। और उस समय राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। सबके अलग अलग स्थिति है, दृश्य एक है लेकिन सबके भाव अलग अलग हैं। कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। श्री राम जा रहे हैं मंच पर क्या करने, धनुष उठाने के लिए, और उन्हें देख करके अलग अलग राजाओं की जो प्रतिक्रियाएं हुई उन पर हमने विचार किया, जो संत हैं जो ऋषि मुनि हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई उसे भी तुलसीदास जी ने लिखा, और उसके बाद जो नगरवासी हैं उन्हें क्या अनुभूति हुई उसका भी वर्णन किया, फिर रानी सुनैना को कैसे चिंता सताने लगी कि श्री राम क्या धनुष उठा पाएंगे उसका कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया, और अब उस व्यक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका भाग्य ही इस धनुष पर टिका हुआ है, और वो कौन है, सीता जी। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तब राम ही बिलो की बै देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। उस समय राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। सीता जी भी देख रही हैं कि इतने बड़े बड़े, क्योंकि वो तो जयमाल लेकर के वहाँ भवन में उपस्थित हैं, जैसे ही कोई राजा धनुष तोड़ देता सीता जी जयमाल उसके गले में डालती, तो सीता जी वहाँ खड़ी हैं देख रही हैं। और जब सीता जी ने राम जी को देखा कि वे जा रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए मंच की ओर बढ़ रहे हैं और अब बस वो धनुष के पास पहुँचने ही वाले हैं, तो सीता जी भयभीत हो उठी। इसलिए भयभीत हो उठी कि क्या सचमुच श्री राम इस धनुष को उठा पाएंगे, इतने कोमल अंगों वाले राम, इतनी कम आयु के राम भला इतना कठिन, इतना दुरूह, इतना असंभव कार्य कैसे कर पाएंगे। ये भय उनके मन में पैदा हो रहा है, हृदय से यही चाहती हैं कि श्री राम ये कार्य पूरा कर दें और मेरा विवाह उनसे हो जाए।

लेकिन केवल चाहने से तो कुछ नहीं होता, मन में तरह तरह के संशय, मन में तरह तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और वे जिस तिस देवता से प्रार्थना कर रही हैं। मानो मन का कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जब हम किसी कष्ट में होते हैं, जब हम किसी दुविधा में होते हैं, जब हम अपनी कोई कामना पूरी करवाना चाहते हैं, तो हमें उस समय केवल और केवल परमात्मा की याद आती है। हम जितने गहन भाव से उस समय परमात्मा के चरणों में समर्पित होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हमारी कोई आशा पूरी नहीं हो रही है और हम चाहते हैं कि वो पूरी हो, तो हम अखंड विश्वास से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वही स्थिति सीता जी की है। वे हर देवता से प्रार्थना कर रही हैं। हिंदू धर्म में तो इतने देवता हैं, हम सब यही करते हैं। कभी एक देवता से प्रार्थना करते हैं, कभी दूसरे से, क्या पता कौन हमारी बात सुन ले। तो सीता जी भी यही कर रही हैं, जिस तिस देवता से विनती कर रहे हैं, यानी सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? मन ही मन मनाव अकुलानी, हो हु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तु हरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी। उन्हें सबसे पहले शिव पार्वती जी की याद आती है। क्यों? क्योंकि माँ ने उन्हें गिरिजा जी के मंदिर भेजा था। धनुर्यज्ञ आरंभ होने से पहले माँ ने कहा था कि जाओ पुष्प वाटिका में, जो माँ गिरजा का मंदिर है, उसमें जा करके उनसे प्रार्थना करके आओ, क्योंकि माँ पार्वती के चरणों में जब जा करके एक कन्या प्रार्थना करती है अच्छा वर प्राप्त करने के लिए, तो यही मांगती है कि जैसे आपको शिव जी प्राप्त हुए, वैसा ही शिव जी जैसा ही पति हमें भी मिले। तो इसलिए उन्हें महेश और भवानी यानी शिव पार्वती जी की याद आ रही है, उनसे प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? हो हु प्रसन्न महेश भवानी, हे शिव जी, हे पार्वती जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल आपन सेवकाई, कर ही तु हरहु चाप गरुआई। मैंने आज तक जो सच्चे मन से आपकी सेवा की है, आपकी पूजा की है, उसका फल मुझे चाहिए। मैंने बहुत समर्पित भाव से आपकी पूजा की है, कभी कुछ मांगा नहीं है। आज चाहती हूँ कि मेरी पूजा सफल हो जाए और मुझे आप स्नेहपूर्वक एक ही आशीर्वाद दीजिए, एक ही कामना पूरी कीजिए, और वो क्या? धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे शिव जी, ये आप ही का तो धनुष है, इसलिए आप ही कुछ कर सकते हैं। और आपसे क्या मेरी प्रार्थना है कि ये धनुष इतना भारी है कि कोई भी राजा इसे छू तक नहीं सका, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उसे छू भी सके, यानी कोई उसे उठा सके, कोई टच से मस कर सके, कोई उसे अपनी जगह से हिला सके, इतना भी कोई नहीं कर पाया, क्योंकि आपका ये धनुष बहुत भारी है। इसलिए जो कुछ कर सकते हैं वो केवल आप कर सकते हैं। आप क्या करें कि इस धनुष के भार को हर लीजिए, यानी इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि श्री राम जैसे ही इसे छुएं वो धनुष उठा लें। बस मेरी इतनी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इतने सच्चे मन से सीता जी महेश यानी भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं, पार्वती जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे पार्वती जी, आप तो हर कन्या के मन को समझती हैं, आप माँ हैं, आप जगदम्बा हैं, आप मेरे मन के भाव को नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? जरा महेश से कहिए, अपने पतिदेव से कहिए, मेरी प्रार्थना वे स्वीकार करें। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कीन्हु तू सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। अब वे किससे प्रार्थना कर रही हैं? गणेश जी से। हे गणनायक, हे गणों के नायक, हे वरदायक, हे वर देने वाले गणेश जी, आजु लगे कीन्हु तू सेवा, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी बिनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। कहा ना तुलसीदास जी ने ऊपर कि सभी देवताओं की वे प्रार्थना कर रही हैं।

तो पहले शिव पार्वती जी की, फिर गणेश जी की। गणेश जी को तो वैसे भी दुख भंजन कहा जाता है, सिद्धिदायक कहा जाता है, संकट नाशक कहा जाता है, दुख हर्ता कहा जाता है। इसलिए पार्वती जी की प्रार्थना के बाद, शिव जी की प्रार्थना के बाद, गणेश जी की प्रार्थना करते हुए सीता जी कहती हैं कि हे गणेश जी, मैंने जो आपकी सदा सेवा की, आपकी पूजा की, वो आज ही के लिए कि जब मैं कष्ट में पड़ूंगी तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरा कष्ट दूर करेंगे। बस मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ कि ये जो धनुष है, इसकी गुरुता को, इसके भारीपन को आप दूर कर दीजिए। ये धनुष बहुत ही हल्का हो जाए, बिल्कुल फूल की तरह हो जाए, ताकि श्री राम स्पर्श करते ही इस धनुष को उठा लें और मेरा विवाह उनसे हो जाए। मन ही मन मैंने उन्हीं को अपना पति माना है, इसलिए मेरी प्रार्थना, मेरी मनोकामना आप पूरी कीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर में रोमांच छाया हुआ है। राम जी को बार बार सीता जी दूर से ही निहार रही हैं और उन्हें देख करके उन्हें केवल एक ही भावना उनके मन में आती है कि कैसे राम जी ये धनुष उठा लें। तो उनको देख रही हैं और धैर्य धारण कर रही हैं। मन में तो धैर्य नहीं आ रहा है, मन तो बड़ा विचलित है, मन तो बहुत उद्विग्न है, मन तो व्याकुल है, लेकिन फिर भी धैर्य धारण कर रही हैं, क्योंकि कहा गया है कि जब संकट का समय हो तो मनुष्य को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, संकट में ही धैर्य की परीक्षा होती है। इसलिए सीता जी अपने धैर्य को नहीं छोड़ती हैं, धैर्य धारण करके सभी देवताओं से एक ही प्रार्थना कर रही हैं कि किसी तरह से इस धनुष के भारीपन को आप दूर कर दीजिए। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। क्यों प्रेम के आंसू भरे हैं? क्योंकि वो राम जी को अपने हृदय में बिठा चुकी हैं और आंसू इसलिए भरे हैं, उन्हें लगता है कि हो सकता है राम जी ये धनुष नहीं उठा पाए। जो काम इतने बड़े बड़े, इतने पराक्रमी राजा नहीं कर पाए, भला इतने कोमल और इतनी कम अल्पायु वाले राम कैसे कर पाएंगे। ये सब सोच करके उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और शरीर रोमांचित हो रहा है, यानी पूरा शरीर एक तरह से उनका चिंता के कारण, इस व्यथा के कारण, इस संशय के कारण, इस संदेह के कारण मानो रोमांचित हो रहा है। और वे बार बार केवल देवताओं से ही प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि कष्ट में केवल भगवान की ही याद आती है, देवताओं की ही याद आती है। जब मनुष्य के वश में कुछ भी नहीं रहता, जब मनुष्य चारों ओर से निराश हो जाता है, तो बस उसे परमात्मा की याद आती है और परमात्मा से सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी विफल नहीं होती। इस बात का सीता जी को अखंड विश्वास है और इसीलिए वे बार बार प्रार्थना कर रही हैं। आगे सीता जी के मन में क्या भाव उठ रहे हैं और क्या श्री राम धनुष उठा पाएंगे, कैसे ये पूरा प्रसंग आगे बढ़ेगा, इसे अगले कार्यक्रम में हम देखेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद। नमस्कार।

नमः शिवाय। 10:29 हो रही है श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप भक्ति धारा कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, चाहे वो पंचाक्षर मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, जब तक वो सच्चे मन से जाप ना किया जाए या फिर उनका उच्चारण ना किया जाए, तब उसका फल सही तरीके से नहीं मिलता है ना। और कहते हैं कि मंत्र और जाप का महत्व मन की शांति, एकाग्रता बढ़ाने और जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में अत्यंत विशेष है। नियमित जाप से तनाव दूर होता है, मानसिक स्पष्टता आती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है।

सीताराम बोल, राधे कृष्ण बोल, जो भी कहे अपने इष्ट देव का नाम जपते रहे, बस सच्चे मन से करते रहे। जी हाँ श्रोताओ, मंत्र योग या फिर जप योग के चमत्कार के संबंध में शास्त्रों में तो ढेर सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में तो उल्लेख है कि विशेष प्रकार के मंत्रों से विशेष तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी शक्ति होती है। मंत्रों के प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अल्फा वैश्व कहते हैं। मंत्र का यह शब्द 8 से 13 साइकिल प्रति सेकंड में होता है और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं और मंत्रों के जब कहने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग वाली शक्ति उत्पन्न होती है उसे जप योग या फिर मंत्र योग कहते हैं।

बस जन्म जन्म का ये जो रिश्ता है आपके हम में और अपने इष्ट देव से, वो हमेशा बस भरोसे का रहे। 10:55 छोड़े श्रोताओं, आज का यह भक्ति धारा कार्यक्रम समाप्त हो चला। अब नीतुषा को आज्ञा दीजिए, प्रणाम, शुभ दिन।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। वैध फिशरमैन का अधिधारक मछुआरे नाव का नया इंजन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक के लोन हेतु अपने इलाके के मत्स्य विभाग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। घरेलू छत सुलह योजना की शुरुआत के बाद सीबी ने जनता को सतर्क किया है कि इंटरनेट पर चल रहे कुछ पूर्व पंजीकरण और विज्ञापन भ्रामक हैं। सीबी ये मांग करता है कि किसी भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें। कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए केवल सीबी कार्यालय जाएं। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ढालकर और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करके छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना है। और विदेश में दमकल कर्मी फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगलों की आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें बोर्डो के दक्षिण से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक आग भी शामिल है। मौसम और अधिक गर्म होने की उम्मीद है। मंगलवार को तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों आज एक आपातकालीन बैठक करेंगे, जबकि स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज वैलेंसिया के आग से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। अरारो दे रिशमा में कम्युनिटी सेंटर के पास 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रज्जो महादू पैदाइशी नाम रामुद्दीन और जो जामुंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे दीपक महादेव के घर रारोद रिश्मा से उठाकर मिजिन कॉन्डमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: शम्मे फरोजा।
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا، وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو مارشز کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، ہم بیان نعت و سلام۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सौद, कसम है कुरान की जो नसीहत से पुर है कि तुम हक पर हो, मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में पड़े हैं। हमने उनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया तो वो अजाब के वक्त लगे फरियाद करने, और वो छुटकारे का वक्त नहीं था।

और उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक खबरदार करने वाला आया और काफिर कहने लगे कि यह तो जादूगर है झूठा, क्या इसने इतने माबूदों की जगह एक ही माबूद करार दे दिया, यह तो बड़ी अजीब बात है।

और उनमें जो मुअज्जज़ थे वो चल खड़े हुए और बोले कि चलो और अपने माबूदों की पूजा पर कायम रहो, बेशक ये ऐसी बात है जिसमें कोई खास गरज है। ये बात किसी दूसरे मजहब में हमने कभी सुनी ही नहीं, ये तो बिल्कुल घड़ी हुई बात है। क्या हम सब में से इसी पर नसीहत की किताब उतरी है? असल बात यह है कि ये लोग मेरी नसीहत की तरफ से शक में हैं, बल्कि इन्होंने अभी मेरे अजाब का मजा नहीं चखा।

क्या इनके पास तुम्हारे परवरदिगार की रहमत के खजाने हैं जो गालिब है सब कुछ अता करने वाला है, या आसमानों और जमीन और जो कुछ इनमें है इन सब पर इन्हीं की हुकूमत है, तो चाहिए कि रस्सियां तान कर आसमानों पर चढ़ जाएं।

यहां शिकस्त खाए हुए गिरोहों में से यह भी एक लश्कर है। इनसे पहले नूह की कौम और आद और मेखों वाला फिरौन भी झुटला चुके हैं, और समूद और लूत की कौम और बन के रहने वाले भी। यही वो शिकस्त खुर्दा गिरोह हैं। इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर आ वाक़े हुआ।

और ये लोग तो सिर्फ एक जोर की आवाज का, जिसमें शुरू होने के बाद कुछ वक्फा नहीं होगा, इंतजार करते हैं और कहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमको हमारा हिस्सा जल्दी से हिसाब के दिन से पहले ही दे दे।

0: तो।
1: और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, क्या तुम्हारे पास उन झगड़ने वालों की भी खबर आई है जब वो दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए? जिस वक्त वो दाऊद के पास आए तो वो उनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ से फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए।

बात यह है कि ये मेरा भाई है, इसके हां 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर हावी हो रहा है।

उन्होंने कहा कि ये जो तेरी दुम्बी मांगता है कि अपनी दुम्बियों में मिला ले, बेशक तुझ पर जुल्म करता है और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही किया करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमले नेक करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद ने ख्याल किया कि इस वाक़े से हमने उनको आजमाया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़रत मांगी और झुक कर सजदे में गिर पड़े और अल्लाह की तरफ रुजू किया, तो हमने उनको बख्श दिया, और बेशक उनके लिए हमारे यहां क़ुर्ब और उम्दा मकाम है।

0: और हमने आसमान और जमीन को और जो कायनात इनमें है उसको बेमकसद नहीं पैदा किया। ये उनका गुमान है जो काफिर हैं, सो काफिरों के लिए दोजख का अजाब है। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, क्या उनको हम उनकी तरह कर देंगे जो मुल्क में फसाद करते हैं, या परहेजगारों को बदकारों की तरह कर देंगे?
1: किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुल

ये किताब जो हमने तुम पर नाजिल की है बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें और ताकि अहले अक्ल नसीहत हासिल करें।

और हमने दाऊद को सुलेमान अता किए, बहुत खूब बंदे थे और वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। जब उनके सामने शाम को असील घोड़े पेश किए गए तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद से गाफिल होकर माल की मोहब्बत इख्तियार की, यहां तक कि आफताब पर्दे में छुप गया। बोले कि इनको मेरे पास वापस लाओ। फिर उनकी टांगों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगे और हमने सुलेमान की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक धड़ सा डाल दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझे मुआफ फरमा और मुझको ऐसी बादशाही अता फरमा कि मेरे बाद किसी को शाया ना हो, बेशक तू सब कुछ अता फरमाने वाला है।

0: फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक उनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा ठिकाना है।
1: सदकल्लाहुल अजीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। हमेशा अपने रब पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह ताला हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। और अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का हमने सोचा भी न।

0: जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने ये मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द किया, तो यकीन मानिए फर्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज जाती है। वो आह सीधा सातवें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी भी रायगा नहीं जाती। और जब मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बच नहीं पाता। वो रहमान और रहीम तो है, मगर क्या तुमने नहीं सुना वो ज़ुलजलाल भी है। इसी के साथ मोहतरम सामीन, हर पीर की तरह अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है कामयाबी का मेयार। आइए समात फरमाएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलात व सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैया वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम वल्फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, पारा नंबर 7 सूरतुन इनाम आयत नंबर 53, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकदालिक फतन्ना बादहुम बिबादिन लियकूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और यूं ही हमने इन में बाज़ की दूसरों के ज़रिए आजमाइश की कि ये कहें क्या ये लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान में से अल्लाह ने एहसान किया, क्या अल्लाह शुक्र गुज़ारों को खूब नहीं जानता। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, आज एक बहुत अहम और मुआशरे में आम पाए जाने वाले मसले पर कुरान करीम की रोशनी में गुफ्तगू करनी है। अमूमन हमारे यहाँ ऐसा होता है, मसलन एक बच्चा बहुत ज़हीन और अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, दूसरा बच्चा बहुत गरीब और कुन ज़हन,

यानी के कमज़ोर जहन वाला। लोग ख़याल कर रहे होते हैं कि बच्चा जो ज़हीन है इम्तिहान में वही नंबर लेकर आएगा, यानी वही फ़र्स्ट आएगा, वही ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास होगा। मगर ख़िलाफ़े तवक्को ग़रीब और कुन ज़हन नंबर ले जाता है। दूसरा गरीब बच्चा जो ज़्यादा इतना ज़हीन नहीं होता वो नंबर ले जाता है, वो फ़र्स्ट आ जाता है। एक शख्स बहुत बासलाहियत है, बहुत एबिलिटी है उसके अंदर, क्वालिटी है, अमीर कबीर होता है। हम समझ रहे होते हैं कि ये किस्मत का धनी है, सारी कामयाबियाँ तो इसी के हिस्से में हैं। मगर जल्द ही कोई गरीब मेहनत करता हुआ उससे आगे निकल जाता है। अमूमन हमारे ख़ानदानी माहौल में भी एक हर एक ये समझ रहा होता है कि कामयाबी तो मेरा मुकद्दर है, जैसा मैं हूँ ऐसा कोई नहीं है, जैसी मेरी औलाद है ऐसी किसी की औलाद नहीं है, तरक्की मैं ही करूँगा, मेरी औलाद ही करेगी। हम इसी ज़ुम यानी गुमान में होते हैं कि छोटा भाई, खाला ज़ाद, चचा ज़ाद, फैमिली में से कोई दूसरा फ़र्द आगे बढ़ जाता है। ऑफिसेस में भी ऐसे ही माहौल देखने को मिलता है कि एक से एक सीनियर लोग ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह में मौजूद होते हैं। तवक्को की जा रही होती है कि फलां जल्द ही फैक्ट्री का चेयरमैन बन जाएगा, फलां जल्द ही ऑफिस का HOD बन जाएगा। मगर वो जो बहुत बाद में आया होता है वो सब को पीछे छोड़ता हुआ खिलाफ तवक्को आगे बढ़ जाता है। गर्ज ये कुदरत के इंतखाबात होते हैं। ऐसी मिसालों के वक्त हमारे अमूमी रवैये जो मुआशरे में देखने को मिलते हैं, लोग उस कामयाब शख्स से हसद करने लग जाते हैं, अपनी कमज़ोरियों को देखने इनसे कुछ सीखने के बजाय किस्मत को कोसने लगते हैं। फुला मेरी तरक्की से जलता है इसलिए मुझ पर जादू करवा दिया गया है, फुला बड़े ओहदेदार ने रिश्वत खाकर ना अहल को आगे बढ़ा दिया, देखा वो खाने शाने खिलाता था इसीलिए इसे तरक्की दे दी गई, यहाँ कौन देखता है कि कौन काबिल है, यहाँ तो अकरबा पैरवी चलती है, यानी जो करीब वाले लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं उन्हीं को तरक्की मिलती है। मियाँ इस किस्म की बातें करके निज़ाम और अफराद के मुतालिक बदगुमानियाँ शुरू हो जाती हैं, या फिर और कुछ नहीं मिलता तो सारा कसूर बिल्ली पर डाल दिया जाता है। काली बिल्ली रोज़ हमारे घर आकर रोती थी, इसी वजह से यूं हुआ, माज़ल्ला सफ़र का महीना मनहूस है, जो इस महीने में इस वक्त हम मौजूद हैं इसकी नहूसत मुझ पर पड़ी है। बाज़ नादान जौजा यानी अपनी वाइफ को, बीवी को कोसते हैं कि तुम ही मनहूस हो, जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी नाकामियाँ शुरू हो गई हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी रवैये हमारे मुआशरे में देखने सुनने को मिलते हैं। हमारी कामयाबियों और नाकामियों की क्या असल मयार यही है? क्या वाकई किसी की नहूसत हम पर पड़ जाती है या मसला कुछ और है? क्या सिर्फ़ ये जादू टोने का असर होता है या हमारे अंदर कोई कमी है? देखिए मैं एक जनरल बात करूँगा, मुमकिन है किसी केस में रिश्वत अपना मनफी असर दिखा गई हो, मुमकिन है किसी जगह किसी के साथ बड़े अहदेदार ने ज़्यादती की हो यानी नाइंसाफ़ी की हो, लेकिन उसूल इसमें क्या है? हमें अपनी नाकामी को किस किस जाविये से देखना परखना चाहिए और दूसरों की कामयाबी को किस नज़र से देखना चाहिए? आइए क़ुरान करीम की आयात के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वकदालिका फतन्ना बादहुम बिबाद, क्या और यूं ही हमने इनमें बाज की दूसरों के ज़रिए आजमाइश की। यानी दुनिया में ऐसा होता है कि एक के ज़रिए से बाकियों को आजमाइश में डाला जाता है, बाद में आने वाला आगे निकल गया, बाकी आजमाइश में आ गए कि ये कैसे हो गया, फैमिली में जो सबसे गरीब था वो अमीर हो गया, सारा ख़ानदान देखता रह गया ये कैसे हो गया, ये छोटा था वो बड़ा कारनामा कर गया, बड़े बड़े तजर्बा कार मुँह देखते रह गए। तो ये एक के ज़रिए से बाकियों की आजमाइश है। कैसे? फरमाया, लियकूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि ये कहें
क्या ये लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान में से

अल्लाह ने एहसान किया, होता है आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब वो एक या चंद कामयाबी पाते हैं तो बाकी हसद के सबब या बदगुमानियां करते हुए या हिकारत की निगाह से देखते हुए कहते हैं, अच्छा ये है वो जो इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गया, ओ ये तरक्की कर गया, ये तो बहुत कंगला था, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, वगैरह वगैरह, ये आगे कैसे निकल गया। ऐसी बात करने वालों के जवाब में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो बड़ी काम की बड़े पते की बात है, फरमाया अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह अज़्ज़ वजल शुक्र गुजारों को खूब नहीं जानता। सुभान अल्लाह, यानी क्या अल्लाह पाक शुक्र गुजारों को नहीं जानता? ज़रूर जानता है। गरीब आगे बढ़ गया, ये अल्लाह पाक का इंतखाब था। नया आने वाला जल्द तरक्की कर गया, साला साल के तजर्बेकार पीछे रह गए, ये अल्लाह पाक का इंतखाब था। ख़ानदान में एक तरक्की कर गया, बाकी पीछे रह गए, ये अल्लाह पाक का इंतखाब था। ये इंतखाब भी बग़ैर कायदे कानून के नहीं हुआ, इसका उसूल शुक्र गुजारी। जो शुक्र गुजार था वो आगे बढ़ गया, जो ना शुक्रा था वो पीछे रह गया। जो ख़ुद को अल्लाह पाक का आजीज़ बंदा समझ रहा था वो आगे बढ़ गया, और जो अपनी ज़िहानत और सलाहियत पर भरोसा किए बैठे था वो पीछे रह गया। जो अपनी महारतों पर गुरूर में मुब्तला हुआ वो पीछे रह गया। जिसने दिल लगाकर मेहनत की, आजजी व इंकिसारी के साथ दुआएं करता रहा, वो आगे बढ़ गया। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाई और सामईन किराम, पता चला फ़र्क कामयाबियों के मयार में है। हमने कामयाबियों के मयार कुछ और मुकर्रर किए हैं, और अल्लाह पाक के यहाँ कुछ और मयार है। हमारे मयारात हम समझते हैं, जो ज़्यादा पैसे वाला है कामयाबी इसका मुकद्दर है, जो ज़्यादा बासलाहियत है कामयाबी इसे मिलती है, जो मज़बूत फैमिली बैकग्राउंड रखता है वो ऊंची उड़ान उड़ता है, जिसके पास ताकत है तूती उसी का बोलता है, जो ज़हीन है इम्तिहान में कामयाबी इसी का मुकद्दर होती है। क़ुरान कहता है नहीं, ये सिर्फ बज़ाहिर नज़र आने वाला वाली दर्जा बंदी है। असल कामयाब कौन है, कामयाबी का राज जो पोशीदा है वो ये है कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह शुक्र गुज़ारों को खूब नहीं जानता। कितनी वाज़े बात है, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह पाक बासलाहियत को नहीं जानता, क्या अल्लाह पाक ज़हीन को नहीं जानता, क्या अल्लाह पाक शोहरत और ताकत रखने वाले को नहीं जानता, ऐसी कोई बात नहीं की गई। बल्कि क्या फरमाया, क्या अल्लाह पाक शुक्र गुज़ारों को नहीं जानता। पता चला कामयाबी सलाहियत का नतीजा नहीं, ना ज़हानत का नतीजा है, ना ही ताकत व कुव्वत मज़बूत फैमिली बैकग्राउंड का नतीजा, बल्कि कामयाबी शुक्र का नतीजा है। यह आयत करीमा असल में मक्के मुकर्रमा के गैर कौम से मुतालिक नाजिल हुई। हज़रत बिलाल हबशी, जिन्हें सैयदुल मुअज़्ज़िनीन अज़ान देने वालों के सरदार का लक़ब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, यूं ही हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत खब्बाब, हज़रत अम्मार वगैरह, वो सहाबा किराम जो पहले ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार चुके थे, मुशरिकीन मक्का ने इनको देख कर कहा अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, क्या ये लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान में से अल्लाह ने एहसान किया, क्या ये हैं, इनको अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए चुना, इनको जन्नत का हकदार बनाया, इनको हिदायतों का मीनार बनाया, इनको बदर व हुनैन में कामयाबी मियाँ मिलेंगी, इनको बदर व हुनैन में कामयाबियाँ मिलेंगी, ये क़्यामत तक आने वालों के सरदार बनेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया अलैसल्लाहु बिअअलम बिश्शाकिरीन, क्या अल्लाह शुक्र गुज़ारों को खूब नहीं जानता। ए मक्के वालो, ए मुशरिकीन, तुम्हारे पास माल भी हो।

होगा। तुम्हारे पास सरदारियां भी होंगी, तुम्हारे पास तिजारतों के तजर्बात भी होंगे, तुमने दुनिया भी देखी होगी, तुम्हारे पास अफरादी कुव्वत भी होगी, मगर एक ऐसी चीज़ है जो इन सहाबा के पास है, तुम्हारे पास नहीं, और वही असल में कामयाबी का मियार है, और वो है शुक्रगुजारी। ए मक्का के गैर मुस्लिमों, कामयाबी नहीं दिलाता तजर्बात, कामयाबी नहीं दिलाते माल, कामयाबी नहीं दिलाती सरदारियां, कामयाबियों का हकदार नहीं बनती। कामयाबी का मियार शुक्र है। तुम ना शुक्रे हुए और ये सहाबा किराम अली मुरिदवान शुक्रगुजार हैं। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम, पता चला कामयाबी का मियार शुक्र है, लिहाजा हमें शुक्र अपनाना चाहिए। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमानु निस्फान, निस्फुल लिशुक्री व निस्फुल लिसब्र। ईमान के दो हिस्से हैं, नंबर एक आधा ईमान शुक्र है, आधा ईमान सब्र में है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वसयजिल्लाहुश्शाकिरीन। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान और अनकरीब, अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सिला अता फरमाएगा। कुरान करीम की रोशनी में जजा सिर्फ आखिरत में मिलने वाले सवाब को नहीं कहते, बल्कि दुनिया में आमाल का जो फल मिलता है वो भी जजा है, और आखिरत में जो फल नसीब होगा वो भी जजा है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि हम अनकरीब जजा अता फरमाएंगे। कैसे? फरमाए शुक्र गुज़ारों को। कामयाबी शुक्र के साथ बंधी हुई है। बा बे मदीनतुल इल्मी, यानी शहर इल्म के दरवाज़े, मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हों फरमाते हैं, बेशक शुक्र नेमत शुक्र के साथ बंधी हुई है, और शुक्र बढ़ोती के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आदमी शुक्र नहीं छोड़ता, तब तक अल्लाह पाक की जानिब से नेमतों में इजाफा ख़त्म नहीं किया जाता। आप बताइए, कामयाबी भी नेमत है कि नहीं है? हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल कर लिया, कामयाबी है और नेमत भी है। आलिम कोर्स कर लिया, कामयाबी भी है नेमत भी है, यानी उसको जहानत भी अल्लाह ताला अदा करेगा कि वो हाफिज़ बन जाए, वो आलिम बन जाए। रिस्के हलाल में वसअत मिल गई, यानी बड़ा आदमी मिल गया, पैसे वाला मिल गया, हो गया, तो कामयाबी भी मिल गई, नेमत भी मिल गई। अच्छा घर, अच्छा रोज़गार, अच्छी सवारी, ये सब कुछ नेमतें भी हैं, और हमारे यहाँ कामयाबी में शुमार भी की जाती हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, नेमत यानी हर तरह की कामयाबी शुक्र के साथ बंधी हुई है। शुक्र होता है तो कामयाबी आती है, मज़ीद शुक्र होता है तो मज़ीद कामयाबी मिलती है। जब शुक्र ख़त्म हो जाता है, कामयाबी भी ख़त्म हो जाती है। उलमाए कराम फरमाते हैं, अल्लाह पाक जिसे चाहता है नेमत अता फरमाता है, लेकिन अगर इस नेमत का शुक्र अदा ना किया जाए तो इसी नेमत को अजाब बना दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, कितनी इबरत की बात है। कामयाबी अव्वल तो मिलती है शुक्र के ज़रिए, और अगर मिल जाए मगर इसके अंदर शुक्र ना हो तो वो कामयाबी कामयाबी नहीं रहती, बल्कि अजाब बन जाती है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है, वमा वलमून वलकिन कानू अन्फुसहुम यज़लिमून। तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और उन्होंने हमारा कुछ ना बिगाड़ा बल्कि अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। यानी जब बनी इसराइल, जिन्हें बड़ी बड़ी कामयाबियों से नवाजा, तौरे शरीफ उनके लिए उतारी गई, फिरौन पर गलबा उन्हें बख्शा गया, मिस्र की हुकूमत इन्हें अता की गई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का शर्फ इन्हें बख्शा गया, मन्ना व सलवा उनके लिए उतारा, और कैसी कैसी कामयाबियाँ और नेमतें उन्हें अता की गईं, मगर उन्होंने नाशुक्री की, शुक्र अदा नहीं किया, तो उनकी नेमतों को अजाब में बदल कर जिल्लत से दोचार कर दिया गया। पता चला शुक्र कामयाबी को दवाम यानी हमेश की देता है, और नाशुक्री इसी कामयाबी को जिल्लत व रुसवाई बना देती है। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और सामईन किराम,

आपने सुना, शुक्रगुजारी यानी कनात शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी क्या है? अल्लाह तबारक व ताला की जो नियामतें आपको मिली हैं आप उनका शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा खाया या नहीं खाया शुक्र अदा करें।

0: करते रह जाते हैं। मसलन माल और दौलत होगी तो मैं गरीब की मदद करूंगा। भाई जान, अगर आपके पास माल नहीं है तो गरीबों की बगैर माल के मदद कर लीजिए। अंधे को सड़क पार करवा देना, माजूर की मदद कर देना, भूले हुए को रास्ता बता देना, कुछ ना सही गरीब को थपकी देकर दिलासा दे देना भी तो इसकी मदद है, ये कर लीजिए। कई हजरात सोच रहे होते हैं करोड़ पैसा जमा हो जाएगा, करूं जब मस्जिद बनाऊंगा। भाई जान, जब करोड़ों रुपए आ जाएं तब मस्जिद बना लीजिएगा। अभी कम से कम 100 रुपया मस्जिद की खिदमत करके सवाब कमा लीजिए। ये जुमला भी आपने कई लोगों से सुना होगा, काश मेरे पास फुला ओहदा होता तो मैं यूं करता यूं करता यूं करता। मेरे प्यारे भाई, जब वो ओहदा आएगा तब आएगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी आप महल्लेदार को तो महल्लेदार तो हैं, महल्ले में निकी की दावत शुरू कर लीजिए। एक बेटा तो है ना, अच्छा बेटा बन जाए। एक फैमिली के मेंबर तो हैं, अच्छे और ज़िम्मेदार फैमिली मेंबर बन जाइए। हमारे यहाँ कई नौजवान बेरोज़गार रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मुझे डायरेक्ट 17वें ग्रेड की नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। छोटी मोटी नौकरी मुझसे नहीं होती। ऐसों से गुजारिश है कि जो छोटी मोटी नौकरी मिल रही है ये तो शुरू कीजिए। आपको जो मिल रहा है इस पर राज़ी रहकर अल्लाह पाक का शुक्र कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमा देगा। गर्ज़ हम क्यों सोचते हैं कि ये मिलेगा तो मैं वो करूँगा। जो नेमत, जो सलाहियत, जितनी वसात और जितनी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई है इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए तरक्की और कामयाबी के दरवाज़े खोल देगा। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए एक हदीस समात फरमाइए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस बदबूदार दरख्त प्याज़ या लहसुन से खाए वो हमारी मस्जिद में ना आए, क्योंकि जिस चीज़ से आदमियों को तकलीफ़ होती है उससे फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। बहवाला सही बुखारी मुस्लिम शरीफ।
2: अपने

थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार हर गमज़दा के गम को दूर फरमा दे, हर बेचैन दिल को उस सुकून दे दे, हर परेशान हाल की परेशानियों को दूर कर दे, हर बीमार को हर मरीज़ को सेहत अता फरमा, हर मजबूर की इमदाद रसी फरमा। बेशक आपके सिवा कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। ऐ परवरदिगार हमारी इन दुआओं को हाजतों को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: दिन के 12 बजे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनिए एक विज्ञप्ति। तो सीईबी अपने सभी ग्राहकों को सूचित करता है, खासतौर जो लोग तामागैं, मोसलमा कॉलोस और एवेन्यू जागा कोंदास के आस पड़ोस में रहते हैं, कि कल मंगलवार 28 जुलाई

0: कि सुबह 8:30 बजे से लेकर सपहर 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जो ही मरम्मत कार्य पूरे होंगे बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सामान्य पर ला दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: स्वर तरंग

27 தேதி இன்றைக்கு நம் மாதத்தின் ஆதி மாதத்தின் 11 நாள்.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समय थयो छे बपोरना पौणावे।
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

घड़ी मिला लीजिए, इस समय दिन के ठीक 2:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वाट 119 किलोहर्ट्ज पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। अभी से लेकर शाम के 4 बजे तक हम जुड़े हैं आपका साथ देने के लिए। जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना, हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। और बेशक आपकी पसंद का कार्यक्रम, जो आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम है, जहां पर आप ही के पसंदीदा गीतों को हम चलाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। बस करना यही है कि आपके पसंदीदा गीत की फरमाइश आपको हम तक पहुंचानी है ऑन 4028085 पर, या फिर आप मैसेज भी हमें कर सकते हैं ऑन 5251705। जी हाँ, 5251705 पर आप अपने मैसेजेस को भेजिए। और फोन कॉल्स के लिए नंबर है 4028085। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की बेहतरीन से बेहतरीन शुरुआत करने के लिए 90s के जमाने का ये प्यारा सा गीत हम लेकर आए हैं। अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज में करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी शुरुआत।

0: की पसंद।
1: भाई जब मोहब्बत होनी है तो हो ही जाती है, वो एक प्यारे से दिल को ढूंढ ही लेता है। और चलिए इसी के तरह इसी सफर में हमने भी आपका गाना ढूंढ लिया है और बहुत ही प्यार से हम चलाने जा रहे हैं ये अगला गीत। और ये है आया सावन झूम के फिल्म से लिया हुआ गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। आज की ये पहली फरमाइश आई है रफ़िक दौलत साहब की और उनकी बेगम है नूर जहां, जिनके लिए वे हमेशा प्यार से गाना मांगते हैं। तो आइए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत जो फिल्माया गया था धर्मेंद्र साहब पर, इस गीत को साथ मिलकर सुनते हैं।

आपकी पसंद कार्यक्रम चली। यहाँ पर 2:43 हो चुके हैं। अगली पसंद जो आई है ये है फिल्म विश्वास से लिया हुआ गीत, और फिल्म विश्वास का ये गाना अनीता जी के पसंद पर हम चलाने जा रहे हैं, जो त्रियोले से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बेटी है अंजू, साथ दामाद वेद, बेटा सचिन, बहू है पूजा और उनके नाती है केयांश और नातिन है सिया। तो चलिए विश्वास फिल्म का ये गाना उनके सभी परिवार के नाम करते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत, चांदी की दीवार न तोड़ी।

मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी सी आवाज, और ये था गीत फिल्म विश्वास से लिया हुआ। चलिए इसी की तरह एक और ऐसा प्यारा सा गाना फिल्म आक्रमण का गीत और किशोर कुमार लता जी की प्यारी सी आवाज में गूंजने जा रहा है ये अगला तराना। और ये गाना है विश्वानी दुमन जी की पसंद पर, जो इस वक्त वाकवा से हमारे साथ जुड़ी है। बहने इंदिरा और शारदा, सहेलियां है नीला और प्रतिभा, और साथ दे रही है शोभा जी और गीता गजादर। और यही गाना हम करेंगे सुनीता जी के लिए, जो इस वक्त घोंघोप से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनकी प्यारी बहन है कुंगुमा से विमला जी, अमृता जी जो इस वक्त घोंघोप से ही जुड़ी हुई हैं, और गुडलैंड से हैं वीना जी।

गाने जब ऐसे हों तो दिल खो ही जाता है। चलिए, कई बार कहते हैं ना, गानों का सहारा होता है तो अकेलापन भी दूर हो जाता है, और ऐसे में ये प्यारा सा अगला गाना जो है फिल्म बात एक रात की, फिल्म से लिया हुआ ये गीत हम चलाने जा रहे हैं। और वैसे ये गाना हमें जोड़ेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ। आहा, बहुत ही प्यारा सा गाना है, और उदय जी रिवेजी पोस्ट से इस वक्त हमें सुन रहे हैं, पुराने गीतों के शौकीन। और चलिए, उनकी धर्मपत्नी है संगीता जी, साथ है बेटी स्वीटी, बहुत शेरी से समधी जी साथ दे रहे हैं, समधी जी सुनील, समधन जी है ज्योति, बेटी कीर्ति, दामाद जी है नागेश, और

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बदलती दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इस सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज रेजवी स्थित ओक्टावियो स्टूडियो ऑडिटोरियम में किया गया। और मॉरिशस में हर 5 में से केवल 1 माँ ही अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाती है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिश से काफ़ी कम है। काम पर लौटने जैसी वजहों से कई माताओं को स्तनपान जारी रखने में कठिनाई होती है, फिर भी कई माताएं अपने बच्चों को माँ के दूध का लाभ देने के लिए प्रयास करती रहती है। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और एशिया के पूर्वी क्षेत्र में क्वीन विक्टोरिया में एक नया स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं और करीब पहुंचाना है। इससे खासतौर पर बुजुर्गों को फ़ायदा होगा, जिन्हें अब सामान्य इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में मॉरिशस मुक्केबाजों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। ज़िगी अगात क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, वहीं मारिन गैब्रियल ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। हालांकि फैब्रिस वैलेरी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। और विदेश में क्या मध्यपूर्व में बढ़ता तनाव अब कम होने की ओर बढ़ रहा है। लगातार 2 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोक रखे हैं, जबकि ईरान ने भी फिलहाल अपने जवाबी हमले रोकने की बात कही है। इस बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर

0: बातचीत जारी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, थोड़ी देर में एक शोक समाचार। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरांस ट्रेबुशे में, लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरांस ट्रेबुशे में 90 साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्रीहरि प्रसाद चमन, श्रीहरि प्रसाद चमन जो प्रसाद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो उनकी अर्थी वैसे कल दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरांस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस।
2: इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:04 होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं ये विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई। सुगिनाम गांव के आसपास के इलाके जिनमें हैं गियों बैल सुगिनाम, मौसलमौ तानाकुदी, मौसलमौ लेमून और NHDC गियों बैल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 29 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
3: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से हम फिर से स्वागत करते हैं। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 3:04 और बेशक 4 बजे तक हमारा ये पसंदीदा कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए। मैं हूँ रत्ना, एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ। तो चलिए इस सफर को और भी सुंदर खूबसूरत गीतों के साथ सजाते हैं जो आप ही के पसंदीदा लिस्ट में से एक आध है। और चलिए इस अगले गीत को लेते हैं। और ये जो गाना है रेहाना जी जो इस वक्त हमारे साथ नौतकदाम से जुड़ी हुई हैं और उनकी प्यारी सखियाँ माला फाउदा, साथ है सुरेखा और उनके सभी दोस्तों में सबसे ख़ास नाम आता है माला जी और सुरेखा जी का, जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करती हैं। और हलाकू का ये गाना वे उनके नाम करना चाहती है। तो चलिए इस प्यारे से गीत को सुनते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ दिया है लता जी ने।

इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई हो नहीं सकता। और यहाँ पर पुपू श्यामा आशीर्वाद देती है युधीश को, जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया कल। श्यामा रघुनंदन जी जो कॉन्गोप से जुड़ी हुई हैं, और युधीश की मम्मी नम्रता, पापा जयप्रकाश, चाचा है रामराज, राम प्रकाश, साथ है कजिन्स अनीता, रेशमा, सिमरन सिंह, सुरैया शर्मा, फूफू है वैजयंती, फूफा है जसवंत सिंह। बहुत बहुत प्यार युधीश को। और साथ ही साथ जन्मदिन मना रही हैं याना, आज उनका जन्मदिन है। और साथ ही साथ अनसुईया राम के अलावा उनकी प्यारी दादी और पापा नीतीश की ओर से याना को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और नानी प्रेमिला सी गुलाम, दादी प्रेमिला सी गुलाम और दादी रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार फ्लक्स से, ढेर सारा प्यार याना को।

आपकी पसंद कार्यक्रम के बीच रखा हुआ ये अगला गाना और ये जो गीत है बहुत ही लाजवाब सा गीत, और ये गाना हम करेंगे विष्णुदेव जी के लिए। विष्णुदेव जी इस वक्त घोंबे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मन्ना डे साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना 1954 के दौर का गीत है और उन्होंने ये गीत अपने सभी बसार परिवार के नाम मांगा है। है तो ये एक पागलखाने में गाया हुआ गीत, डेविड साहब पर फिल्माया हुआ ये गीत। शास्त्रीय संगीत पर बहुत ही लाजवाब मन्ना डे साहब की आवाज में।

0: लपक झपक तू वार बदर मा बरस बरस तू कार बदर मा लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू
1: आ दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना।

0: आपकी पसंद।
1: चलिए 3:18 हो चुके हैं, जहां मन्ना डे साहब की इतनी लचक भरी आवाज को आपने सुना, फिल्म बूट पॉलिश का ये गीत था, और एक और गाना हम चुनकर लाए हैं शारदा फिल्म से लिया हुआ ये गीत। और ये गाना वैसे शीला जी जो देपीने से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इस गीत की मांग की है। तो शीला जी, यहाँ पर मन्ना डे साहब की आवाज़, फिल्म है शारदा।

ये तलाश है ख्याल, एक वहम का है जाल। ये तलाश है।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद का अगला फरमाइशी गीत है गायत्री जी जो है पिछे व्याजे से पसंद करती हैं इस गीत को। बरखा फिल्म का गीत मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज़, बहन अमृता और भाभी मीरा के लिए, और अमृता जी की तीन बेटियां नेहा, क्षिति, दिव्या, बेटा है सुधीर, कमलेश और बहू सुधा, साथ है मीरा जी की दो बेटियाँ गिरिशा और मेधा के नाम और सभी सुनने वालों के नाम। चलिए इसी गीत के साथ हम नाम जोड़ना चाहेंगे ज्योति जी जो यूनियन पार्क से जुड़ी हुई हैं, प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा के लिए, और शातो बेनागस की ज्योति जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सुरेखा, रेखा, आशनी और सभी माधव परिवार के लिए।

सोमवार का दिन है और आज शिव भक्तों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। चलिए यहाँ पर घूंघट फिल्म का ये अगला गीत अनिता जी ने मांगा है। फ्लिक ऑन फ्लाक से वे हमारा साथ दे रही हैं, उनकी प्यारी बहनें शोभा, अनुराधा और लक्ष्मी जी के नाम करते हैं ये अगला गीत फिल्म घूंघट का, और कविता कृष्णमूर्ति की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ 90s के दौर का ये गीत। इस फिल्म में नजर आई थी आयशा जुल्का।

चलिए ओम नमः शिवाय की गूंज सारे विश्व में है। और बिल्कुल आज सोमवार का दिन है, तो सोमवार का दिन बहुत ही पावन होता है शिव भक्तों के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। फ्लोगयाल से वीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और फिल्म पाक दामन का ये अगला गीत उन्होंने मांगा है मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

शादियों के बंधन में बहुत बंध रहे हैं दुल्हन, पर कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी अकेले काट रहे हैं। यहाँ पर गीता जी मोताई लोगों से बहुत ही प्यार से कहती है, गीत सुनकर सच में उनको अपनी शादी याद आ गई और ये प्यारा सा गाना उन्होंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ चलिए अगला गाना है, फिल्म राखी से लिया गया, 1962 के दौर का ये गीत लता जी और मुकेश साहब की आवाज़ में। और ये गाना जाता है अनुषा जी की ओर से उनके प्यारे पति रनीश के लिए, जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं आज के दिन। उनकी बेटी है नितिशा, गिरीशा और बेटा हितांशु। और यही गाना भाई रनीश आपके लिए आपकी पत्नी ने मांगा है। और साथ ही साथ जुड़े हुए हैं आपके प्यारे भैया निवेश और उनकी पत्नी है उर्वशी, पापा आनंद, पुपो मानती, पुपो अनंती, पुपो आरती की ओर से ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आपको। और साथ है भव्य और पुष्प।

वहीं तो मोहब्बत पनपती है। चलिए इसी के साथ फिल्म जानवर का ये अगला गीत जाता है रेहाना के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फिनिक्स से, और इस अगले गीत की वे मांग करती हैं। शम्मी कपूर साहब इस फिल्म में नजर आए थे।

मोहब्बत जमा रहे, प्यार जमा रहे। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अमीना जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं और आज फैजुल्ला अपना जन्मदिन मना रहे हैं। पापा अरशाद, मामा रुखसार, भाई है मिशाद और सभी बिहारी परिवार की ओर से जो भोपाल से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। और अमीना जी कहती हैं कि वे बेहद बेहद पसंद करती हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम, हमेशा सुनती हैं, साथ देती हैं, भाग लेती हैं। ये गाना जाएगा खास फैजुल्ला के लिए जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

0: चलिए, जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, बहुत सारा प्यार अपनों का पाएं और यही आशीर्वाद कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। चलिए इसी के साथ चंपा कली फिल्म का ये अगला गाना हम चलाने जा रहे हैं
1: HMV द्वारा।
0: और ये जो गीत है, बिल्कुल जो भी आवाज़ आपने सुनी, अमीन साहनी की आवाज़ और इस गीत के साथ, बिल्कुल हम यही कहेंगे कि ये जो गाना था 1957 के दौर का गीत रहा, और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में हम ये गाना आपके नाम ज़रूर करना चाहेंगे। और यूनियन पार्क से आप साथ दे रही हैं विद्या जी, आपकी बहन सती, सुरेखा, बबीता और सुनीता के नाम।

दोस्ती फिल्म का ये गीत माधुरी जी ने पसंद किया है और ये गाना हम उनके लिए चला रहे हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं जो इंतजार में हैं कि उनका गाना कब चलेगा। कोशिश हमारी जारी है।

लीलो जी बड़े ही प्यार से जुड़ी हुई है खौ बुआ से और सभी सखियों के नाम करती हैं। ये अगला गीत आस का पंछी फिल्म से लिया हुआ गीत मुकेश साहब की आवाज में 1962 के दौर का ये गाना। चलिए ये गाना है बहुत ही प्यारा और इसके साथ हम नाम जरूर जोड़ना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सुदेवी जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं, बहन ललिता कुशल त्रियोले से, दीदी सुनीता साथ है, शोभा देवीना माला बिंदु संगीता मालेगा से हैं, राम रतन राम गुलाम कुआरू परिवार रघुबर और जालू परिवार और मोचिदा से कविता जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं, आपकी सखियाँ अनिता और सुबिता जी भी साथ जुड़ चुकी हैं। एंजॉय कीजिए ये गाना।

चलिए प्यार की मंजिल सभी को मिले और इस मंजिल का यहाँ तक ही कारवा था। वैसे इस वक्त शकुंतला जी मोतायलोंग से जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी ननंद है, गायत्री जो इस वक्त नंदू अल्फोंस से जुड़ी हुई हैं बेटा अजय और बेटी सुनीता के साथ, और बंधु परिवार भी हमारे साथ जुड़ चुका है थ्रियोले से। गीता जी पोंफिया से जुड़ी हुई हैं, उनके प्यारे पति रोहित, साथ है आदित्य, आरव, तनीश और जानवी। और ये आखिरी गाना फिल्म है प्यार का सागर, मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये गीत शकुंतला जी की पसंद पर हम चलाने जा रहे हैं। और इसी गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर फुल स्टॉप लगाएंगे। आशा करते हैं कि आज के इस सफर को आपने पसंद किया होगा। वैसे हमारी और आपकी मुलाकात ठीक 5:30 बजे फिर से होगी बचपन ऐसा कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, आज का ये सफर, आज की ये शाम बहुत हसीन रहे इन गीतों की तरह। इसी के साथ मिलेंगे अभी थोड़ी ही देर में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। और अभी 4 बजे आप सुन पाएंगे अभी हमारा अगला कार्यक्रम जो होगा क्षितिज, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर अलका दनपत और साथ रहेंगे श्रीमान शंभू जी। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: क्षितिज, क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
2: क्षितिज विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जुलाई का महीना विशेष है और मॉरिशस के लिए तो हम इस महीने को भुला ही नहीं सकते। आप सभी को याद आ रहे होंगे मनीलाल मगनलाल डॉक्टर। वे जब यहाँ पहुँचे तो जीवन ने करवट ले ली और लोगों को अपने अस्तित्व के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति मॉरिशस पहुंचा, या गांधी जी के प्रयासों से यहाँ पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने अपनी परवाह किए बिना यहाँ के गिरमिटिया मजदूरों के जीवन को और

0: अधिक अच्छा बनाने के लिए अपने पूरे प्रयास लगा दिए। और श्रोताओं, आप एक वकील थे और कितनी ही भाषाओं के ज्ञाता थे, शायद इसीलिए गांधी जी ने उनको यहाँ पर भेजा था। आप सोचिए, ऐसे सुपात्र को भेजना जिसने उन गिरमिटिया मजदूरों को, जो अपने अस्तित्व को भूल चुके थे, जो अपनी पहचान के बारे में अभी निश्चित नहीं थे, उनके लिए प्रयत्न किया और उन पर होने वाले अत्याचारों के लिए एक लड़ाई लड़नी शुरू की। मेरे साथ श्री धनराज शंभू जी जुड़े हुए हैं और आप एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं और आप भी उनके बारे में ज़रूर पढ़ते होंगे, जानते होंगे, क्योंकि बिना मगनलाल डॉक्टर, मनीलाल डॉक्टर को पढ़े हम मॉरिशस के इतिहास को जान नहीं सकेंगे। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना शंभू जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, जैसे कि आपको पता है, मैं भी अपनी ओर से सभी श्रोताओं को हार्दिक नमन करता हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर जो साहब थे वे मॉरिशस में आए हुए थे और मॉरिशस की किस्मत उन्होंने चमका दी।
0: बिल्कुल,
1: और
0: चमका क्या दी, नया रास्ता दिखा दिया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा उनका परिचय देना चाहूँगा।
0: जी जी जरूर।
1: उनका जन्म 28 जुलाई 1881, तब उस समय में ब्रिटिश इंडियन के रूप में था, तो उन्होंने वहाँ पर बड़ौदा में गुजरात प्रांत में उनका जन्म हुआ था। और ऐसे बताया जाता है कि उनकी पत्नी का नाम था जय कुमारी देवी
0: जी,
1: और
0: देवी बड़ी प्रबुद्ध थी।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: ही ज्ञानमती बुद्धिमती महिला थी।
1: हाँ, और उनके 3 बेटे थे
0: जी,
1: मधुसुधा, ललित मोहन और इंदुभूषण, और उनकी एक लड़की भी थी जिनका नाम था अवनी देवी। तो इस तरह से उनके 4 बच्चे हुए और पढ़ने में वे बहुत प्रखर थे। और जैसे कि मेरे खोज अनुसार 1903 में उन्होंने LLB, MA 1904 में और BA 1905 में, और 1906 में गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी।
0: बहुत सुंदर। श्रोताओं, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि महात्मा गांधी वांग्मय, जो भारत से प्रकाशित है, उसमें बालकृष्ण गोखले को एक पत्र गांधी जी ने लिखा था। तो यदि हम महात्मा गांधी वांग्मय को पढ़ने का प्रयास करें तो वहाँ उस पत्र की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। गांधी जी लिखते हैं, श्री मणिलाल डॉक्टर ने मॉरिशस में सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया और निर्धन भारतीयों का स्नेह प्राप्त किया और वे उनके लिए आवश्यकता पड़ने पर सच्चे मित्र सिद्ध हुए। आगे वे लिखते हैं, उनकी इच्छा एक प्रस्ताव के लिए काम करने की है जो गिरमिटिया श्रमिक प्रथा की पूर्णतः भर्सना करेगा। मैं पूरी तरह उनसे सहमत हूँ। तो श्रोताओं, आप देख सकते हैं कि वे एक वकील थे और शंभू जी उनके पिताजी तो एक चिकित्सक थे,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए उनके नाम के साथ डॉक्टर शब्द जुड़ा। ये डॉक्टर शब्द असल में उनके पिता के सरनेम था, तो बाद में उनके साथ भी जुड़ गया और सब उन्हें मनीलाल मगनलाल डॉक्टर कहने लगे। लेकिन अपने क्षेत्र में, लॉ के या कानून के क्षेत्र में, मनीलाल जी ने अपना कार्य जो किया वह बहुत ही प्रशंसनीय रहा।
1: बिल्कुल, और विशेष रूप से जब वे मॉरिशस आए तो उनका कार्य एकदम निराला था।
0: जी जी,
1: हम कह सकते हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो मॉरिशस में प्रथम बार के लिए हुआ। जैसे मैं देख रहा हूँ कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वकील के नाम पर, वकील के रूप में शपथ ली थी।
0: और शपथ के समय जो घटना घटी,
1: हाँ,
0: उसको तो हम भुला ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: उनसे कहा गया या जूता उतारो या टोपी,
1: पगड़ी निकालो।
0: तो उन्होंने इसका विरोध किया, उन्होंने पिटीशन डाली।
1: हाँ, हाँ।
0: और उन्होंने इसे नहीं स्वीकारा। ये जैसे पहले एक भारतीय के संघर्ष की निशानी दिखाई देती है।
1: बिल्कुल, और उनको फिर से मानना ही पड़ा और
0: जी,
1: वे वैसे गए।
0: क्योंकि कहते हैं कि वे लोग यही कहते थे कि जब आप टाई पहन कर आते हैं,
1: हाँ,
0: तो पगड़ी भी हमारे लिए सम्मान का चिन्ह है, इसे हम क्यों उतार कर आएंगे।
1: दूसरी बार मैंने देखा कि प्रथम बार के लिए 17 अप्रैल 1910 में उन्होंने मॉरिशस में आकर आर्य समाज की स्थापना की।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की तो हिंदी, विशेष रूप से हिंदी भाषा संस्कृति का प्रचार प्रसार खूब बढ़ने लगा।
0: मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगी शंभू जी,
1: जी,
0: हिंदी भाषा में पहला सार्वजनिक भाषण मॉरिशस में,
1: बिल्कुल,

0: मणिलाल डॉक्टर ने ही दिया था, और उसके बाद से हिंदी का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि सार्वजनिक भाषण अधिकतर हिंदी में ही होने लग गए।
1: ठीक, उसी प्रकार प्रथम बार के लिए यहाँ पर जो दास प्रथा थी या कुली के रूप में जो लोग आए हुए थे उन्होंने इनको अपना लीडर स्वीकार किया था।
0: हाँ।
1: क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति थे, इतने मान लिया जाए कर्मठ और साहस वाले व्यक्ति थे, निर्भीक व्यक्ति थे, कि उन्हें किसी के सामने कुछ बोलने से कोई भय नहीं था।
0: हाँ, और उन्होंने अपनी पढ़ाई लंदन से की थी, और वहाँ पर गांधी जी से वे मिले, क्योंकि गांधी जी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द कॉलोनाइज के साथ एक चर्चा करने के लिए नेटाल के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ गए थे। तो वहाँ पर उनकी भेंट मणिलाल जी से हुई, और यहाँ गांधी जी ने जब उनको देखा कि इतना योग्य बैरिस्टर, वहाँ गांधी जी ने उनसे कहा कि तुमको मॉरिशस जाना ही चाहिए। और उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही भव्य था, 5 फुट 6 इंच उनका लंबा कद था, और एक अलग स्वभाव वाले व्यक्ति थे। लोग कहते हैं कि वे अपनी जो जिद ठान लेते थे उसे पूरा करते
1: पूरा
0: थे।
1: करके रखते थे।
0: कभी कभी लोग कहते थे कि वो कुछ अलग सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अलग सोचने वाला व्यक्ति ही कुछ अलग करता
1: अलग कर
0: है।
1: सकता है।
0: अगर भीड़ की सोच आपकी होगी तो आप फिर अलग क्या खड़ा कर पाएंगे।
1: हम देखते हैं कि प्रथम बार के लिए मॉरिशस में तो कोई अखबार, कोई मानिए पत्रिका नहीं चलती थी, लेकिन उन्होंने 15 मार्च को 1909 में उन्होंने द हिंदुस्तानी नाम का एक पत्रिका पत्र निकाला जो गुजराती और अंग्रेजी भाषा
0: शुरू
1: में
0: था। हाँ। लेकिन बाद में फिर
1: बाद में फिर गुजराती की जगह पर उन्होंने हिंदी में
0: छपने
1: भी
0: लगा
1: और
0: श्रोताओं, कितने खुशी की बात है कि आज जब हम इस बात की खोज करते हैं कि मॉरिशस की पहली कविता जो छपी वो कौन सी है,
1: होली, हाँ।
0: तो उसका श्रेय इसी पत्रिका को जाता
1: हाँ,
0: है, हिंदुस्तानी को, जिसमें कवि गणेश जी की पहली कविता होली, उसी को ही मॉरिशस की पहली कविता माना जाता है। तो मैं तो कहती हूँ मणिलाल जी ने समझो एक ऐतिहासिक तथ्य को इतना प्रमाणित रूप में हमें प्रस्तुत दे दिया कि आज हम उसको पहली कविता मानते हैं इतिहास में।
1: और लिखित साहित्य का जन्मदाता भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रथम बार के लिखित रूप में होली नाम की कविता छपी।
0: जी,
1: इसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे आपने अभी भी बताया कि प्रथम बार के लिए मॉरिशस में आम जुटाव हुआ और उसमें उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, जिसे बहुत लोग प्रभावित हुए और उसे सुनने के लिए वे तत्पर हो गए। इसी तरह मैंने पढ़ा कहीं पर कि उन्होंने उस समय में ज़्यादातर लोग कैथी भाषा का प्रयोग करते थे और उन्होंने उनको हिंदी सिखाने के लिए बैठकाओं में जाने की प्रेरणा दी, और वे बैठका में जाते भी थे और उनको कहते थे कि अब हिंदी भी पढ़ो।
0: और आज तो दुख की बात है कि कैथी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल रहा है। महात्मा गांधी संस्थान के संग्रहालय में कैथी लिपि में कुछ चीजें हैं,
1: हिंदी प्रचारी सभा में भी
0: हाँ,
1: है,
0: लेकिन उसको पढ़ने वाला समझने वाला आज कोई व्यक्ति ही नहीं मिल रहा। बल्कि मॉरिशस के लेखक जो थे मुनीश्वरलाल चिंतामणि, उन्होंने काफी प्रयास भी किया, लेकिन कभी कभी वे कहते थे कि नहीं मिला उनको कोई व्यक्ति।
1: अच्छा, उस समय में एक प्रथा थी कि जो हमारे कुली भाई बहन मान लिया जाए, जो हमारे पूर्वज लोग थे, डबल कट,
0: एक
1: दिन यदि नौकरी पर नहीं जाते थे 2 दिनों के पैसे कट जाते थे। तो इन्होंने कमीशन के सामने अन्य लोगों की सहायता से जाकर मांग की, और उनके मांग अनुसार यह मान लिया बात टल गई और डबल कट की जो प्रक्रिया थी वह समाप्त हो गई।
0: और शंभू जी, कितने आश्चर्य की बात है ना कि अपने जीवन का बहुत ही थोड़ा समय उन्होंने मॉरिशस में बिताया। 1907 में वे मॉरिशस पहुंचे और 1911 तक ही यहाँ पर रहे, और उसके बाद तो 1912 से 1920 तक वे फिजी में रहे। मतलब उन्होंने जहाँ भी रहे, जो शर्तबंद मजदूर थे या ये प्रथा थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उन्होंने उजागर किया, क्योंकि जो यहाँ से एक समाचार भेजे जाते थे उसके मुताबिक कि भारतीय लोग बहुत संतुष्ट हैं, उनका बहुत ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जब इन्होंने उनके केस लिए और उन चीज़ों को उजागर किया और पत्र इत्यादि लिखने शुरू किए, तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आने लगी, और कुछ लोग इनके दुश्मन भी हो गए थे इसी कारण।
1: हाँ हाँ, यह पता चलता है कि जब वे भाषण देने लगे तो गोरे मालिक या फ्रांसीसी लोग थे वे डर गए थे,

0: और वहां पर कुछ लाठी आदि लेकर लोगों को भेजते
1: और
0: थे,
1: कुछ लोगों को भड़काया उन
0: हाँ
1: पर फेंकने के लिए कुछ चीजें ऐसी,
0: बिल्कुल हाँ,
1: कि लोगों को दिखे कि लोग उनके अगेंस्ट हो रहे हैं या उनके विरोधी हो रहे हैं।
0: लेकिन उन सब के बावजूद भी उनका कोई, उनको कोई डर नहीं हुआ और वे आगे बढ़ते गए।
1: एक तो वे निर्भीक थे और एक उनका गुण था सेवा और परोपकार की भावना। मतलब वे अपना नुकसान सह लेते थे, लेकिन जो सामने वाला, अगर कोई गिरमिटिया मजदूर है, शर्तबंद मजदूर है, उसकी कोई तकलीफ है, उसको लेके उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे उदाहरण के लिए इतिहास में ये बात आती है कि एक शर्तबंद मजदूर ने 4 किलो मान्योक चुराया और इसके आरोप में उसको 3 महीने की कड़ी जेल की सजा। इसका विरोध मनीलाल डॉक्टर ने किया। इसी तरह से एक और केस था जिसमें एक व्यक्ति ने गन्ने के 30 टुकड़े चुराए थे और उसको भी 3 माह की सजा दे दी गई, और एक को एक सुअर चुराने के लिए। तो उन्होंने इन सब के लिए केस लड़े वहां पर। मतलब एक सच्चा, अच्छा, परोपकारी, सेवा भाव वाला वकील पहली बार शर्तबंद मजदूरों को मिला और शर्तबंद मजदूरों को लगा कि कोई इस देश में भी है जो उनके लिए लड़ सकता है, उनके लिए खड़ा हो सकता है।
0: इन्हीं कार्यों को देखते हुए मैंने पढ़ा है कि उन्होंने एक बार उन्हें फिर से मॉरिशस में बुलाया गया,
1: हाँ,
0: 1950
1: में किया गया उनका।
0: तब उनको बहुत अच्छी तरह से सम्मानित करके
1: जी,
0: उनके कार्यों के प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया,
1: मानो मॉरिशस ने कर्जा चुकाया, मैं तो ये कहूंगी।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और बताना चाहूंगी कि उनकी पुत्री ने उनका, उनकी मृत्यु के उपरांत जो उनका कुछ सामान, उनकी घड़ी, उनका कोई पत्र, ये सारी चीजें महात्मा गांधी संस्थान के संग्रहालय में दे दी हैं और वे सारे स्मृति चिन्ह के रूप में वहाँ पर सुरक्षित हैं। हम में से कोई भी जाके मनीलाल डॉक्टर के इन स्मृति चिन्हों को देखकर आनंदित हो सकता है और गर्व कर सकता है।
0: मैं तो कहता हूँ कि उनको जाना ही चाहिए।
1: हाँ, देखना ही चाहिए।
0: ऐसी दुर्लभ चीजें फिर से प्राप्त नहीं होगी और ये हमारी ऐतिहासिक चीज है।
1: बिल्कुल। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय लगभग हो चला है। बस बताना चाहती हूँ, अदन, फिजी, मॉरिशस, भारत, सभी जगह पर जब उनकी मृत्यु हुई तो शोक मनाया गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए जो दुखी थे, खास करके गिरमिटिया मजदूरों के लिए एक युद्ध लड़ा, लड़ाई लड़ी और अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई, भाषा का ज्ञान, उसका प्रयोग उन्होंने सेवा के लिए किया। 8 जनवरी 1956, 75 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। तो बस इसी के साथ मुझे और धनराज शंभू जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार, फिर एक
0: नमस्कार।
1: और कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: क्षितिज, क्षितिज, एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।

घड़ी मिला लीजिए, समय शाम के ठीक 5:30 बजे हैं। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम वेवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। और इसी के साथ एक बार फिर आपका साथ देने आ पहुंची है रत्ना बचपन ऐसा कार्यक्रम में, जहां पर हम बचपन की उन यादों को ताजा करते हैं, कुछ हम अपनी सुनाते हैं, कुछ आपसे सुनते हैं। और बेशक अगर आज के इस कार्यक्रम में आप भी भाग लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर, जहां पर बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे। और बिल्कुल जब हम बचपन की यादों की बातें करते हैं तो बचपन कितना लाजवाब था ये तो हर कोई जानता है, पर बचपन की उन यादों को ताज़ा करने के साथ साथ हमारी जो भावी पीढ़ी है, हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको हम क्या देते हैं, उनके साथ उनके बचपन को हम और भी लाजवाब कैसे बना सकते हैं, हम किस प्रकार से उनके बचपन को प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ उनको एक लाजवाब बचपन दे सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में हम कहें तो भाई आज का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चा जो है, या कह सकते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्क्रीन, जी हाँ, मॉनिटर के साथ बिताते हैं। और मॉनिटर अगर हाथ में से खींच लिया जाए या मना कर दिया जाए तो घर में महाभारत होने के लिए टाइम नहीं लगता। सही कहा ना भाई, हम झूठ बोलते ही नहीं। और सच में देखा जाए तो आज बिल्कुल बहुत सारे लोग अभी इस वक्त वेकेशन में हैं, तो इस वेकेशन को आप किस तरह से लाजवाब बना रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्टिव बना रहे हैं, इस पर आज की बात हम करेंगे। और बिल्कुल अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक बहुत ही लाजवाब सा प्रोग्राम किया था, बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम था, जो आर्ट गैलरी पर हमने बात की थी, जहाँ पर हमने कुछ ऐसी बातें जानी जो हमारे नवयुवक है, जो हमारे बच्चे हैं, जो आर्ट में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, बहुत पसंद करते हैं आर्ट करना, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, उनके लिए एक बहुत ही मज़ेदार एग्जीबिशन लगाया गया है। और हमारे मॉरिशस में ऐसे बहुत सारे आर्ट टीचर्स हैं जो बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं।

0: मैं बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं, और आपको भी याद होगा कि आपने भी बचपन में बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई होंगी, कुछ बहुत मज़ेदार बनी होंगी, कुछ बहुत ही लाजवाब। और जो पेंटिंग कई बार हम कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज तक अपनी स्केच पैड को या फिर पेंटिंग्स के जो बनाए होंगे, जो चित्र बनाया होगा, वो आज भी उन्होंने बहुत ही संभाल कर रखा है। और सच में वो यादें बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम तो आपका साथ दे ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ मज़ेदार गानों का भी सफ़र रहेगा। और मंडे का दिन होता है, चाहे मंडे हो या संडे, भाई बच्चों के लिए आजकल तो कहें ना छुट्टियों का सफ़र चल रहा है, तो मंडे हो या संडे, रोज़ खाओ अंडे हम ये नहीं कहेंगे, पर बस यही कहेंगे कि दिन को लाजवाब बनाइए, गीतों को एंजॉय कीजिए,
1: अटकन बटकन दही चटो।
0: और गीतों के साथ अभी थोड़ी ही देर में हम बातें करेंगे आर्ट के बारे में।
1: छोटी मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।

भाई बचपन के दिन राइट या रॉन्ग कुछ समझ में तो आता नहीं, पर सच कहें तो भाई जो बड़े गुजर चुके हैं इस रास्तों पर से, तो शायद सही ही कहते होंगे कि अपने समय का पूरा सदुपयोग कीजिए, पूरी तरह से उसे प्रोडक्टिव बनाइए। क्योंकि आजकल कहते हैं ना कि हम मॉनिटर टाइम इतना ज़्यादा बढ़ा चुके हैं कि भाई जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती ना, उन चीज़ों को भी हम बिना वजह देख कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पर हम तो कहेंगे कि भाई उसे भी हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, या फिर आपको केक बनाने में इंटरेस्ट है, या फिर आपको स्टिचिंग में इंटरेस्ट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल मॉनिटर के साथ भी प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। अब आजकल की लड़कियां मेकअप को लेकर कितना ज़्यादा उत्तेजित होती है, कितना ज़्यादा पसंद करती है मेकअप लगाना, मेकअप कैसे लगाना चाहिए, मेकअप के कुछ ऐसे आर्टिस्टिक टिप्स हमें मॉनिटर यानी सोशल मीडिया के द्वारा मिलते रहते हैं। वैसे ही लड़कों के लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर आप बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। लेकिन ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्कुल हम इस पे समय ना भी गंवाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार अपनों के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत ज़्यादा लाजवाब होता है। पर आजकल के बच्चे बात ही नहीं करते, आजकल के बच्चे चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनके हाथों में मोबाइल जो आ गया है। चलिए इसी के साथ, हम जैसे थोड़ी देर पहले आर्ट की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा पहले के समय में कैसे टीचर्स हमें पेंटिंग करना सिखाती थी, भिंडी में कलर लगाकर पेंट करना, आलू पर कलर लगाकर पेंट करना और उसमें से फूल बनाना, फूल पत्तियां बनाना। साथ ही साथ भाई पत्थरों पर भी पेंटिंग थोड़े समय के बाद, यानी अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि स्टोन आर्ट कितना ज़्यादा फेमस हुआ, कितना ज़्यादा प्रचलित हुआ। यानी पत्थर या कंकड़ को कई बार ऐसा होता है कि उसे कैनवास पर चिपका कर उसकी पेंटिंग्स बनाई जाती है, उस पर कलर का काम किया जाता है। गोल वाले पत्थरों पर अलग अलग से चेहरे बनाकर उसे और भी डेकोरेटिव तरीके से सजाया जाता है और आप अपना एक खुद कॉर्नर सेट कर सकते हैं, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं इसे। ऑफ कोर्स साथ ही साथ क्ले, बिल्कुल एक समय था जब हम क्ले से चीज़ें बनाया करते थे, छोटी छोटी कलाकृतियाँ बनाया करते थे, हाथी बनाते थे और मेंढक बनाते थे और कछुआ बनाते थे और व्हाट नॉट, कई कई सारी ऐसी चीज़ें हम बनाते हैं क्ले से जो एक तरह से आपके दिमाग को क्रिएटिविटी की ओर जोड़ता है। और बिल्कुल उसी के तरह से हम हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं उसे हम क्ले के द्वारा बना सकते हैं, क्ले से बना सकते हैं। साथ ही साथ रंग बिरंगी फूल, पक्षी, जानवर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं। और जब हम वेस्ट की बात करते हैं, कबाड़ से जुगाड़, यानी बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट में से बेस्ट चीज़ें बनाना, भाई बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि प्लास्टिक की बोतलों में से क्या सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इतने सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं। आइडियाज़ तो हम देख लेते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो उन आइडियाज़ को समेट कर कुछ बनाने का सच में प्रयास करते हैं। अब अंडे की ट्रे ही ले लो, बहुतों के घर में अंडे की ट्रे को उठाकर फेंक दिया जाता है जो गत्ते का होता है, यानी बिल्कुल कार्डबोर्ड का जो हार्ड होता है, उस ट्रे को कितने सारे लोग बिल्कुल मशरूम बनाते हैं, फूल बनाते हैं और अपने फूलदान को सजाते हैं, और वो जो फूलदान होता है वो भी प्लास्टिक की बोतल का बना हुआ होता है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, प्लास्टिक का जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे लोग बातें तो करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव बहुत कम लोग बन जाते हैं। यानी उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें जो कह सकते हैं कि घर में पौधे रोपने के लिए हम और पौधे क्यों खरीदें, जो हमारे घर में चीज़ें हैं जिसे बस फेंकना ही है उसका उपयोग

लोग क्यों नहीं कर सकते। आपने पेपर मैश आर्ट के बारे में सुना होगा, तो ये जो अंडों की ट्रे है इसे भी कई सारे लोग या तो फिर वो टिश्यू के जो रोल्स होते हैं उसको भिगो कर, उसको क्रश करके, उसमें मिट्टी मिलाकर, उसका उपयोग करके कुछ ना कुछ कलाकृतियां बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें उनमें से घड़ते रहते हैं। इतना ही नहीं, आपने आइसक्रीम की स्टिक्स के बारे में भी सुना होगा, जो कैंडी स्टिक्स हम फेंक देते हैं, उन स्टिक्स के द्वारा भी कितने सारे आर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल, बस करना यही है कि कोशिश करनी है कि हमारा जो फ्री टाइम है उसमें हम कुछ नया बनाएं, कुछ अच्छा सा चीज़ हम खुद क्रिएट करें। यकीन मानिए, जब आप अपने हाथों से किसी चीज़ को बनाते हो, उसे डेकोरेट करते हो, एक अलग एहसास, एक अलग चीज़ आपके हाथ से बनकर उभर कर बाहर आ रही है। दोस्तों, आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में सुना है? बहुत सारे लोग मधुबनी पेंटिंग भी हाथ से बनाते हैं कैनवस पर। ये भी एक अलग प्रकार का, हम कह सकते हैं नशा तो नहीं कहेंगे, पर ये एक ऐसा जुनून है जहां पर हम आर्ट यानी एक तरह की जो पेंटिंग बनानी शुरू कर देते हो, आप घंटों उसमें डूब जाते हो और वो पेंटिंग बनाते बनाते आप उसमें इतना ज़्यादा इंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं रहता। तो देखा जाए तो आप दुनिया से दूर, तनाव से दूर, अपनी ही दुनिया में मगन होते हुए, खोए हुए, बिल्कुल एक अलग सी कारीगरी, एक अलग सा आर्ट पीस आप क्रिएट करते हैं अपने हाथों से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी एक लाजवाब सा समय है जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं। बचपन हो तो ऐसा कुछ काम कीजिए, कुछ अपने आप को प्रोडक्टिव बनाइए।

भाई आज का समय कहते हैं कि बहुत सारी पढ़ाइयाँ, बहुत सारा होमवर्क, बहुत सारा रिविजन एंड डेफिनेटली वेकेशन का टाइम है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इस वक्त ट्यूशन से, स्कूल से, भाई कितना सारा होमवर्क करना पड़ता है। और स्पेशली जो हमारे जो कहते हैं ना कि जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे, यानी जो फॉर्म 3 के बच्चे हैं या फिर जो हमारे SC के स्टूडेंट्स हैं, HSC के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल इस वक्त उनके लिए बहुत ही टफ टाइम है, क्योंकि उनको बहुत सारा रिवीजन करना है एंड अलोंग विद इट पढ़ाई कंप्लीट करके बस अपने इस महीने की वेकेशन को पूरा प्रोडक्टिव बनाना है। तो डेफिनेटली कई बार होता है कि यू नीड योर क्वाइट टाइम, कई बार आपको बस वो आपका मी टाइम चाहिए होता है, इसीलिए आप स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, थोड़ी बार थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखना, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुपचाप बैठना, थक जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कई बार ये भी आपका हक है और बस थोड़ा बहुत टाइम। लेकिन यस, डोंट बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इंग्रॉस्ड रहना, ये भी आपकी सेहत के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो हो सके तो कई बार बस थोड़ी देर के लिए उसमें से भी आप भाई मोबाइल के लिए भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, मोबाइल को भी थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब आप स्पेशली मोबाइल को चार्ज पे डालते हैं तो बस उसे थोड़ी देर के लिए चार्ज तो होने दीजिए, उसे थोड़ी देर रिलैक्स तो कीजिए। जैसे अगर आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाए तो आपका दिमाग का कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, उसी तरह से मोबाइल भी तो गर्म हो जाता है। तो थोड़ी देर मोबाइल को भी आराम दे दिया कीजिए एंड मम्मी पापा के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लिया कीजिए, थोड़ी बातें कर लिया कीजिए, क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, थोड़ी बातें शेयर कर लेने से भी मन हल्का हो जाता है दोस्त। और बस कई बार अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा वॉक कर लीजिए, क्योंकि मम्मी पापा की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है जितनी आपकी हेल्थ ज़रूरी है। तो मम्मी पापा को भी थोड़ा सा एनकरेज कीजिए कि थोड़ा वॉकिंग कर ले, एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा नेचर वॉक कर ले और घर से बाहर निकले, बस अपने डेन में या अपने केव में घुसकर ना बैठे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। और जब हेल्दी फील करेंगे तो आपका बॉडी, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, सो दैट आप अपना रिवीजन फिर से टेकअप कर सके। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। होप दैट हमारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, हमारे गानों का सिलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा एंड डेफिनेटली हर मंडे को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच सम रिलैक्स टाइम बच

बचपन ऐसा कार्यक्रम के साथ। सो आपको छोड़े जाते हैं इस आखिरी गीत के साथ, और इसी गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर बस समाप्त हो जाएगा। सो एंजॉय दिस ब्यूटिफुल मोमेंट, मंडे का दिन है एंड बस फिर मिलेंगे आपसे अगले सोमवार को। बट वैसे कल सुबह 6 बजे डेफिनेटली हम आ रहे हैं सुबह को आपको जगाने, सुबह 6 बजे। सो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, डोंट फॉरगेट टू स्माइल, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ ब्यूटिफुल इवनिंग अहेड।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के 6 बजे है। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 30 बिलियन रुपये के कॉन्ट्रैक्ट की जांच में अब नए पहलुओं की पड़ताल। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से पता लगा है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर किन परिस्थितियों में मिला और पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर वाहन चालकों ने एक अनोखे अंदाज में लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो एक बार फिर सड़कों के रखरखाव के मुद्दे को चर्चा में ले आया है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में अब लड़कियां भी अपनी अलग पहचान बना रही है। लड़की लकड़ी और मेटल से तैयार किए गए उनके प्रोजेक्ट रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का शानदार उदाहरण पेश कर रही है। विदेश में कोंगो में इबोला का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्वास्थ्य एजेंसियां वायरस को नए इलाकों में फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद को आज फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन FCC के मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों से 2023 में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG को 30 बिलियन रुपये का पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के मामले में पूछताछ की जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के कंपनी को दिया गया था। फिलहाल पूछताछ जारी है। प्रवीण जगनाथ दोपहर 2:30 बजे FCC मुख्यालय पहुंचे, जहां MSM समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी ओर से वकील राउफ गुलबुल पेश हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि ये अंडर वार्निंग पूछताछ नहीं है। इस मामले में 2 पूर्व मंत्रियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे फिलहाल जमानत पर रिहा है। इनमें रंगानादेन पदायाची और सुदेश कालीचंद शामिल है। इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पूर्व महानिदेशक राजीव सिरवान सिंह और मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेजियस को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और 30 बिलियन रुपये के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच जारी है। आयोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में मिला, जबकि शुरुआत में कंपनी 7 बोली लगाने वाली कंपनियों में शामिल नहीं थी। जांच अधिकारी उस समय के राजनीतिक नेताओं और MMG के अधिकारियों के बीच हुई बैठकों की क्रम और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की पूरी प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
2: 5 मई 2023 को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ईंधन की आपूर्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया। 7 जून को STC के बोर्ड ने 7 में से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी OQ ट्रेडिंग

0: को कॉन्ट्रैक्ट देने पर मंजूरी दी। बाद में ये निर्णय रद्द कर दिया गया क्योंकि एसटीसी को मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप की ओर से बिना अनुरोध यानी एक अनसॉलिसिटेड प्रस्ताव मिला। एमएमजी ने सबसे कम सप्लाई प्रीमियम, 60 दिनों का क्रेडिट और रुपए में भुगतान की पेशकश की। इस प्रस्ताव पर 29 जून को मंजूरी दी गई। ये करीब 6 लाख डॉलर यानी लगभग 30 बिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किया गया बदलाव 2025 से जारी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या एमएमजी के साथ हस्ताक्षर से पहले टेंडर में कोई बदलाव लाया गया या फिर आवश्यक ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया पूरी की गई या नहीं। इसके अलावा एमएमजी के अधिकारियों और उस समय के मंत्रियों के बीच हुए सभी समझौतों और प्रक्रियाओं पर जांच की जा रही है। इस मामले में एमएमजी की मॉरिशन शाखा की निदेशिका कारिना नेसियस और एसटीसी के पूर्व महानिदेशक राजीव सरवन सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। पूर्व मंत्री रंगानाथन पादयाची और सुदेश कालीचरण को भी गिरफ्तार करके उन पर अस्थाई आरोप लगाए गए।
1: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ गाड़ी चालकों ने सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। उनका कहना है कि ये गड्ढे सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर देश की सड़कों की हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ब्रिटेन में रह रहे शगस के मूल निवासी नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर शगस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के फैसले को रद्द करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी अनुरोध किया है। ये जानकारी ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने प्रकाशित की है। बदलती दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज रेजवी स्थित ओक्टावी ऑडिटोरियम में हुआ। अब डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ लड़कों का विषय नहीं रहा, लड़कियां भी इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और हुनर का दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। लोरेटो कॉलेज काथोबोन की कई छात्राओं ने कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए इस विषय को चुना है। अपने प्रोजेक्ट के तहत वे लकड़ी और मेटल से आकर्षक और उपयोगी मॉडल तैयार कर रही है। रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का ये मेल छात्राओं को नई संभावनाएं दे रहा है। ज्यादा जानकारी याचना मिश्रा के साथ।
0: काथोबोन के लोरेटो कॉलेज की डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी में ग्रेड 13 की लड़कियां लकड़ी काट रही हैं, मेटल को रूप दे रही हैं बारीकी के साथ। ये कैम्ब्रिज ए लेवल की परीक्षाओं का प्रोजेक्ट है। मैं बाद में आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये विषय चुना है। इस क्षेत्र में ज्यादातर लड़के हैं। एससी 2025 की परीक्षाओं में 616 लड़कों के बदले 115 लड़कियां। ये युवतियां यही दिखाना चाहती हैं कि ये क्षेत्र हाथों से किए जाने वाले कार्यों से भी ज्यादा जरूरी है।
2: Les filles, on ne nous a pas appris à travailler avec le bois, c'était toujours couture, cuisine. Mais vu que maintenant on a la.
0: लड़कियों को लकड़ी से काम करना नहीं बल्कि सिलाई और रसोई का काम सिखाया जाता है, लेकिन अब हमें मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का।
3: Je trouve que c'est une bonne opportunité qu'on nous a donné de prendre design.
0: हमें अच्छा अवसर मिला है, डिजाइन हर जगह है और ये बहुत अच्छा विषय है।
3: डिजाइन
0: समस्या को पहचानने से इसे सुलझाने तक

0: हर प्रक्रिया बारीकी से पूरी की जाती है, विज्ञान टेक्निक और सृजन का अच्छा मिश्रण।
1: C'est quelque chose de nouveau pour elle parce que elle découvre mais en même temps avec l'introduction du NCE.
0: इनके लिए ये नया है, लेकिन जब से NCE शुरू हुआ है, ग्रेड 7 से ही लड़कियां ये विषय करती हैं। ग्रेड 10 तक आते आते इनका ज्ञान काफी अच्छा होता है। HSC के स्तर पर दो परियोजनाएं हैं, कंपोनेंट 2 ग्रेड 12 में और कंपोनेंट 4 ग्रेड 13 में किया जाता है। ये समस्या ढूंढकर इसका समाधान लाती हैं।
1: From this, build on that pour pouvoir faire un projet pour solve ce problème-là.
0: Vastukala, engineering ya design, ye chhatraen aaj se hi apne bhavishya ko sawar rahi hain aur sabit kar rahi hain ki pratibha aur junoon ki koi seema nahi hoti.
2: मॉरिशस में हर 5 में से केवल एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाती है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिश से काफ़ी कम है। काम पर लौटने जैसी वजहों से कई माताओं के लिए स्तनपान जारी रखना आसान नहीं होता, लेकिन कई माएँ अपने बच्चों को माँ के दूध के पोषण और सुरक्षा का लाभ मिलता रहे इसके लिए हर संभव प्रयास करती है। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के दूध के महत्व और शिशु के स्वस्थ विकास में इसकी अहम भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
0: इस शिशु ने अभी जन्म लिया, बहुत जल्द ये अपनी माँ की गोद में होगा दूध पीने के लिए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, हम उसे दूध पिलाने उसकी माँ के पास ले जाते हैं। बच्चा जब स्तनपान करता है तो माँ के शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है, जिससे दूध उत्पन्न होता है। सीजेरियन के मामलों में एनेस्थीसिया के कारण 6 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। पिछले कुछ सालों से मॉरिशस में प्रथम 6 महीनों के लिए केवल स्तनपान कराने वाली माओं की संख्या 20% की रही, जबकि WHO और यूनिसेफ 50% की सिफारिश देते हैं। माओं के सामने कई बाधाएं हैं। माँ को डर लगता है कि जब वे काम पर जाएंगी तो बच्चा दूध नहीं पीना चाहेगा। सीजेरियन के मामलों में कुछ माएँ 24 घंटों तक बच्चे से दूर रहते हैं, जिस वजह से स्तनपान हो ही नहीं पाता है।
3: Allaitement maternel est bien important. Ça les protège les autres bébés contre toute maladie. Ils ont gagné beaucoup bonding avec les autres bébés.
0: स्तनपान के इतने सारे फायदे माओं को प्रोत्साहित भी करते हैं।
4: Premier d'abord, si les gars ont premier du délà, les filles gagnent souvent anticorps, les gars tout là-dedans.
5: Ou deux premiers enfants, comme il est temps, on allait zut.
6: Ça veut dire 3 mois, maintenant résoudre parce qu'il m'a dit qu'il y a assez d'idées.
7: Je vais allaiter mon bébé après, les premiers 6 mois. Après, je pense pour retirer le lait, mettre dans un biberon et puis quitter avec les grands-parents.
0: Follow-up ke dauran is par gaur kiya jata hai.
8: Quand nous retrouvons la maman dans consultation, maman a déjà les mieux, il n'est plus dans du lait.
0: दो हफ्ते बाद जब माँ अपने बच्चे के साथ आती हैं, तो माँ तब तक अपने बच्चे को अच्छे से जान जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। हम उनसे बात करते हैं, समस्याओं के बारे में पूछते हैं। माएँ ज्यादातर समय स्तनपान कराने के लिए प्रेरित रहती हैं। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय माओं को दूध पिलाने का मौका देने के लिए ढांचों को ठोस करने की जरूरत पर केंद्रित है।
2: कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक सशक्त जरिया है। इसी उद्देश्य के साथ पायुत सेंटर फॉर आर्टिस्टिक ट्रेनिंग ने आज ओपन डे और प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न कला विधाओं में प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और उनकी प्रतिभा तथा रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया गया। सदियों पुरानी भाषा, समृद्ध संस्कृति और विरासत जो आज भी मॉरिशस की पहचान का हिस्सा है, इसी विरासत को सम्मान देने के लिए भारत के उच्चायोग ने

0: तमिलनाडु डे मनाया। समारोह में मंत्रियों, सांसदों और राजनयिक समुदाय के कई सदस्य मौजूद रहे। यह अवसर मॉरिशस में 17वीं सदी से बसे तमिल समुदाय के इतिहास, संस्कृति, संगीत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का था। सदा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: मॉरिशस में तमिल समुदाय की उपस्थिति 17वीं शताब्दी में डच शासन के दौरान शुरू हुई थी। तमिल समुदाय के विभिन्न लोग विभिन्न परिस्थितियों में इस द्वीप पर आए। गिरमिटिया मजदूर, दास, स्वतंत्र श्रमिक, सरकारी अधिकारी, जमींदार और व्यापारी सभी ने अपने अपने तरीके से मॉरिशस के इतिहास को और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये विरासत आज भी संस्कृति, भाषा और संगीत के माध्यम से जीवित हैं। तमिलनाडु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भारतीय उच्चायुक्त ने इसी बात पर जोर दिया। महामहिम अनुराग श्रीवास्तवा ने कहा, मॉरिशस और तमिलनाडु का इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है। ये संबंध देश के आधुनिक इतिहास से जुड़े हैं। इस धरोहर की देश की अस्मिता में गहरी छाप है। बैंकनोटों पर भी इसे देखा जा सकता है, जहां तमिल लिपि अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ पाई जाती है। 50 रुपए की नोट में दूरदर्शी नेता रंगानाथन श्रीनिवासन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिनकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने देश के आधार रखने में योगदान दिया। देश भर में तमिल परंपरा सजीव है और विकसित होती जा रही है। दूसरी ओर कला एवं संस्कृति मंत्री ने एकता बनाए रखने तथा तमिल पूर्वजों में मिली इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का आह्वान किया। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया ने कहा, हम दिल से ये अपील करते हैं, एकजुट रहे, किसी भी मतभेद को अपनी धरोहर से बड़ा न होने दें। कोलातम को यूनेस्को की विरासत में शामिल करने की मांग भी अच्छी राह पर है। उल्लेखनीय है कि तमिल भाषा दुनिया भर में 77 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। 2004 में ये आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा रही है।
0: जैसे कि हम पहले बता रहे थे, बदलती दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज सुबह रेजवी स्थित ओक्टावियो ऑडिटोरियम में हुआ। ज़रा जानकारी करुणा लालू के साथ।
1: मॉरिशस में 51,000 से अधिक छात्र पब्लिक और प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। देश में 40 से अधिक संस्थानों के साथ ये सेक्टर अब नई आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने की प्रक्रिया में है। यूनिवर्सिटी मॉरिशस के वाइस चांसलर कवि खेडू ने कहा, इससे MOU कायम किए जाएंगे ताकि ठोस कदम उठाए जाए, ताकि यूनिवर्सिटी मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर सके और संयुक्त रूप से शोध कर सके। ये संगोष्ठी मॉरिशस के लिए विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। प्रोफेसर विनयागम चिनापा ने कहा, जो सबसे जरूरी है, एक प्रणाली कायम करना ताकि मॉरिशस शोध के लिए एक हब बन सके, जहां प्रशिक्षण और छात्रों के बीच आदान प्रदान हो। ये आदान प्रदान सीधे तौर पर छात्रों और युवा शोधकर्ताओं से जुड़े हैं, जिन्हें तेजी से वैश्विक होते शैक्षणिक माहौल में आगे बढ़ना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी के डॉक्टर संघमित्रा मलिक ने कहा, ये मंच विभिन्न देशों, खासकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए साथ में मिलकर विद्वजनों के बीच आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। लगातार बदलते इस सेक्टर में संस्थानों को भी नई जरूरतों के अनुरूप ढलना होगा और छात्रों को आने वाले समय की शैक्षणिक और पेशेवर वास्तविकताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर कविराज सुकू ने कहा, AI के साथ भावी यूनिवर्सिटी

0: शक्ति समान नहीं रहेंगी। खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी भाषा समान हो, गुणवत्ता भी, और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र नौकरी के लिए योग्य हो। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभागी अनुभवों के इस साझा मंच को ठोस कार्य योजनाओं में बदलने का प्रयास करेंगे। मकसद उच्च शिक्षा को स्थायी रूप से मजबूत करना और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना है।
1: क्या पत्थर की मूर्तियाँ भी अपने भीतर इतिहास की अनकही कहानियाँ समेटती होती है? इन्हीं कहानियों को सामने लाने की कोशिश की है मॉरिशस में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर पर्ल ब्रमल ने अपनी नई पुस्तक में। इस पुस्तक का विमोचन वाक्वा के मॉरिशस जिमकाना क्लब में किया गया। और अपने घर से ही सुब्रमण्यन इरुवन पीले छोटे छोटे प्राकृतिक संसारों को आकार दे रहे हैं। प्रकृति के प्रति अपने जुनून के चलते वे प्राकृतिक पौधों से हाथों से टेरारियम तैयार करते हैं और साधारण कांच के जारों को हरियाली से भरे जीवंत लघु इकोसिस्टम में बदल देते हैं। विदेश में कोंगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,200 हो गई है, जबकि अब तक 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 10 दिनों में करीब 1,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की कोशिशों के बीच वायरस अब नए इलाकों तक फैल रहा है। और भारत के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच सबसे गंभीर स्थिति असम में बनी हुई है, जहां लगातार बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे। देर रात को और कल सुबह उत्तर पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे, जिस वजह से उत्तरी और पूर्वी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: Saint Antoine Kanfukro Phoenix Smith, Saint Antoine Kanfukro Phoenix Smith, Sir Sat Sal ke 67 years old ke Janab Sadiq Rashid Fatinga. जनाब सादिक रशीद फतिंगा, जो सादिक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया। उनका जनाजा आज रात नौ बजे उनके बेटे जनाब मोहम्मद मंताज़िर फतिंगा के मकान सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो फिनिक्स से निकाल कर दफनाने के लिए बिगा के कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। नंबर 55 वुकल एवेन्यू हर्सफील्ड हर्टफोर्डशायर

इंग्लैंड में 87 साल की 87 years old की श्रीमती तारा मती हीरू पैदाइशी नाम अम्बाजी, पैदाइशी नाम अम्बाजी और जो मन का नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर नंबर 55 वोकल एवेन्यू हर्सफील्ड हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड से उठाकर दफनाने के लिए न्यू साउथ गेट की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। जोसेफ फ्रांसवा दुबिन स्ट्रीट वाले डिप्रेट में 76 साल के 76 years old के श्री दयाराम गोचन जो ज्ञानदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल सपहर तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती कलावती गोचन के घर जोसेफ फ्रांसवा दुबिन स्ट्रीट वाले डिप्रेट से उठाकर दफनाने के लिए बामौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 3 PM। Petite cabane camp de masse pavimi 69 years old के श्री कोमल दत्त मंगो जो लाल देव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर पचित काबान कौंद मास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंद मास की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 PM। नंबर 29 कनाल बाथ्यूस सेंट क्वामे 64 साल की 64 years old की श्रीमती दियावती जोई गोपल पैदाइशी नाम शिव नारायण और जो अंबिका नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री दीपक जोई गोपल के घर नंबर 29 कनाल बाथ्यूस सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपोर में 78 साल के 78 years old के श्री जीवन पीरू जो सत्यदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पिरांस रेबुशे में 90 साल के 90 years old के श्री हरि प्रसाद चमन जो प्रसाद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पिरांस रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 75 शिमला सोस कथबोन में 81 साल के 81 years old के श्री लुमन सिंह ओबिलक जो भूप नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री उत्तम सिंह ओबिलक के घर नंबर 75 शिमला सोस कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टुमारो एट 9:30 PM। रायरोड क्रेव कर्मी 83 साल के 83 years old के श्री चंदर कालीचरण जो लाला नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो मोका हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हेमराज कालीचरण के पिता थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे उनके बेटे श्री यजराज कालीचरण के घर रॉयल रोड खैव क्यूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैव क्यूर की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। तुलसी लेन यूनियन पार्क में तुलसी लेन

यूनियन पार्क में 46 साल के 46 इयर्स ओल्ड के श्री कविराज तुलसी, श्री कविराज तुलसी जो विक्रम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थ थी कल दिन के डेढ़ बजे उनकी माँ श्रीमती सुखवंती तुलसी के घर तुलसी लेन यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मांगी जानी रोजबैल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1:30 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी, यानी कि बुधवार 29 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक सुल्फेरिनो और आसपास के इलाकों में CWA IBL पंपिंग स्टेशन, एक्सपुल, ट्री वुडन और उनके आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बुधवार 29 जुलाई को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक सुरीनाम, रियांबेल सुरीनाम, मौसलमान तानाकुजी, मौसलमान लाइमून और NHDC रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
0: गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में वाकवा के श्री कबीर काउंसिल द्वारा मंगलवार 28 जुलाई को शाम 6:30 बजे वाकवा सुल्फेरिनो नंबर 2 के कबीर काउंसिल मंदिर में सत्विक ज्ञान चौका आरती का आयोजन किया गया है।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: बजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम में समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हमेशा की तरह भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम में चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। आज है सोमवार, पावन दिन है, भगवान शिव जी को समर्पित है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। तो चलिए श्रोताओं इस शुभ विचार के साथ शुरुआत हम करेंगे। सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, क्षमा में होती है, अहंकार में नहीं, विनम्रता में होती है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम इसे आगे बढ़ाएंगे। जब हम प्रेम, सेवा और करुणा का मार्ग अपनाते हैं, तब हमारे भीतर की दिव्य शक्ति जागृत होती है। और कहते हैं ना, ईश्वर का स्मरण हमें ये भी विश्वास देता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक उसे दूर ही कर लेता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को जारी रखेंगे। जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होता है, उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य बन जाती है। आध्यात्मिक शक्ति हमें सिखाती है कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें और अधिक मजबूत बनाती है।

0: श्रोताओं, कहते हैं कि शक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है अपने मन पर नियंत्रण करना। जब मन शांत होता है तभी आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है।
1: अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर।

ईश्वर ही है, वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

चलिए श्रोताओ, भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारे तकनीकी सहायक यूसुफ को धन्यवाद देंगे। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

मौज़ सामीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की तहज्जुद की नमाज है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात जब आखिरी तिहाई हिस्से बाकी रह जाता है तो आसमानी दुनिया पर नुज़ूल रहमत फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ। बहवाला सही बुखारी शरीफ।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, हमें अपनी रातों को ज़िक्र, दुआ, क़ुरान करीम की तिलावत और तहज्जुद की नमाज से आबाद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में इस सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 27 जुलाई 2026 है। इस सप्ताह के पहला दिन सोमवार और रात के 9:03 होलबा और हम किरण आप सब कोई के करजोर नमस्ते करत हैं और आप सब कोई के ई कार्यक्रम में स्वागत करत हैं। अभी से रात के 11 बजे तक हमेशा की तरह हमर और आपके साथ रही और आप बहुत प्यार के साथ, बहुत बेसब्री के साथ ई प्रोग्राम के इंतज़ार करेला। ई बात हम बहुत अच्छा से जानीला। तो चला आपके फरमाइश सुने के बखत चलाल बा और ई जोन प्लेलिस्ट बनाल बा ओके बदलते जाए के भी समय चलाल बा। पहला गीत आप सब कोई के नाम श्वेता बाबूलाल के आवाज़ में ओ बलमा।

रात के 9:10 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स आई के शुरू हो गल बा जोन अगला गीत चली रंभा राम तोहल के आवाज में जुबीदा लुतु लेके जाए बहुत ही मशहूर गीत जोन खाली मॉरिशस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सब कोई द्वारा पसंद करल जाला। ये गीत भाई अबू अफेज असलम अयाज जहीरा रईस कालाचोटी उनकर दोस्त आपी उनकर पत्नी और साथ में ख़ास तौर पर अपन भगिनी रकीबा के नाम कर रहा था वन और आप रकीबा के बहुत बहुत दुआ देवत हवा

ताकि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द अच्छा हो वापस लौट जाए, वो अच्छा हो जायन। और मामू के दुआ था हमेशा भगिनी के साथ रहबे करेला। उधर एगो बहिन हवन जे हमेशा अपन बहिन खातिर गीत मांगेलन, और आप हवा सुनीता गांगोब से, आप अपन बहिन विमाला के नाम अगला गीत करत हवा जे कोंगोमा से हवन। तो चला जा रंभा राम तोहल के आवाज़ में ये मज़ेदार गीत आप सब कोई के नाम।

9:18 होल बा और आप लोग के फोन कॉल्स अलते बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जन गीत चली, दादा के कहानी सुना, दादी के कहानी। ये गीत खास तौर पर शीला जी मांगा थवन। ये गीत खास तौर पर आज आप आंसले के नाम करा थवा, साथ में सुरेन अपन पति और अपन सब लड़का लोग के नाम। शीला जी के ओर से हांसले के नाम और सब लड़का लोग के नाम, उनकर पति और पूरा परिवार के नाम, दादा की कहानी और आपके साथ साथ जितना भी हमने के सुने होला लोग के ई मनपसंद गीत है, कहे कि ई गीत के फरमाइश अक्सर रहते रहेला, तो आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

दादा के कहानी सुना और दादी के कहानी, ये कहानी कब खत्म हुई होला नहीं है। आज देखा जाता जुलाई महीना के आखिरी लेन दी है और ये एगो लंबा महीना रहा, लेकिन देखते देखते देखा थे जा कि सातवां महीना भी अब खत्म हो के चला बा। आठवां महीना जैसे चढ़ल तो समझ ल अब हमनी साल के अंत तक जाते जा और तैयारी शुरू हो जाए। ढेर चीज के तैयारी, आवे होला परब के तैयारी, नवा बरिस के स्वागत के तैयारी, और ऐसन में देखते है जा कि समय जोन बा वो बहुत जल्दी जल्दी बितले जाता। आज के जोन दिन रहल

जेरके लेंदी के जोन दिन रहेला काफी कठिन रहेला शुरू करे के, लेकिन देखते देखते देखा रात के 9:30 हो गल और जैसे दिन शुरू होल तो ओके खत्म होवे में ढेर समय नहीं लगेला। वैसे ही जीवन में आशा और निराशा भी आवेला, जहाँ पर थोड़ा समय खातिर हंसी खुशी आवेला तो दूसरा समय दिखबत एगो उदासी छा जाला, लेकिन फिर ओकर बाद हंसी खुशी के माहौल हंसी खुशी के समय फिर से चलावेला। और कब्बो ई नहीं चाहिए सोचे के कि जौन समय चला था वो हमेशा चली, कुछ भी हमेशा खातिर नहीं है ई दुनिया में, सब कुछ आवता जात बा आवता जात बा। तो ऐसे में आपके फ़ोन कॉल्स भी आते जाते बा और अगला गीत जौन चली बहाल गावरी के आवाज़ में। ई गीत की फरमाइश कर ले हवन पितों से अमृता गणेश जी, और आप ई गीत अपन बेटी पूनम के नाम करत हवा, साथ में सोनिया और परी, और आपके बेटी आपके बेटा और बहू मीनाक्षी और विशान के नाम भी। अमृता गणेश जी के पसंद के ई गीत बहाल गौरी के आवाज में आप सब कोई के नाम जे बहाल गौरी के फान हवा जा।

0: ज्ञान संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: इबकत हमने के सबसे जस्ती नाना नानी दादा दादी लोग सुने लंजा। तो अगला जो गीत चलाता गिरीश रूपचंद के आवाज में रोमांटिक नाना नानी। हमर नाना राजेश खाना, हमर नानी हेमा मालिनी, ये हमने बोला था। ये गिरीश रूपचंद बोला था वन और ये गीत के फरमाइश करा था वन तेयागुश के शांति जी। शांति जी हमेशा की तरह दागोचिया के मराठी परिवार के नाम करा था वन और अपदागोचिया के उनकर भगीना ओम और सब सुने होरा के नाम।

जिसे सुनला अगला जोन गीत चलता वह कौन चिले के आइला कौन चिले के जाइबा। और ये गीत विनोद सिवदत्त के आवाज़ में, विनोद सिवदत्त के फरमाइश ढेर आलबा। और पहला फरमाइश था आलबा ललिता जी के ओर से थ्रियोले से, आप ये गीत चलावे चाहत हवा अपन सब बहिनजन के नाम, सुदेवी, ज्ञानी, प्रभावती, छोटी, माला राम जावन और साथ में अपन भाई लोग के नाम हरीश और आत्माराम। उधर आपके भाई आत्माराम बेलिया से यही गीत आपके नाम करत हवन, आपके साथ साथ ललिता जी ये गीत सुदेवी, छोटी, प्रभावती के भी नाम। तो चला विनोद सिवदत्त के आवाज़ में ये गीत ललिता और आत्माराम जी के फरमाइश पर और आप सब कोई के नाम।

0: ज्ञान संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रात के अभी 10 बजे में 15 मिनट कमती बा और आप लोग के फोन भारी संख्या में आवा था, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नगला गीत चली ई गीत के मांग करत हवन साजिद जे रोजिल से हवन, और हमेशा के तरह आप ई गीत अपन दोस्त सरोवर जे कनाडा में हवन उनकर नाम करत हवा, और जे कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम। और साजिद जी बोलत हवन कि खाली ई बरिस के महीना ही जोन जुलाई महीना में खाली वही नहीं ख़त्म हुआ था, बल्कि एकर संगे संगे देखत है जा कि सर्दी के जोन मौसम बा वो भी बुझता ख़त्म हो गल बा। थोड़ा बहुत ठंडा करा था, फिर से गर्म भी करा था, कितने इलाका में रात दिन दोनों गर्म करा था, और फिर से एसी लगावे के बदौलत चला बा। तो ये एगो इशारा है कि अब सर्दी के मौसम ख़त्म हो होला बा। फजर के घाम भी साजिद बोलत हवन 15 मिनट आगे उगे के शुरू हो गल बा, और सांझ के भी थोड़ा देरी से घाम जाता सुते। तो ये सब इशारा है कि अब गर्मी के भी मौसम चला, और गर्मी के मौसम के मतलब है सालांत के इशारा। तो वक्त कोई खातिर नहीं रुकेला, मौसम भी नहीं रुकेला, समय नहीं रुकेला। ऐसन में चला रंभा राम दोहल के आवाज़ में ये अगला गीत जो साजिद जी के पसंद के है, लाई लाई लाई लाई बलम तेरे लिए फूल ले ले आए। और ये गीत साजिद जी जितना कोई भी हमने के सुना था वजह सब कोई के नाम करा था वन।

0: का किरण संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रम्हा रामदोहल के आवाज के बाद जो अगला गीत चली और एगो मशहूर आवाज एगो जानल मानल कलाकारा पूर्णिमा फोखीरा के आवाज में इनकर गीत के फरमाइश काफी अलबा। पहला तो गौबे के रतन ई गीत अपन पत्नी करुणा के नाम करत हवन, साथ में जितना कोई भी अभी हमनी के सुनत हवा जा सब कोई के नाम। उधर बुनतिया के जानवी हमनी के ई बखत सुनत हवन और जानवी के नाम भी ई अगला गीत पिया परदेस। और फिर सेजिया मिल के चाची शांता सुकारी ई गीत के फरमाइश करत हवन अपन पूरा परिवार, पूरा सुकारी परिवार के नाम और विशेष तौर पर अपन बेटा रविन, बहू किरण, बेटा सुदेश, संजना, प्रवेश, अशोक, सुजीत और पूरा सुकारी परिवार के नाम। और चाची बोलत हवन उनकर स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं बा, थोड़ा भींज गईलन, त जब ऐसा मौसम करेला जहाँ थोड़ा ठंडा गर्म करता तो सावधानी चाहिए और जस्ती बरते के नहीं सक बजाने कब एगो ठंड आपके लग जाए और ये एगो बहाना हो जाए फिर खोखी सर्दी ये सब धर ले तो बहुत मुश्किल हो जाला, कुछ नहीं सुहाई। तो चला शांता सुखारी जानवी बुनते के और गौबे के रतन के नाम ये अगला गीत।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: दादा किरण संगे
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station.
0: ज़िंदगी के अनमोल लम्हे, रेडियो मॉरिशस के साथ.

रात के 10:30 होल बा और आप लोग ये बखत तक साथ देवत हुआ जा और अभी से 11 बजे तक और आधा घंटा तक साथ रह बजा ये खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से बहुत कोई ये बखत आराम करते हुए हम ये सुनता हुआ तो आप में से ढेर कोई अभी परिवार संगे बहुत ही सुंदर माहौल में हवा जा ढेर जगह अभी चौठारी के जो रात्रि के माहौल बा उस सजल बा ढेर जगह अभी जन्मदिन चलता तो जिकर भी आज जन्मदिन बा जिकर भी काल जन्मदिन रहल जिकर भी जन्मदिन काल बा आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई। और आप सब खातिर बसंत सुपौल के आवाज़ में इस सुंदर गीत जेकर में चर्चा करल गल बा मिठाई के चर्चा करल गल बा मोमबत्ती के और हैप्पी बर्थडे आप सब कोई के।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। जी हाँ, फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है गणेशा, आ जाते हैं खूबसूरत मीठे मीठे पुराने गीतों के साथ, जो पुराने बॉलीवुड के गीतों के खजाने से निकाल के लाए हैं। तो इस एक घंटे के सफ़र में कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम पेश करने वाले हैं जो सीधे सिर्फ आपके दिल तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और हमारा साथ जी सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

हमेशा याद रखना, जब भी पुराने बॉलीवुड गीत बजते हैं तो दिल अपने आप मुस्कुराने लग जाते हैं, और इसी मुस्कान के साथ हम लेकर आए हैं सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, साथ रहिए और गीतों का लुत्फ उठाइए। यादों का सफर शुरू हो चुका है आपके और हमारे बीच में।

आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल का आनंद लीजिए। पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया ना वो जमाना। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ। बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर हम हाजिर हैं। ये हैं सुनहरे पल, जहां हर गीत दिल से जुड़ जाती है।

0: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालिए और खो जाइए उन गीतों में जो हमेशा दिल के करीब रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत तो हमने आपका कर लिया। आपके मनपसंद गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठंडी ठंडी हवा का झोंका चल रहा है और आपके मनपसंद गीत ऑन रेडियो मॉरिशस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए। हम तो चाहते हैं कि आप बस इन खूबसूरत गीतों में खो जाइए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: सुनो और गौर से सुनो। अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: रोना चाहते हो?
1: नहीं!
0: तुम लोग उदास रहे।

कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, बिल्कुल कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती है मेरी जान। आज उन्हीं आवाज़ों और गीतों के साथ हम लेकर आए हैं यादों भरी एक खूबसूरत शाम। गीत जो कभी आपकी मोहब्बत का हिस्सा थे, गीत जो कभी आपके सफ़र के साथी थे, आज फिर सुनेंगे उन्हें, आपके मनपसंद गीत सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

रेडियो मॉरिशस पर शुरू तो हो चुका है यादों का सिलसिला। हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है आपका अपना सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल जी, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम आ जाते हैं। तो बस तैयार रहिए हमारा साथ देने के लिए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

इन खूबसूरत गानों के जरिए जब आप अपने उन खूबसूरत यादों को याद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, आपको पता है हमें कितनी खुशी होती है। हाँ जी दोस्त, वाकई में जब भी हम आ जाते हैं, ये यादों का खजाना आपका खुल जाता है तो हमारे दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि यादें कुछ ऐसे होते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो हमेशा आप अपने दिल के किसी कोने में उसको सजा के और दबा के भी रखते हैं। तो चलिए उन्हीं यादों के नाम ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, वादा तो हम करते हैं कि फिर वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ। जी हाँ, ऑन रेडियो मॉरिशस। शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हैं? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है,

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटलक नहीं हो तब बहू मरलक नहीं हो।

0: हो गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्ही ने बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही।

0: दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
2: हाँ,
0: रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो। तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो, चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।